वही है मन का मस्त मलंग वो अपनी धुन का जंतर मंतर तंत्र ज्ञानी है सर्वज्ञ स्वामी वाणी मृत्युंजय है महाविनाशी ओंकार है इसी की वाणी पूरा बेल का पत्ता तीनों लोक इसी की सत्ता विष पी कर भी अडिग अमर है महादेव हर हर है जत्ता वही शून्य है वही इकाई वही शून्य है वही इकाई वही शून्य है वही इकाई जिसके भीतर बसा शिवाय।

काकी, जिसके लिए जगत है झांकी। जटा में गंगा चांद मुकुट है, सौम्य कभी कभी बड़ा विकट है। आंख से जन्मा है कैलाशी शक्ति, जिसकी तरस की प्यासी है प्यासी। राम भी उसका, रावण उसका, जीवन उसका, मरण भी उसका। तांडव है और ध्यान भी वो है, अज्ञानी का ज्ञान भी वो है। आग तीसरी जब ये खोले, हिले धरा और स्वर्ग भी डोले। गूंज उठे हर दिशा क्षितिज में, नाद उसी का बम बम बोले। वही शून्य।

नशी शक्ति जिसकी तरस की प्यासी है प्यासी हाँ प्यासी। राम भी उसका, रावण उसका, जीवन उसका, मरण भी उसका, तांडव है और ध्यान भी वो है, अज्ञानी का ज्ञान भी वो है। आंख तीसरी जब ये खोले, हिले धरा और स्वर्ग भी डोले, गूंज उठे हर दिशा क्षितिज में नाद उसी का बम बम बोले। वही शून्य है वही इकाई, वही शून्य है वही इकाई, वही शून्य है वही इकाई, जिसके भीतर बसा शिवाय।

0: वही शून्य है वही इकाई, वही शून्य है वही इकाई, वही शून्य है वही इकाई जिसके भीतर बसा शिवाय।
1: Come on!

झांकी। जटा में गंगा चांद मुकुट है, सौम्य कभी कभी बड़ा विकट है। आंख से जन्मा है कैलाशी शक्ति, जिसकी तरस की प्यासी है प्यासी। राम भी उसका, रावण उसका, जीवन उसका, मरण भी उसका। तांडव है और ध्यान भी वो है, अज्ञानी का ज्ञान भी वो है। आग तीसरी जब ये खोले, हिले धरा और स्वर्ग भी डोले। गूंज उठे हर दिशा क्षितिज में, नाद उसी का बम बम बोले। वही शून्य है वही इकाई, वही शून्य है वही इकाई, वही शून्य है वही इकाई, जिसके भीतर बसा शिवाय।

मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स पर और एफएम बैंड 103.5 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की पहली तिथि, तदनुसार 22 जून 2026। समय प्रातः के 5:58 और 40 सेकंड हुए हैं। अब प्रारंभ होते हैं हमारे आज के प्रश्न।

0: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम बैंड 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। प्रातः के 6 बजने को हैं। अब हिंदी समाचार प्रसारित होंगे। समाचार हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। समाचारों के ठीक बाद एफएम बैंड 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर हम रिले करेंगे विविध भारती के कार्यक्रम।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने ये बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस दूनागिरी, संशोधक और अग्रय शामिल है।
2: भारत अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जल मार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्व भर के लोगों का आभार व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देखकर खुशी होती है कि योग सभी क्षेत्रों और विभिन्न देशों के लोगों को स्वस्थ जीवन तथा कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि योग दिवस आने वाले समय में अधिक लोगों को दैनिक जीवन में योग अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के श्योपुर स्थित कूनो राष्ट्रीय उद्यान का दौरा करेंगी। वे चीता पुनर्स्थापन परियोजना की प्रगति की समीक्षा करेंगी और चीतों की देखभाल करने वाले वन कर्मियों तथा स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगी। राष्ट्रपति ने कल चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। इस दौरान अधिकारियों ने उन्हें बताया कि इस समय देश में 52 चीते हैं, जिनमें 49 कूनो राष्ट्रीय उद्यान में हैं। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवादी रोधी सहयोग और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों पर की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी इसमें शामिल होंगे। नीट यूजी पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच सम्पन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। ये परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जारी करने शुरू कर दिए हैं। बोर्ड के अनुसार 87% से अधिक आवेदनों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं, जबकि शेष परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे। तमिलनाडु के पेरिया पालियम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया। मैनचेस्टर में ग्रुप ए मुकाबले में भारत के 159 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने 5 गेंद शेष रहते 4 विकेट पर 161 रन बना लिए। दक्षिण अफ्रीका की मारिजान केप ने नाबाद 81 रन की शानदार पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप जी के मुकाबले में ईरान और बेल्जियम के बीच मैच बिना किसी गोल के ड्रॉ रहा। वहीं ग्रुप एच में स्पेन ने सऊदी अरब को 4-0 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। आज ग्रुप एच में उरुग्वे और केप वर्डे के बीच मुकाबला 2-2 गोल से बराबर रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है, मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स पर। आइए सुनते हैं चिंतन। संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका।

असंभव से भी आगे निकल जाना, स्वामी विवेकानंद। अभी आप सुन रहे थे चिंतन, प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

ईश्वर के प्रति भक्ति भाव भावनाओं का वो गहरा संबंध है जो हमें पवित्रता की ओर ले जाता है। तो आइए नमन करें अपने परम पिता परमेश्वर को।

इस सृष्टि के कण कण में हरि का वास है। हरि ही हमारे जीवन का एकमात्र आधार है और उन तक पहुंचने और उन्हें पाने का एकमात्र राह है उनके नाम की राह।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान से आज का प्रसंग, आवाजी कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की।

शोक संतप्त तथा पश्चाताप की आग में झुलस रहे भरत को माता कौशल्या हृदय से लगाकर धीरज बंधा रही हैं। ज्ञान के उदय होने पर ही चाहे मन का मोह न मिटे, किंतु वो जानती हैं कि किसी अवस्था में भी भरत श्री राम से विमुख नहीं हो सकते। पुरोहित तथा कुलगुरु मुनिवर वशिष्ठ भरत को समयानुकूल उपदेश और लोकाचार की शिक्षा देकर दिवंगत महाराज के पार्थिव शरीर की अंत्येष्टि के लिए प्रवृत्त करते हैं। सरयू तट पर चंदन की सुंदर चिता सजाकर दाह संस्कार होता है और एक दिन शुभ घड़ और लग्न देखकर राजसभा में मुनिवर वशिष्ठ मंत्रियों तथा महाजनों की उपस्थिति में युवराज

0: सतीश भाटिया के संगीत के साथ अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान से आज का प्रसंग। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है, मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि की बातें।
1: किसान बहनों भाइयों, राम राम। कृषि की बात हम आज जिक्र करेंगे धान की नर्सरी की देखभाल इसके बारे में। किसान भाइयों, जुन सी भी किस्म आमने खेत में लानी थी उसकी प्योद आमने बो रखी होगी। आम खूब बढ़िया जगह तक कोशिश करा हाँ बीज लियावा, अच्छी जमीन ने बा के समार के तसल्ली ते साफ सुथरी करके एक सी करके और फिर प्योद आम बोआ हाँ। और बने की है कि जिस टाइम पे प्योद बोन का टाइम है उस टाइम पे गर्मी बहुत ज्यादा पड़े है। एक आधा भाई ने तो प्योद दोबारा भी बोनी पड़े है, जड़ जा है। जब उस टाइम पर ना बोए तो पछेत में बात चली जा है और बोए तो गर्मी घनी पड़े है। तो कई सारी बात इसमें आ जा है कि जो ध्यान करण की है उनका हम ध्यान रखेंगे। शुरुआती दौर में खेत का बाना समारना साफ सुथरा करना, नमी हो खेत में, एक सार खेत हो रहा हो और इसी जगह प्योद बोई जा जुनसी जगह पानी आसानी तक पहुंच सके, क्योंकि प्योद में घने पानी की जरूरत नहीं पड़ा करती। बहुत ज्यादा बड़ा क्षेत्र तो प्योद का बोण में नहीं आया करता, अपनी जरूरत के हिसाब से भाई बोए हैं, लेकिन ट्यूबवेल दूर है और प्योद घनी दूर बो रखी है तो पानी जान में टाइम ज्यादा लगेगा, जरूरत पानी की कम है। तो एक तो जहाँ पर ट्यूबवेल हो, नहर का कोई नाका हो, उसके नज़दीक हमने बोनी है। दूसरा संभाल की बात यह है कि थोड़ी सी क्यारी छोटी बना लिया करें, उसमें कोई खरपतवार जमे अतः वो हाथ के पकड़ के खींच दिया जाया करें। एक ध्यान करने की बात यह है कि विशेष बात जो प्योद पर लागू हुआ है, शाम के टाइम पानी देना है, सुबह पानी नहीं देना है। सुबह पानी दे देंगे तो क्या होगा कि वो पानी गर्म हो जाएगा और गर्म होकर वो पौधा इतना कमज़ोर हुआ है कि ऊपर तो वो जलना शुरू हो जाएगा, पीला हो जाएगा और जल जाएगा। शाम के टाइम पर हम पानी देंगे, थोड़ा सा ज़्यादा भी पानी आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, रात के टाइम पर ज़मीन उस पानी ने पी जाएगी और अगले दिन वो पूरे दिन फिर वो पानी काम करेगा। और किसान भाइयों, प्योद तो जब बढ़िया हुआ है, जब हल्की फुल्की सी बारिश हुई, जाजू करीब 5-7 दिन पहले बारिश हुई थी, मौसम ठीक ठाक सा हो रहा था, तो उसमें प्योद अपनी बढ़वार भी थोड़ी सी जल्दी ले लिया करे। ऊँ देखा जा तो बुआई तो रोपाई तक का टाइम 25-30 दिन का मान के चल लिया करा। उचित नमी हो, पोषण ठीक ठाक हो रहा हो और बीमारी और कीड़ा तो जब बची रह जा तो फिर प्योद न्यू मान लो कि 25-1 दिन में खूब बढ़िया तरीके से तैयार हो जाया करे। 10-15 दिन के बाद जब प्योद बोए का टाइम हो ले, यूरिया का और जिंक का हमने उसमें छिड़काव भी करना पड़े है, चाहे स्प्रे करो चाहे उसमें वैसे छिड़काव कर सके हैं। जब पौधे लागे कमज़ोर हैं प्योद के तो फंगीसाइड की गेल जिंक मिला के हल्के से पानी में आम छिड़काव कर सका हाँ। और खरपतवार की बात पहले आ ली थी, कोई खरपतवार बने हैं खेत में तो उसने हाथ के आम आसानी से पहले निकाल दिया, वो निकालना जरूरी है। जब वो नहीं निकालेंगे ना तो आगे जाकर वो न्यू का न्यू खेत में चला जाएगा और रोपाई अगर उसकी होगी तो फिर वो बाद में जो हमारी फसल है उसके में वो बड़ा हो जाएगा, बड़ा होने के बाद हमने फिर वो फिर निकालना पड़ेगा। और जैसे ही लगे कि हमारी प्योद तैयार होगी उस टाइम पर उसमें हल्का सा यूरिया का छिड़काव कर दें, जिस कारण से जब उखाड़ेंगे प्योद ने तो उसमें जड़ नहीं टूटेंगी। और जो काम करने वाले भाई हैं जिन पर भी प्योद पड़वाएं थोड़ा सा निगरानी जरूर रखें, अगर पानी की जरूरत है तो पहले दिन दे दें, उससे टाइम जरूरत है तो उस टाइम भी दे दें। कुछ भाई सूखी प्योद पाड़े हैं, सूखी में बने है कि जड़ रह जा है, ये देखो पाड़न का तरीका है, हो सके है वो भाई ठीक आसानी से भी उसने खींच दें, लेकिन जब जड़ रह गई ऊपर वो खाली पौधा है और वो खेत में लगा दिया तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो कुछ बातें ध्यान करने की थी तो इनका ध्यान करें। और जिन भाइयों ने धान की प्योद बो रखी है ठीक ठाक उनकी बनन लाग रही होगी और शाम के टाइम पानी देने की कोशिश करें, जो खुराक देनी है वो भी दें ताकि ठीक ठाक प्योद हो जाए, उसके बाद रोपाई का काम हमारा ठीक ठाक हो सके।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि की बातें।

0: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को है। हमारा अगला कार्यक्रम हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: वैश्विक उत्सव इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका साधना शर्मा। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अवदत् यत् आधुनिके विश्वस्मिन् सामुद्रिक शक्तिः राष्ट्रस्य सामरिक प्रभावस्य प्रमुखा आधारा अस्ति। कोलकातायां श्यामा प्रसाद मुखर्जी जलपोत स्थात्रे तेन स्वदेश निर्मिताः त्रयः नौ सैनिक पोताः आईएनएस दुनागिरिः, आईएनएस संशोधकः, आईएनएस अग्रयश्च भारतीय नौसेनायै समर्पिताः।
2: आईएनएस विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्ध पोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
1: तेन उक्तं यत् एतेषां पोतानां निर्माणे 200+ सूक्ष्म लघु मध्यमोद्यमाः योगदानम् अकुर्वन्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी साम्प्रतिक वर्षस्य अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसस्य वैश्विक उत्सव रूपेण आयोजनार्थं विश्वस्य जनान् प्रति कृतज्ञतां व्यक्तवान्। तेन उक्तं यत् योगः विभिन्नेषु देशेषु समाजेषु च स्थितान् जनान् स्वास्थ्य कल्याणयोः समान लक्ष्ये संयोजयति। प्रधानमन्त्री एतत् विश्वस्य कृते प्रेरणादायकम् अस्ति इति अवदत्। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः

0: नूराष्ट्रिय उद्यानस्य भ्रमणं करिष्यति। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः मध्यप्रदेशस्य कुनो नेशनल पार्क इत्यस्य राष्ट्रिय उद्यानस्य भ्रमणं करिष्यति। सा प्रोजेक्ट चीता इति योजनायाः प्रगतेः समीक्षां करिष्यति, तथा च व्याघ्रपालकैः वनकर्मचारिभिः स्थानीयजनैश्च सह संवादं करिष्यति। अधिकारिणाम् अनुसारेण भारते सम्प्रति 500+ व्याघ्राः सन्ति, तेषु अधिकांशतः कुनो राष्ट्रिय उद्याने वसन्ति। भारतम् अद्यारभ्य नवदिल्ल्यां ब्रिक्स राष्ट्राणां राष्ट्रिय सुरक्षा परामर्शदातॄणां द्विदिवसीय सम्मेलनस्य आयोजनं करोति। अस्य अध्यक्षताम् अजीत डोभालः करिष्यति। नीट यूजी 26+ पुनर्परीक्षा सुदृढ सुरक्षा व्यवस्थायां सुसम्पन्ना। राष्ट्रीय परीक्षा अभिकरणस्य अनुसारेण देशे विदेशे च स्थितेषु 44+5,000 परीक्षा केन्द्रेषु लक्षशः अभ्यर्थिनः सहभागिनः अभवन्। दिव्यांग अभ्यर्थिभिः सह सर्वेषां परीक्षार्थीनां सुविधार्थाः विशेष व्यवस्थाः अपि कृताः। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इत्यनेन 12 श्रेण्याः उत्तर पुस्तिका सत्यापनस्य पुनर्मूल्यांकनस्य च परिणामाः क्रमशः प्रकाशिताः। मण्डलेन प्राप्तेषु उक्तं यत् प्राप्तेषु आवेदनपत्रेषु 87% परिणामाः घोषिताः सन्ति, अवशिष्ट परिणामाः अपि शीघ्रमेव चरणबद्धरीत्या प्रकाश्यन्ते। छात्राः स्व आवेदनस्य स्थितिं डिजी लॉकर पटले परीक्षितुं शक्नुवन्ति। मण्डलेन निष्पक्षतां शुद्धतां च सुनिश्चित्य सर्वाः प्रक्रियाः सावधानतया सम्पन्नाः इति उक्तम्। छात्राः मिथ्या प्रचारेषु सामाजिक माध्यमेषु प्रसारितान् अप्रमाणित सन्देशान् च न विश्वसन्तु इति केवलं CBSE इत्यस्य आधिकारिक सूचनाः एव अनुसरन्तु इति परामर्शः दत्तः। तमिलनाडु राज्यस्य पेरियापालम क्षेत्रे स्थितायां समुद्री खाद्य निर्यात समवाये अमोनिया वायोः स्रवण घटनायां 7 जनाः मृताः, 70+ श्रमिकाश्च प्रभाविताः जाताः। घटनास्थले उत्थार चिकित्सा कार्याणि निरन्तरं प्रचलन्ति। राष्ट्रिय आपद्मोचन बलस्य तथा रासायनिक जैविक परमाणु आपदा विशेष दलानां च सदस्याः त्वरितम् आपद उत्थार अभियानम् आरब्धवन्तः। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजयः उच्चस्तरीय अन्वेषणस्य आदेशं दत्त्वा 3-सदस्यीयां समितिं नियुक्तवान्। फीफा विश्व कप चषके केप वर्डे उरुग्वे च अनयोः दलयोः स्पर्धा तत्र 2-2 अंकेन समतायाम् अभवत् इति वार्ता।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने ये बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट INS दूनागिरी, संशोधक और अग्र शामिल हैं।
2: भारत अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्वभर के लोगों का आभार व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देखकर खुशी होती है कि योग सभी क्षेत्रों और विभिन्न देशों के लोगों को स्वस्थ जीवन तथा कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि योग दिवस आने वाले समय में अधिक लोगों को दैनिक जीवन में योग अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। भारत आज से नई दिल्ली में

0: देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की दो दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी इसमें शामिल रहेंगे। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी आज से यूजीसी नेट जून 2026 की परीक्षा शुरू करेगी। ये राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट मोड में इस महीने की 30 तारीख तक प्रतिदिन दो पारियों में आयोजित की जाएगी। यूजीसी नेट परीक्षा उन अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की जाती है जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF और सहायक प्रोफेसर के पदों तथा PhD पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता प्राप्त करना चाहते हैं। नीट UG पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हुई। NTA ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं के अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जारी करने शुरू कर दिए हैं। बोर्ड के अनुसार 87% से अधिक आवेदनों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं जबकि शेष परिणाम जल्द ही जारी कर दिए जाएंगे। तमिलनाडु के पेरिया पालेम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया। मैनचेस्टर में ग्रुप ए मुकाबले में भारत के 159 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने 5 गेंद शेष रहते 4 विकेट पर 161 रन बना लिए। दक्षिण अफ्रीका की मारिजान कैप ने नाबाद 81 रन की शानदार पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर महिला और पुरुष क्रिकेट दोनों में 200 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: गुड मॉर्निंग, दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुश्तबा। Prime Minister Narendra Modi says a strong maritime capability is the deciding factor for a country's economic and strategic influence, and India is preparing for it. In his address after commissioning 3 indigenously built naval ships in Kolkata, Mr. Modi said India does not want to remain only a buyer country in the defence sector, and the nation's armed forces cannot become just a market for the world. The Prime Minister commissioned indigenously built stealth frigate Dunagiri, survey vessel Sanshodhak and anti-submarine warfare shallow water craft Agra yesterday. Mr. Modi said India's journey from INS Vikrant to this date is not just about new warships but towards increasing self-reliance.
2: INS Vikrant se lekar aaj tak ki yatra keval naye yuddhapoton ki yatra nahi hai. Ye Bharat ki बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। आज INS अग्रय, INS दुनागिरी और INS संशोधक उसी यात्रा को नई गति दे रहे हैं। ये तीनों पोत भारत के 3 महत्वपूर्ण संकल्पों के भी प्रतीक हैं।
1: प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू विल विजिट कूनो नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश श्योपुर डिस्ट्रिक्ट टुडे। During her visit, she will go on a safari in the park this morning and review the progress of the cheetah reintroduction project. She will also interact with members of the Seheria tribe who work as cheetah mitras, cheetah trackers, local forest staff and tourist guides to learn about the experiences and role in the project. After the visit, The president will leave for Gwalior and later return to New Delhi. Prime Minister Narendra Modi launched India's ambitious cheetah reintroduction project in 2022 by releasing 8 cheetahs brought from Namibia into Kuno National Park on his birthday. Later, more cheetahs were brought from South Africa and Botswana. India will host a two-day meeting of BRICS National Security Advisors in New Delhi beginning today. National Security Advisor Ajit Doval will chair the gathering, which brings together security chiefs from the bloc's 11 member countries. These include India, Brazil, China, Egypt, Ethiopia, Indonesia, Iran, Russia, Saudi Arabia, South Africa, and UAE. The meeting will focus on the theme, Non-Traditional Security Challenges Confronting the World Today, with discussion centered on the rapidly evolving nature of national security threats and the role of new technologies in emerging security risks. Delegates will also examine cybersecurity, digital vulnerabilities, and artificial intelligence-driven threats. The National Testing Agency NTA will commence the UGC NET June 2026 examination from today. The national level eligibility test will be conducted in computer-based test mode until the 30th of this month in two shifts each day. The UGC NET exam is conducted for candidates aspiring to qualify for the Junior Research Fellowship or GRF, assistant professor positions, and admission to PhD courses. The NTA has advised candidates to download their admit cards and carefully verify all exam details. CBSE has commenced the release of Class 12 verification of issues observed and re-evaluation outcomes. In a statement, it said that the outcomes are being released in a phased manner, with over 87% of the total applications received declared yesterday. The outcomes of the remaining applications will be made available in phases, and the entire process is expected to be completed soon. The status of application can be checked at results.digilocker.gov.in. On to sports now. In men's hockey, India defeated the Netherlands 3-2 in their final FIH Pro League match in Rotterdam yesterday. Jugraj Singh, Abhishek and Rajinder Singh scored the goals, helping India register their second win of the leg against the Dutch side. And that is the end of this news bulletin.
3: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स पर आप जुड़ चुके हैं आकाशवाणी रोहतक के साथ। समय है कार्यक्रम रूपरेखा का, तो डालते हैं एक नजर हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों पर।

वर्षाकालीन भिंडी की काश्त विषय पर डॉक्टर हंसराज से की गई बातचीत किसान भाई सुनेंगे कार्यक्रम कृषि जगत में। समय शाम 6:20।

शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में अब से थोड़ी देर बाद सुबह 7:15 पर आप सुनेंगे सलीम का गाया राग वैरागी। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत रात 10 बजे आपको सुनवाएंगे अहमद खां अली का राग मारू विहार।

लोक संगीत कार्यक्रम में सुबह 8:30 पर गायक कलाकार होंगी सरिता चौधरी। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे सुबह 9:00 पत्रों पर आधारित कार्यक्रम आपकी पसंद में, दोपहर 1:10 पर कार्यक्रम चित्रपट संगीत में, शाम 7:30 पर फिल्म संगीत कार्यक्रम के तहत रात 9:15 एक फिल्म से कार्यक्रम में, और रात 10:30 पर मन चाहे गीत कार्यक्रम के अंतर्गत। ये थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है, प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत, जिसमें आज हम आपको सुनवाएंगे सलीम कुमार का सितार पर बजाया राग वैरागी।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत, जिसमें आज आपने सुना सलीम कुमार का सितार पर बजाया राग वैरागी। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है, मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुबह सवेरे।

श्रोताओं, हमारे आसपास का आवरण ही है जो हमारे जीवन को आसान बनाता है, और यही पर्यावरण हमारे जीवन में कठिनाई का कारण भी बनता है। प्रकृति जीवनदायिनी है, और अगर प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाए तो वही जीवनदायिनी प्रकृति भक्षक का रूप भी ले लेती है। ये सब हम पर निर्भर करता है कि हम प्रकृति को संयमित रखना चाहते हैं या फिर छेड़छाड़ करके इसके संतुलन को बिगाड़ रहे हैं। हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अंधाधुंध पेड़ पौधों और जंगलों का दोहन कर रहे हैं। ये वन ही हैं जो प्रकृति में संतुलन बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। वर्षावन पृथ्वी के तापमान को स्थिर रखने और जलवायु परिवर्तन को रोकने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। इन्हीं वर्षावनों के महत्व को जन जन तक पहुंचाने के लिए आज हम विश्व वर्षा वन दिवस मना रहे हैं। विश्व वर्षा वन दिवस हर साल हम 22 जून को मनाते हैं। इस दिवस की शुरुआत 2017

में रेन फॉरेस्ट पार्टनरशिप नामक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन द्वारा की गई। इसका लक्ष्य जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए महत्वपूर्ण प्राकृतिक आवासों को नष्ट होने से बचाना है, साथ ही वन जो भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके हवा को साफ करते हैं उन्हें बचाने में योगदान देना है। हर साल एक नए थीम के साथ इस दिन को हम मनाते हैं और इस साल का हमारा थीम है द फॉरेस्ट विद इन यू, यानी आपके भीतर का जंगल। ये थीम हमें ये बताता है कि वर्षा वन हमारे बहुत दूर स्थित कोई पारिस्थितिक तंत्र नहीं है, बल्कि ये हमारे दैनिक जीवन, हमारी संस्कृति, जलवायु और भविष्य से गहराई से जुड़े हुए हैं। हम सबका कर्तव्य है अपनी प्रकृति को बचाना, क्योंकि प्रकृति है तभी हम हैं। और आसपास जब हरियाली होती है तो हम सबका मन प्रफुल्लित रहता है, तनाव कम होता है, हमारे जीवन को ये सरल और सुदृढ़ बनाते हैं। साथ ही पेड़ों पर चहकते पंछियों की आवाज़ें, सहसाती हवा हमारे जीवन को संगीत के सुरों से भर देती है और आनंदमयी कर देती है।

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: श्रोताओं, संगीत हर किसी के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संगीत हर जगह मौजूद है। कार में यात्रा करते समय, व्यायाम करते समय, अन्य कोई काम करते समय हम संगीत सुन सकते हैं। चाहे अतीत हो या वर्तमान, संगीत ने लोगों के जीवन में कई क्षेत्रों में सफलता दी है। संगीत हमारे जीवन में आकार देने का काम करता है। संगीत हमारे मूड पर गहरा प्रभाव डालता है। उदास दिन में जब हम जोशीला गाना सुनते हैं तो अच्छा महसूस करते हैं, खुश हो जाते हैं। वहीं कोई उदास गाना सुनने पर मूड गमगीन हो जाता है। काम और शिक्षा दोनों क्षेत्रों में संगीत की अहम भूमिका होती है। अगर उदास महसूस होता है तो कोई ऊर्जावान गाना सुनने पर हमारा मन काम में लगने लग जाता है। पढ़ाई की तरफ हमारा ध्यान होता है। पढ़ाई करते समय भी संगीत का इस्तेमाल जब करते हैं तो ध्यान दूसरी चीज़ों में नहीं भटकता, केंद्रित हो जाता है। जिम जाने वालों के लिए ऊर्जावान गाना सुनना उनके वर्कआउट सेशन को गति देता है। उन्हें समय और कुशलता से काम पूरा करने और आत्मविश्वास और ऊर्जा देता है। अगर पढ़ाई में उत्पादकता महसूस होती है तो पढ़ाई की दिनचर्या में एक बेहतरीन चीज संगीत है। हर किसी का काम करने का अपना तरीका होता है और संगीत सुनते हुए काम करना कुछ लोगों के लिए अच्छा और प्रभावशाली होता है, उनके उत्पादन शक्ति को बढ़ाता है। संगीत हमारे मन को शांत करके तनाव को दूर करने का भी एक अद्भुत तरीका है। ये मुश्किल समय में भावनाओं को व्यक्त करने और सुकून पाने का एक सशक्त माध्यम है। संगीत भावनाओं, शरीर दोनों पर प्रभावशाली ढंग से प्रभाव डालता है। तेज लय वाला संगीत अधिक चौकस और बेहतर एकाग्रता बनाए रखने में सहायता करता है। खुश मिजाज और उत्साहवर्धक संगीत हमारे जीवन को उत्साहित और सकारात्मक महसूस करवाता है। वहीं धीमी गति का संगीत हमारे दिमाग और मांसपेशियों को शांत करता है। दिन भर के तनाव को दूर करते हुए आराम का अनुभव हमें करवाता है। जब हम शांत करने वाला संगीत, धीमी गति का संगीत सुनते हैं तो हमारा दिमाग प्रतिक्रिया करता है, जिससे एक बहुत ही सकारात्मक और तनाव मुक्त वातावरण हमारे लिए बनता है, जो हमें समग्र रूप से तनाव से दूर करता है। संगीत की मदद से लोगों के बीच महत्वपूर्ण बंधन, रिश्ते बनते हैं। शादियों, संगीत समारोहों, मिलन समारोहों, सामाजिक कार्यक्रमों, कई अन्य अवसरों पर संगीत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये लोगों को एक दूसरे से जुड़ने में सहायता करता है। वहीं विभिन्न संस्कृतियों के लोग संगीत के प्रति अपने साझा प्रेम के माध्यम से एक साथ आ जाते हैं। संगीत लोगों को एक दूसरे के जीवन से जोड़ता है, संबंधों का आधार बनता है, मिलकर साथ रहने में, मिलकर साथ चलने के लिए प्रेरित करता है। बच्चों की बात करें तो बच्चे संगीत से जल्दी प्रभावित होते हैं, उनसे सीखते हैं। बच्चे शुरुआती विकास के दिनों में संगीत जब उनसे जुड़ता है तो वो नई चीज़ों को बहुत आसानी से सीख लेते हैं। शिक्षक अक्सर बच्चों को किसी अवधारणा को समझाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। शिक्षा में संगीत का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। ये गीत संगीत सीधे व्याख्यान की तुलना के तथ्यों और सूचनाओं को बेहतर ढंग से याद रखने में भी हमारी सहायता करते हैं। साथ ही शैक्षिक गीत मनोरंजक होते हैं और बच्चों को सीखने में, उनकी रुचि को बनाए रखने में बहुत सहायता करते हैं। हम जैसा संगीत सुनते हैं उससे हमारे व्यक्तित्व का पता चलता है। हमारे मूड को, हमारे व्यक्तित्व को संगीत दर्शाता है। हमारे विचारों को व्यक्त करने में हमारी सहायता करता है। जब उदास मन को संगीत की सुरों से जोड़ा जाता है तो मन प्रफुल्लित हो जाता है, रचनात्मकता हमारे जीवन में बढ़ती है। हमारे मन को शांत रखने, काम को पूरा करने, स्पष्ट रूप से सोचने में बहुत मददगार है। संगीत सुनने से मन और शरीर की गहराइयों में ये सात सुर ऐसे उतर जाते हैं और जो प्रभाव हमारे जीवन पर डालते हैं, इन सब से हम भली भांति वाकिफ हैं। संगीत ही है जो हमारे भावों को, हमारे विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है, उनसे गहरा सकारात्मक रिश्ता हमारा जोड़ता है। ये संगीत के सुर हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं। इन संगीत के तार जब हमारे जीवन में जुड़ते हैं तो हमारा जीवन तनाव मुक्त हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है।

इसी गीत के साथ संपन्न होता है कार्यक्रम सुबह सवेरे। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स पर। सुबह के 8 बजने को हैं अब समाचार प्रसारित होंगे, पहले हिंदी में 8:15 पर अंग्रेजी में। समाचार हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मजबूत समुद्री क्षमता किसी भी देश के आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव में निर्णायक है और भारत इस ओर अग्रसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के कोनो राष्ट्रीय उद्यान के दौरे पर हैं, चीता परियोजना की समीक्षा की। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की दो दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज से यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा का आयोजन करेगी। अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, स्विट्जरलैंड में प्रतिनिधिमंडलों की बैठक के बाद ईरान वार्ता में प्रगति। और पुरुष हॉकी में भारत ने FIH प्रो लीग रॉटरडम चरण के अपने अंतिम मैच में नीदरलैंड को 3-2 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति में समुद्री क्षमता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और भारत इसे मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कोलकाता में कल स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक पोतों दूनागिरी, संशोधक और अग्रय को नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है और केवल हथियारों का खरीदार देश बनकर नहीं रहना चाहता।
1: आज भारत रक्षा क्षेत्र में केवल खरीदार बनकर नहीं रहना चाहता। हमारी सैन्य शक्ति दुनिया के लिए बाजार नहीं बन सकती। मेरी शक्ति की सामर्थ्य की पहचान मेरी आत्मनिर्भरता पर है।
0: श्री मोदी ने कहा कि समुद्री सामर्थ्य के बिना कोई भी देश वैश्विक शक्ति नहीं बन सकता। विकास, सुरक्षा और समृद्धि का सीधा संबंध समुद्र से है। श्री मोदी ने कहा कि INS विक्रांत से शुरू हुई आत्मनिर्भरता की यात्रा को इन नए पोतों के शामिल होने से और गति मिलेगी।
1: INS विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्ध पोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में 40 से अधिक युद्धपोत और पनडुब्बियां नौसेना में शामिल की गई हैं।
1: भारत निर्माता बनना चाहता और जिस दिन निर्माता होगे ना उस दिन हम निर्णायक भी होंगे। बीते वर्षों में 40 से अधिक मेड इन इंडिया युद्धपोत और पनडुब्बियां नौसेना में शामिल हुई है। वर्तमान में भी 45 बड़े नौसैनिक प्लेटफॉर्म निर्माणाधीन है। यह केवल संख्या नहीं है, यह भारत की औद्योगिक क्षमता का प्रमाण है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्व भर के लोगों का आभार व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देखकर खुशी होती है कि योग सभी क्षेत्रों और विभिन्न देशों के लोगों को स्वस्थ जीवन तथा कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल मध्य प्रदेश के कोनो राष्ट्रीय उद्यान का दौरा किया। उन्होंने भारत के प्रमुख पहल चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा भी की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह कूनो नेशनल पार्क में सफारी की। इसके बाद वे कूनो के चीता कमांड एवं कंट्रोल सेंटर का दौरा कर चीता परियोजना से जुड़ी प्रदर्शनी का अवलोकन किया था। अधिकारियों ने उन्हें बताया कि वर्तमान में भारत में 52 चीते हैं। उन्हें चीतों की निगरानी और ट्रैकिंग व्यवस्था के बारे में भी जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2022 में अपने जन्मदिन पर नाम्बिया से लाए गए 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़कर भारत की महत्वाकांक्षी चीता पुनर्स्थापन परियोजना की शुरुआत की थी। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से भी चीते लाए गए। संरक्षण और प्रजनन के प्रयासों के कारण अब कूनो में चीतों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसे परियोजना की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
0: भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: इस दौरान साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी इसमें शामिल होंगे। ये चौथी बार है जब भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। इस वर्ष भारत की अध्यक्षता का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास का निर्माण। समाचार कक्ष से मैं मृगनैनी पांडे।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा आज से शुरू होगी। ये राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट CBT माध्यम से 30 जून तक प्रतिदिन दो पालियों में आयोजित की जाएगी। यूजीसी नेट परीक्षा उन अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की जाती है जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF, सहायक प्रोफेसर के पदों और PhD पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता प्राप्त करना चाहते हैं। नीट UG पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हुई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया कि देशभर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए। इस बीच NTA ने नीट UG पुनर्परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के दावे को खारिज किया है। सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो में प्रश्न पत्र टेलीग्राम पर लीक होने का दावा किया गया था। NTA ने कहा है कि परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सफलतापूर्वक आयोजित की गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं के अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जारी करने शुरू कर दिए हैं। बोर्ड के अनुसार 87% से अधिक आवेदनों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं जबकि शेष परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज भाजपा सरकार अपना पहला पूर्ण बजट पेश करेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार के इस बजट पर सभी का ध्यान है। 19वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 कल शाम संपन्न हो गया। मुंबई में आयोजित समापन समारोह को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने महोत्सव को गैर काल्पनिक सिनेमा के लिए विश्व के सबसे प्रतिष्ठित समारोहों में से एक बताया। हमारी संवाददाता ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता वर्ग में पोलैंड के वृत्तचित्र सिल्वर ने सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन कॉन्च पुरस्कार जीता।
4: अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता विभाग ने माया सॉन्ग को सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म के लिए सिल्वर कॉन्च और अंडर द स्नो को सर्वश्रेष्ठ लघु कथा फिल्म का सिल्वर कॉन्च दिया गया। राष्ट्रीय प्रतियोगिता विभाग ने आर्मस्ट्रॉन्ग फ्रॉम अंगलम्मन कोविल स्ट्रीट को सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म का सिल्वर कॉन्च मिला। वहीं स्मॉल क्लाउड्स को सर्वश्रेष्ठ लघु कथा फिल्म और वाई को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म का सिल्वर कॉन्च प्रदान किया गया। द ओल्ड बुल नोज और वंस न्यू को सर्वश्रेष्ठ छात्र फिल्म का पुरस्कार मिला जबकि द लास्ट शेल्टर को विकसित भारत, वंदे मातरम के 150 वर्ष, भारत एट 2026 विषय पर बनी सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का पुरस्कार दिया गया। इसी के साथ MIFF 2026 का समापन हुआ। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस ने कहा है कि ईरान के साथ वार्ता में प्रगति हो रही है। स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर अमेरिका और ईरान के वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडलों के बीच बातचीत जारी है। एक रिपोर्ट।
5: लेक ल्यूरसन के निकट बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट में बंद कमरे में हो रही इस वार्ता से पहले जेडी वेंस ने कहा कि अब तक की बातचीत के उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं और आगे भी प्रगति की उम्मीद है। वार्ता का मुख्य केंद्र ईरान का परमाणु कार्यक्रम है। इसके साथ ही इसराइल और लेबनान के बीच युद्ध विराम बनाए रखने सहित क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर भी चर्चा जारी है। जेडी वेंस ने कहा कि हाल के कूटनीतिक प्रयासों से सकारात्मक परिणाम मिले हैं और क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता बनाए रखने के लिए अमरीका लगातार प्रयासरत है। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने और कूटनीतिक समाधान की दिशा में इस वार्ता पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजर बनी हुई है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण वर्ष 2026 के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर हम अपनी विशेष श्रृंखला पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत 15 विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं।
6: हम लिख के गया ऐसे करते करते लेखक का एक दर्जा मिल गया।
7: सोना घाटी की पहाड़ी, पहाड़ी को देखा तो उस पहाड़ी पर एक भी पेड़ नहीं था, वृक्ष विहीन पहाड़ी हो गई थी, झाड़ियाँ कुछ बची थी और वहाँ पर 8,000 से ज्यादा हमने जल संरचनाएं बनाई।
8: समाज चेतना के लिए हम सोचा, समाज जागरण के लिए, आदमी के लिए हम सोचा क्या करना है और क्या नहीं करना है।
9: मेरे मन माया कि हम इनको आत्मनिर्भर करना है तो इनको साक्षरता बनाना है, इनको शिक्षा देना है।
0: ये विशेष कार्यक्रम आज और कल प्रातः 9:10 पर आकाशवाणी गोल्ड से प्रसारित होंगे, जिन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। आकाशवाणी का समाचार सेवा

0: भाग आज रात 9:30 पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा इस परिचर्चा में भाग लेंगे। पुरुष हॉकी में भारत ने कल रॉटरडैम में FIH प्रो लीग के अपने अंतिम मुकाबले में नीदरलैंड्स को 3-2 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। भारत की ओर से जुगराज सिंह, अभिषेक और राजेंद्र सिंह ने गोल किए। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले इलाकों और सिक्किम में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि बिहार, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, गोवा और लक्षद्वीप में कल तक तेज बारिश का अनुमान है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
1: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन और कड़ी सुरक्षा के बीच फिर से नीट परीक्षा कराए जाने के समाचार छाए हुए हैं। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथन को शीर्ष समाचार बनाया है। शांति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है योग। कोलकाता में योग दिवस समारोह के दौरान एक प्रतिभागी की मदद करते हुए प्रधानमंत्री की तस्वीर भी अखबार में प्रमुखता से प्रकाशित है। दैनिक जागरण ने इस खबर को शीर्षक दिया है, पहाड़ से मैदान तक योगमय हुई दुनिया। सियाचिन ग्लेशियर की बर्फीली ऊंचाइयों और पानी की गहराइयों में योग करते सैनिकों के चित्र भी ध्यान आकर्षित करते हैं। पंजाब केसरी और दैनिक भास्कर ने क्रिकेट खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी की तस्वीरों को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर छापते हुए उनकी उपलब्धियां बयां की हैं। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, वैभव क्रिकेट की दुनिया का अजूबा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, नीट देने 2 लाख अभ्यर्थी पहुंचे। दैनिक जागरण बताता है कि देश विदेश के 5,454 केंद्रों पर यह परीक्षा हुई और गड़बड़ी की कोई सूचना नहीं है। परीक्षा में भाग ले रहे उम्मीदवारों को कोई कठिनाई ना हो इसलिए प्रधानमंत्री मोदी के हवाई अड्डे पर 45 मिनट प्रतीक्षा करने को भी अखबार ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने पहलगाम हमले की जांच के सामने आए कुछ तथ्यों को सचित्र प्रकाशित करते हुए खबर को शीर्षक दिया है, सीमा पार से आए ड्रोन ने गिराए थे हथियार।
0: और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मजबूत समुद्री क्षमता किसी भी देश के आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव में निर्णायक है और भारत इस ओर अग्रसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान के दौरे पर हैं, चीता परियोजना की समीक्षा की। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज से UGC नेट जून 2026 परीक्षा आयोजित करेगी। और पुरुष हॉकी में भारत ने FIH प्रो लीग रॉटरडैम चरण के अपने अंतिम मैच में नीदरलैंड्स को 3-2 से हराया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेज स्ट्रॉन्ग मैरिटाइम केपेबिलिटी इज डिसाइडिंग फैक्टर फॉर अ कंट्रीज इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस एंड इंटर इज प्रिपेयरिंग फॉर इट। President Draupadi Murmu visits Kuno National Park in Madhya Pradesh, reviews progress of Project Cheetah. India to host 2-day meeting of BRICS National Security Advisors in New Delhi today. National Testing Agency to commence UGC NET June 2026 examination from today. US Vice President J.D. Vance says Iran talks making progress as delegations meet in Switzerland. And in men's hockey, India beat Netherlands 3-2 in the last match of FIH Pro League Rotterdam leg. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said that a strong maritime capability is the deciding factor for a country's economic and strategic influence, and India is preparing for it. He said a country with maritime capabilities is strong and has more economic and strategic influence.
3: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
2: Prime Minister Modi made these remarks after commissioning three indigenously built Indian Navy platforms, INS Dounagiri, INS Sanshodhak and INS Agra at the Shyama Prasad Mukherjee Port in Kolkata yesterday. Designed by the Navy's Warship Design Bureau and built by Garden Reach shipbuilders and engineers, the vessels are intended to strengthen combat operations, hydrographic surveying and anti-submarine warfare.
3: जब समुद्री विरासत की बात होती है तो बंगाल का नाम स्वाभाविक रूप से सामने आता है। यह भारत के समुद्री संपर्कों की भी महत्वपूर्ण भूमि रही है। हुगली की धाराओं ने इतिहास को बदलते हुए देखा है, व्यापार के नए अध्याय देखे हैं, विकास की नई यात्राएं देखी है और संयोग देखिए, ये पोर्ट बंगाल के ही सपूत देश के पहले उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर है।
2: Prime Minister Modi has expressed gratitude to people around the world for making the International Day of Yoga 2026 a global celebration. The Prime Minister said it is encouraging to see yoga bringing together people from all walks of life across nations in the shared pursuit of wellness and good health. He expressed hope that the day would inspire more people to make yoga a part of their daily lives in the times to come. President Draupadi Murmu visited Madhya Pradesh's Kuno National Park yesterday and reviewed the progress of Project Cheetah, India's flagship initiative to reintroduce the species in the wild after its extinction in the country. During the visit, the president toured the park's cheetah management area and was briefed by officials on the status of the project. Kuno, the country's first cheetah reintroduction site, has been developed under Project Cheetah because of its suitable habitat, adequate prey base and relatively low human disturbance. More from our correspondent.
4: President Draupadi Murmu went on a safari at Kuno National Park this morning. The president will also interact with the members of the Saharia tribe working as cheetah mitras, cheetah trackers, local forest personals and tourist guides to learn about their experiences and role in the project. Earlier on Sunday, President Murmu visited the Cheetah Command and Control Center at Kuno. The president viewed an exhibition related to the cheetahs project. Officials informed her that India currently has 52 cheetahs, of which 49 are in the Kuno National Park, while 3 have been shifted to the Gandhi Sagar Wildlife Sanctuary. She was also briefed about the monitoring and tracking system used for the animals. Prime Minister Narendra Modi launched India's ambitious cheetah reintroduction project in 2022 by releasing 8 cheetahs into Kuno National Park on his birthday. Subsequently, more cheetahs were brought from South Africa and Botswana. Abhinav Goyal, Akashvani News, Bhopal.
2: India will host the two-day BRICS National Security Advisors meeting in New Delhi beginning today. National Security Advisor Ajit Doval will chair the meeting. A report.
5: During the meeting, the National Security Advisors and heads of delegation of BRICS member countries will exchange views on the theme, Non-Traditional Security Challenges Confronting the World Today. They will discuss the rapidly evolving nature of national security challenges as well as the role of new technologies in emerging security threats. The National Security Advisors and heads of delegation will also review the outcomes of the recently held BRICS joint working groups on counter-terrorism and on security in the use of information and communication technologies. Rishu Jaiswal, Akashvani News, Delhi.
2: The National Testing Agency or NTA will commence the UGC NET June 2026 examination from today. We have a report.
6: The national level eligibility test will be conducted in computer-based test CBT mode until 30th of this month in two shifts each day. The UGC NET is conducted for candidates aspiring to qualify for the Junior Research Fellowship JRF, assistant professor positions and admission to PhD courses. The NTA has advised candidates to download their admit cards and carefully verify all examination details. It said that candidates must check their examination date, shift, timing and allotted examination center before the exam day. Moreover, persons with disabilities or persons with benchmark disabilities candidates have been advised to visit their allotted centers in advance to familiarize themselves with the location and facilities. Chirag Jha, Akashwani News, Delhi.
2: The NTA has refuted

dumbbell.

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हमसफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हमसफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
2: आकाशवाणी रोहतक से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक संगीत, जिसमें आज गायक कलाकार हैं सरिता चौधरी और संतोष नागिया।

इसी गीत के साथ संपन्न होता है कार्यक्रम लोक संगीत, जिसमें आज गायक कलाकार थी सरिता चौधरी और संतोष नागिया। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है, मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स पर। प्रस्तुत है पत्रों पर आधारित फरमाइश फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। आप सभी को किरण का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत कर रही हैं सौदागर फिल्म के गीत के साथ। इस गीत को सुनना चाहा है गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से मास्टर खिल्लू परवेज, इमरान राम नाज, नवाजिश शेख, दानिश शेख, अमन आफरीदी। जिला खरगोन सनावद उत्तर प्रदेश से अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा, राजकुमार बोडाना। आदलपुर गोगांव से संजय बामनिया, माया कान्हा और कृष्णा। पदमा टॉकेज नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, आश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह। मालियाना सरगना मेरठ से इसी गीत के लिए फरमाइशी खत भेजा है अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान जैन और जिव्यम जैन ने। आप सभी श्रोताओं की पसंद पर सुनते हैं सौदागर फिल्म का गीत।

सौदागर फिल्म से गीत आपने सुना। अगला गीत सुनवाएंगे बरसात फिल्म से, और इस गीत के लिए फरमाइशी खत भेजा है रोहतक से महेंद्र शाह, हरेंद्र शाह, जितेंद्र शाह, हर्षित और मानसी शाह, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साबिर राही, मेहराज जहां ने खत भेजा है आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से। खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से इस गीत को सुनना चाहा है अभिजीत गवहानकर, सरिता गवहानकर, एकांश गवहानकर। बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गवहानकर, प्रणीता गवहानकर। आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली, शैलेश गवहानकर, श्विता सुमित गवहानकर, ध्वनि गवहानकर। गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंदवठे और आरती जोंदवठे। इसी गीत के लिए खत भेजा है महाराष्ट्र हिंगोली से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे, उत्तम जमधाड़े और स्वराज जमधाड़े ने। तो आप सभी श्रोताओं की पसंद पर बरसात फिल्म का गीत।

कुमार सानू की आवाज़ में बरसात फिल्म का गीत सुना आपने। अगला गीत सुनवाएंगे दबंग फिल्म से, और इस गीत के लिए खत भेजा है मोहल्ला हिसार से राजकुमार ढोचक, गीता, अमन, सानिया, सुभाष, राहुल, रोहित, जोगेंद्र, दर्शना, इंदु और यक्षित, समडील नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रद्धा, अदिति, राधे, दीपक, अंकु, राघव गुप्ता, करमपुरा दिल्ली से कविता, गौरव, मानसी, अनिल मदान, फुल चिंचोली पंठरपुर से जाकिर मुलानी, सुमैया, सुभान, समीर, सलमा, मुमताज, दिलशाद, नसीर मुलानी, बाबू बी मुलानी और बादशाह, रघुनाथपुरा श्रीगंगानगर से लालगिरी गोस्वामी, हर्षित खुशी गोस्वामी, हनुमानगढ़ से मंटू शर्मा, सोनू शर्मा, सुशीला, लीलाधर शर्मा, वारणा शाहपुर कोल्हापुर महाराष्ट्र से विजय चौहान, तेजस्विनी चौहान, भाई इंदूरकर, शौर्य, श्रेयस, अंकिता, अनिकेत चौहान, कैथल से मधु नायक, पहाड़गंज मुल्तानी डांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन और टिल्लू, भिवानी से इस गीत को सुनना चाहा जितेंद्र खेड़ा ने। तो आप सभी श्रोताओं की पसंद पर दबंग फिल्म का ये गीत।

0: आकाशवाणी रोहतक से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद।
1: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाए समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
2: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

त्रिमूर्ति फिल्म से गीत आपने सुना विनोद राठौर, उदित नारायण और साथियों की आवाज़ों में। इस गीत को सुनना चाहा था कैदी मुड़ा रायगढ़ छत्तीसगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, उषा सिंह, ऋषभ सिंह, लीलू सिंह, रितु सिंह। धनवाद झारखंड से अमित कुमार सिंह, पूजा रवि, आरती सिंह। पटना बिहार से भुवनेश्वर, मोनू, लीलू। गाँव 34 STG पीली बंगा से अमन मेहरा, समर मेहरा, रितु मेहरा, बिशन लाल मेहरा। करणपुर राजस्थान से शिव कुमार सेठी, सुनीता सेठी, कमल सेठी, ज्योति शब्द सेठी, बानी और राजू। लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू, सरोजनी, कुंती साहू। कौली नांदेड़ से नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, साईं गायकवाड़। नखेल येयुन से पुंजाजी नहावकर, विशाल। और वासिम मनौरा से ध्रुव कुमार गिरी, ज्योति गिरी और प्रणित, साथ ही तेजस। अगला गीत सुनना चाहा है पुणे महाराष्ट्र से शैलेंद्र पुरी, सोनम धनुषगिरी। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन अपार ढींगिया। कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत राजे जाधव, संचित बायल, प्रथमेश देशमुख, प्रणाली देशमुख, सर्वत सानवी देशमुख। खंडवा से किशोर सांवले, रेखा सांवले, हिमांशु अनुराग, सुलोचना चारवी, प्रणय सांवले। दतरेंगी छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्र मणि, नॉर्वेलाल वर्मा। सालियाखेड़ी मालवा आगरा से सोनू विश्वकर्मा, मोनू विश्वकर्मा। वासिम महाराष्ट्र से रीचा वसमतकर, सोनाली पाठक, संगीता पांडे, अश्वनी कुलकर्णी, कल्पना, सुनीता पांडे, मालती, संगीता, उषा, छाया, तृप्ति, श्रृंगारे, विशाखा आमले, माधुरी जोशी, सोनू और जीतू। छोटी बलिया करजत मुंबई से अहमद भाई फुलवाले, दुखना रानी, सदफ आरजू, जूही इकबाल, आमना नसरीन, ईरान अहमद, नुरैशा अहमद और जूही इकबाल। तो आप सभी श्रोताओं की पसंद पर हथियार फिल्म से उदित नारायण, अलका याग्निक की आवाज़ों में ये खूबसूरत सा गीत।

आकाशवाणी रोहतक से सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद। अगला गीत आपको सुनवाएंगे आ अब लौट चले फिल्म से। इस गीत को सुनना चाहा है गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतक बिरक, मीका बिरक, चकला बाजार समाना से पप्पू राजद खुशदिल, संगीता जिंदल, हसमुख जिंदल, प्रोमिलागंज आलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल वर्मा, प्रियांश वर्मा, ऋषि वर्मा, राजनगर कांति निकेतन से कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता, रेणु मिश्रा, गोल्डी मास्टर रुद्र गुप्ता, राजनगर गांधी चौक से रानी गुप्ता, सोनाली गुप्ता, संगीता गुप्ता, मेनका गुप्ता, पलक पंखुरी, माधवी साध्वी, हैप्पी, रिद्धि, गुनगुन, रेणु, ज्योति और धामड़ी मनोरा से तुलसीराम, मायावती डेरे, संदेश आदेश डेरे, किरण डेरे, प्रज्वल डेरे। इसी गीत के लिए जतुका किशनपुर से खत भेजा है आलम दिलका, शवाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, सवाना नाज, चांदनी नाज, सिराजपुर गणेशपुर से हिना कौसर, मोहम्मद वकील राही, ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पंवार, मोहम्मद साकीब पंवार, मोहम्मद हसनैन पंवार, बाजार चौक गाँव दिवाल से शंकर लाल गंगराड़े, वनिता गंगराड़े, छोटू, पूजा, रोशनी, अजय, वामिका गंगराड़े, गांव छेंगा और जिला खंडवा से अशोक कुमार वाघे, वंदना वाघे, भूपेंद्र वाघे, झवर वाघे, तनुश्री आरोही और कान्हा वाघे, भटिंडा रोड डब्वाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जे एस नायक और शोभा नायक। आप सभी श्रोताओं की पसंद पर सुनते हैं आ अब लौट चले फिल्म का गीत।

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: दीदी, नौकरी लग गई।
2: अरे वाह, बधाई हो।
3: तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
1: हाँ दी, नया मोबाइल।
3: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
1: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
3: पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो।
1: पर दी,
3: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
1: हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा।
3: अच्छा।
4: RBI कहता है,
5: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

राजा फिल्म किस गीत को सुनना चाहा था? मुक्तसर से बाबू सिंह धीमान, बलजिंदर कौर, रवनीत और निशु। कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश भत्ता, नीलम भत्ता, नितिन पलक, करण, गीतू, निहारिका, वंश भत्ता। पटेल नगर मलोर पंजाब से रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, आरजू जाजोरिया। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभ्यनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित। केरला से सागर और जरूर वरुड़। महाराष्ट्र से बाबा साहेब वाडोदा, मीनाक्षी चरपे, रजनी और पुणे से पंकज वाडोदे, आर्या, प्रियंका। दौलत बाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली, जुनैद अब्बासी। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर, रेखा, गगन, सोनी, सीता और गीता। मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, जग्गी दुआ, संदीप गुगलानी, किरण ठाकुर, सुनीता जैन, सुनीता शर्मा, इसप्रीत शर्मा। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा और कोटवा नारायण। बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश रॉय, उषा रॉय, अमित कुमार रॉय, हैप्पी रॉय। दुबैया नेवादा गाजीपुर से प्रतीक रॉय, रोशनी रॉय, प्रांजल। शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश रॉय, प्रीति रॉय और नवनीत रॉय। अगला गीत सुनवाएंगे किस्मत फिल्म से, पसंद आप सभी की। गांव कैरो जिला तरन तारण पंजाब से गुरदर्शन लाल जलोत्रा, सुनीता, शम्मी, रजनी, आकाशदीप, अनहद, गुरशबद। बेरड़ी से हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक करमरकर, प्राची करमरकर, तनु करमरकर। जनता कॉलोनी रोहतक से सुरेंद्र कुमार जैन। अलीका डब्वाली से बसंत सिंह चंद, राजकुमार, सुनीता, कुलदीप गांधी। पाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा। तो आप सभी श्रोताओं की पसंद पर किस्मत फिल्म का गीत।

कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनवाएंगे अशोका फिल्म से, और इस गीत को सुनना चाहा है आदर्श गांव बलियाली जिला भिवानी हरियाणा से दर्शन लाल बंसल, सुदेश रानी बंसल, प्रवीण कुमार बंसल, ममता रानी बंसल, कमल कुमार बंसल, गर्वीश और तमन्ना। परी महल कासगंज से आबाद खान, नबिल खान, आरफा खान, इल्मा खान, असलम शैफी। मीरा सराय बदायूं से आफरीन खान, जमीर खान। मोहल्ला हलवाइयान शेरकोट जिलो बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर। सुंदरखेड़ राजमाता नगर बुलढाणा महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति नरवाड़े, आकांक्षा नरवाड़े, आकाश कुमार। डोंगरगांव जिला राजनांद गांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका गजबिये, अनिष्का और तन्मय गजबिये। डवाली हरियाणा से जेके बकोलिया, सुनीता बकोलिया, संजय अनिल और मीनू बकोलिया। छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश। आप सभी श्रोताओं की पसंद पर अशोका फिल्म का ये गीत।

0: अशोक का फिल्म के इस गीत के साथ संपन्न होता है पत्रों पर आधारित फरमाइश फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के 10 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी में, उसके तुरंत बाद अंग्रेजी में। समाचार हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति में समुद्री क्षमता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और भारत इसे मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कोलकाता में कल स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक पोतों दूनागिरी, संशोधक और अग्रय को नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है और केवल हथियारों का खरीदार देश बनकर नहीं रहना चाहता।
2: आज भारत रक्षा क्षेत्र में केवल खरीदार बनकर नहीं रहना चाहता। हमारी सैन्य शक्ति दुनिया के लिए बाजार नहीं बन सकती। मेरी शक्ति की, सामर्थ्य की पहचान मेरी आत्मनिर्भरता पर है।
1: श्री मोदी ने कहा कि समुद्री सामर्थ्य के बिना किसी भी देश वैश्विक शक्ति नहीं बन सकता। विकास, सुरक्षा और समुद्री का सीधा संबंध समुद्र से है। श्री मोदी ने कहा कि INS विक्रांत से शुरू हुई आत्मनिर्भरता की यात्रा को इन नए पोतों के शामिल होने से और गति मिलेगी।
2: INS विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्ध पोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्व भर के लोगों का आभार व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देखकर खुशी होती है कि योग सभी क्षेत्रों और विभिन्न देशों के लोगों को स्वस्थ जीवन तथा कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल मध्य प्रदेश के कोनो राष्ट्रीय उद्यान का दौरा किया। उन्होंने भारत के प्रमुख पहल चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा भी की। इस परियोजना का उद्देश्य देश में विलुप्त हो रही वन्य जीवों की प्रजाति को फिर से बढ़ावा देना है। अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ने उद्यान के चीते प्रबंधन क्षेत्र का दौरा किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की UGC नेट जून 2026 परीक्षा आज से शुरू होगी। ये राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट CBT माध्यम से 30 जून तक प्रतिदिन 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज से मंगोलिया और दक्षिण कोरिया की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार मंगोलिया यात्रा के दौरान विदेश मंत्री बी बत्सेतिक के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद वे 24 और 25 जून को दक्षिण कोरिया का दौरा करेंगे। इस दौरान उनकी दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ वार्ता होगी। डॉ जयशंकर दक्षिण कोरिया के जेजू में आयोजित जेजू शांति और समृद्धि मंच में मुख्य भाषण भी देंगे। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। इस वर्ष भारत की अध्यक्षता का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास का निर्माण। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वैंस ने कहा है कि ईरान के साथ वार्ता में प्रगति हो रही है। स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर अमेरिका और ईरान के वरिष्ठ प्रतिनिधि मंडलों के बीच बातचीत जारी है। पुरुष हॉकी में भारत ने कल रोटरडैम में FIH प्रो लीग के अपने अंतिम मुकाबले में नीदरलैंड को 3-2 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। भारत की ओर से जुगराज सिंह, अभिषेक और राजेंद्र सिंह ने गोल किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: India defeated Netherlands 3-2 in their last match of AFIH Pro League Rotterdam leg yesterday. Jugraj Singh, Abhishek and Rajinder Singh scored the goals, helping India register their second win of the leg against the Dutch side. Stand-in captain Hardik Singh was named player of the match for his leadership and strong midfield performance. In Colombia, right-wing candidate Abelardo de Esperella has narrowly won Colombia's presidential election, defeating left-wing senator Ivan Cepeda by a very small margin. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। सुबह के 10:10 हुए हैं। इसी के साथ संपन्न होते हैं हमारी पहली सभा के प्रसारण। एफएम बैंड 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर विविध भारती के कार्यक्रमों का रिले जारी रहेगा। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज़ पर दोपहर 12:30 पर हमारी दूसरी प्रसारण सभा में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए अनुमति।

मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। दिन के 12:30:45 हुए हैं। अब हमारी दूसरी प्रसारण सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं। सभा की शुरुआत में लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
0: सभी श्रोताओं को आपके साथी अजीत का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आप सबका उमंग कार्यक्रम में। तो श्रोताओं, आइए सबसे पहले सुनते हैं हमेशा की तरह आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी ने। बड़ा खूबसूरत लिखा है। लिखते हैं, आर्थिक स्थिति मजबूत हो या ना हो, लेकिन खुश रहने के लिए मानसिक स्थिति का मजबूत होना और सकारात्मकता बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद मार्कंडेय जी आपके सुंदर विचार के लिए। सच है श्रोताओं, प्रसन्न रहने का सबसे बड़ा तरीका है सकारात्मक भाव को बनाए रखना। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है बन बघेरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा, आशा सारवा, नीरज, नीलेश, अंजलि और रोशनी सारवा जी का। दूसरा संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली, बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान और जिज्ञासा के साथ साथ विराट तामुरिया, तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन का। अगला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता और कमला देवी गुप्ता जी का। और आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले कुछ और श्रोताओं के नाम। तो अगला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निघत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य। अगला संदेश हमें मिला है रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम साहू के साथ साथ सेजल साहू जी का। और अब बारी है श्रोताओं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो सुनिए हमारा पहला प्रश्न जो कि हमने आपसे पूछा था। हमारा प्रश्न था, एक लोहे की सुई पानी में डूब जाती है लेकिन लोहे का बना हुआ जहाज पानी में नहीं डूबता, ऐसा क्यों? तो इसका उत्तर जान लेते हैं। इसका उत्तर है, लोहे की सुई पानी में इसलिए डूब जाती है क्योंकि उसका घनत्व यानी डेंसिटी पानी के घनत्व से अधिक होता है। इसके विपरीत लोहे का जहाज बहुत बड़ा और अंदर से खोखला होता है, जिससे उसका औसत घनत्व पानी से कम हो जाता है और वो अपने भार से अधिक पानी को हटाकर तैरता रहता है। हमारा अगला सवाल था कि लोकटक झील में तैरते हुए द्वीप किस चीज से बने हैं? इसका उत्तर है, लोकटक झील में द्वीप मिट्टी, घास और कई ऑर्गेनिक पदार्थों से बने हैं जिन्हें फुमदी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न था, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? तो इसका उत्तर है, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का नाम है राक्षस ताल। और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से किन किन देशों से आते हैं? तो श्रोताओं, इसका उत्तर है, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से चीन, साइबेरिया, रूस और मंगोलिया से आते हैं। और अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न जो कि हमने आपसे पूछा था। हमारा अंतिम प्रश्न था, डल का अर्थ कश्मीरी भाषा में क्या होता है? तो इसका उत्तर है, डल का अर्थ होता है जलाशय या झील। तो श्रोताओं, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, सूर्य एक गैस का गोला है जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है। ये दोनों गैसें ठंडी होती हैं, तो फिर सूर्य से गर्मी कैसे पैदा होती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। सूर्य एक गैस का गोला है जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है। ये दोनों गैसें ठंडी होती हैं, तो फिर सूर्य से गर्मी कैसे पैदा होती है? 8800440559 है हमारा IBRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर हमें प्रश्नों के उत्तर और संदेश भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप ताजा जानकारी के लिए CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है, राग सिंदूरा। इस कार्यक्रम में राग सिंदूरा की स्वरमालिका, आरोह, अवरोह, थाट और गायन समय के बारे में विस्तार से बताया गया है। श्रोताओं, संगीत विद्यार्थियों और शिक्षकों के साथ साथ ये कार्यक्रम सामान्य श्रोता वर्ग के लिए भी उतना ही उपयोगी है। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम राग सिंदूरा।

राग सिंदूरा। राग सिंदूरा की उत्पत्ति काफी थाट से हुई है। इसे राग सैंधवी भी कहा जाता है। इसमें कोमल गंधार यानी कोमल ग और कोमल निषाद यानी कोमल नी के अलावा सभी स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। इसके आरोह में गंधार और निषाद अर्थात ग और नी ये दोनों वर्जित स्वर हैं तथा अवरोह में सातों स्वर प्रयोग किए जाते हैं। इस प्रकार इसके आरोह में पांच और अवरोह में सात स्वरों के प्रयोग होने के कारण इस राग की जाति औड़व संपूर्ण है। इसका वादी स्वर षडज यानी स है, संवादी स्वर पंचम यानी प है। इसका गायन समय रात्रि का दूसरा प्रहर है। राग सिंदूरा के आरोह अवरोह और पकड़ इस प्रकार हैं। सबसे पहले सुनिए आरोह।

प्रस्तुत है राग सिंदूरा की स्वर मालिका जो तीन ताल मध्य लय में निबद्ध है। इसमें 16 मात्राएं होती हैं। पहले प्रस्तुत है राग सिंदूरा की स्वर मालिका की स्थाई।

अभी आपने राग सिंदूरा की स्वरमालिका सुनी। अब प्रस्तुत है इसी स्वरमालिका पर आधारित एक रचना। बोल हैं, कल कल नदिया बहती जाती। सबसे पहले सुनते हैं इस रचना की स्थाई।

0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सीमित मत रहिए। श्रोताओं, ये कार्यक्रम प्रेरक प्रसंग श्रृंखला की एक कड़ी है, जिसके द्वारा बताया गया है कि हमारे पास अनंत संभावनाएं हैं, लेकिन हमारी नकारात्मक सोच ही हमें सीमित कर देती है और इसी कारण हम पूरी कुशलता से कार्य नहीं कर पाते।
1: साथियों नमस्कार।
2: नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: आज हम आपको एक बहुत ही खूबसूरत कहानी बताने जा रहे हैं और हमें आशा ही नहीं लेकिन पूरा विश्वास है कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आएगी। कहानी का शीर्षक है सीमित मत रहिए।
2: तो आइए साथियों, सबसे पहले पूछिए एक पहेली। जरा ये बताइए कि दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जो दो महादेशों में पड़ता है? सोचिए, जरा बताइए तो।
1: अच्छा चलिए, हम ही बता देते हैं। यदि आपने रूस देश का नाम सोचा है तो बिल्कुल सही सोचा है। जी हाँ, वो देश है रूस। ये एशिया और यूरोप दोनों महादेशों में पड़ता है।
2: और हाँ, आपको हम ये भी बता दें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी है मॉस्को, जिसे रूसी भाषा में मस्कवा कहते हैं।
1: और यहाँ की मुद्रा है रूबल। तो हाँ साथियों, जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं वो कहानी है रूस की। तो मित्रों, हम बात कर रहे थे रूस देश की एक कहानी की। जैसा कि आपने सुना कि वहां बहुत जंगल है, एक बार उन जंगलों में आग लग गई।

0: हजारों हेक्टेयर की भूमि उससे प्रभावित हुई।
1: पेड़ पौधे तो जले ही, बहुत से पशु पक्षी भी इस विकराल आग की वजह से जलकर मर गए। लेकिन एक छोटा सा भालू का बच्चा किसी तरह से बचकर पास के एक गांव में पहुंच गया। वो भूखा था और घायल भी।
0: एक किसान ने जब उसे देखा तो उसे बड़ी दया आई, वो उसे अपने घर ले गया।
1: अब वो भालू का बच्चा वहां के पालतू जानवरों के साथ ही रहता, उन्हीं के साथ घूमता और खेलता।
0: वो उन्हीं में घुल मिल गया और जैसा दूसरे घरेलू पशु व्यवहार करते वैसा ही वो भी व्यवहार करने लगा।
1: लेकिन पूरे गांव में वो एक कौतूहल का विषय तो था ही, लोग उसे देखने के लिए उत्सुक रहते थे, खास तौर से बच्चे।
0: धीरे धीरे ये बात आसपास के इलाकों में भी फैलने लगी और लोग बड़ी संख्या में उस भालू को देखने आने लगे।
1: लेकिन साथियों, ऐसा कब तक चलता? जैसे जैसे वो भालू का बच्चा बड़ा होने लगा, उसकी हिंसक प्रवृत्ति दिखाई देने लगी।
0: वो किसान अब उसे छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि उस भालू को देखने के लिए बहुत से लोग उसके घर पर आने लगे थे।
1: साथियों, फिर जो हुआ वो बहुत ही दुखद था। उस किसान ने एक लोहे का पिंजरा बनवाया और भालू को उसमें बंद कर दिया।

0: साथियों, अब वही पिंजरा उस भालू की दुनिया हो गया। वो उसी में घूमता और आगे पीछे होता रहता था।
1: फिर जो बात हुई वो और भी दुखद थी। उस किसान ने जब देखा कि लोग बहुत बड़ी संख्या में वहां आते हैं, तो उसने उनसे पैसा लेना शुरू कर दिया।
0: लोग आते और उसे देखते, कुछ लोग डंडे या लोहे की छड़ भी लेकर आते और भालू को परेशान करते। भालू बहुत परेशान और बेचैन रहने लगा।
1: दोस्तों, जरा सोचिए, क्या उस किसान ने ये जो काम कुछ पैसों की खातिर किया, क्या वो ठीक था? क्या पशुओं के साथ ऐसा व्यवहार ठीक है? क्या उन्हें स्वतंत्र होकर अपने पर्यावरण में रहने का अधिकार नहीं है? ये सोचने की बात है। जब आप किसी चिड़ियाघर में घूमने जाते हैं, तो पशुओं के प्रति हमारा क्या रवैया रहता है?
0: ये बात धीरे धीरे वन विभाग तक पहुंची। पर्यावरण और वन विभाग के कर्मचारी आए और वे उस भालू को ले गए।
1: वो उसे एक बहुत बड़े जंगल में ले गए। उसका पिंजरा खोल दिया गया और उसे आजाद कर दिया गया।

0: वे देखना चाहते थे कि भालू इस नए वातावरण में कैसा व्यवहार करेगा।
1: उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने देखा कि वो भालू कहीं नहीं जा रहा था, वो वहां भी आगे पीछे घूम रहा था। उसके सामने स्वतंत्रता थी, उसके सामने विशाल विस्तृत जंगल था, वो जहां चाहता वहां जा सकता था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। निरीक्षण में पाया गया कि वो बहुत समय तक वहीं आगे पीछे घूमता रहा। लेकिन प्रश्न ये है कि ऐसा व्यवहार वो क्यों कर रहा था।
0: बात स्पष्ट है, उस पिंजरे में बहुत लंबे समय तक रहकर उसने सीख लिया था, या यूं कहें उसे सिखा दिया गया था कि उसकी दुनिया बस इतनी सी है, वो आगे जा ही नहीं सकता।
1: हाँ दोस्तों, उसे शायद अब लगने लगा था कि इससे अधिक अब वो कहीं नहीं जा सकता। लंबे समय की पराधीनता, या कह लीजिए कि उसकी नकारात्मक स्थिति की वजह से वो मान चुका था कि उसकी दुनिया सीमित है और वो इसके आगे कुछ भी नहीं कर सकता।
0: बहुत धीरे धीरे उस भालू ने सीखा कि उसकी दुनिया इतनी सीमित नहीं है, बल्कि उसके सामने आजादी का असीमित संसार है।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। दिन का एक बजने को है, कुछ ही पलों के बाद आप सुनेंगे समाचार हिंदी में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, और 1:05 पर होंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता।

आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की दो दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों और अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख हिस्सा लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में कोनो नेशनल पार्क में चीता मित्रों और सहरिया जनजाति के सदस्यों से बातचीत की। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता में उनके योगदान की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि इस महत्वाकांक्षी संरक्षण कार्यक्रम की सफलता में स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इससे पहले राष्ट्रपति ने कोनो नेशनल पार्क में सफारी की और चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। राष्ट्रपति ने प्रोजेक्ट चीता पर लगी प्रदर्शनी देखी और जानवरों की निगरानी, ट्रैकिंग और संरक्षण के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में जानकारी ली। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर जलपाईगुड़ी के जल्दाबाड़ी में एक सड़क दुर्घटना में दो और घायलों की मृत्यु होने से मृतकों की संख्या 6 हो गई है। मृतकों में दो महिला और एक बच्चा शामिल है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उत्तर बंगाल राज्य परिवहन निगम की एक बस को पीछे से आ रही स्टेशनरी ट्रक ने टक्कर मार दी। पुलिस, जिला प्रशासन अधिकारी और स्थानीय निवासियों ने तुरंत बचाव और राहत अभियान शुरू किया। राज्य के परिवहन मंत्री आनंदमय बर्मन ने दुर्घटना स्थल और अस्पताल का दौरा किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और दो मंत्रियों ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। उत्तर प्रदेश में कुख्यात अपराधी ललन सिंह को कल रात सहारनपुर में उत्तर प्रदेश विशेष कार्यबल एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया। उस पर 1,25,000 रुपये का इनाम था। पुलिस के अनुसार मुठभेड़ सरसावा नाकुर रोड पर हुई। एसटीएफ के अनुसार ललन सिंह और उसके साथी हत्या, बैंक डकैती, कैश वैन लूट और सरकारी हथियारों की चोरी जैसे कई संगीन अपराधों में शामिल थे। झारखंड में पिछले 24 घंटे में बिजली गिरने से लगभग 8 लोगों की मृत्यु हो गई और 12 से अधिक लोग घायल हुए हैं। बिजली गिरने की घटनाएं रामगढ़, गिरिडीह, खूंटी, देवघर, धनबाद और साहिबगंज जिलों में हुई हैं। बिजली गिरने की घटना में मरने वालों में सीपीआई के एक नेता, एक वार्ड सदस्य और एक किसान तथा अन्य निवासी शामिल हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज दो दिन की आधिकारिक यात्रा पर मंगोलिया पहुंचे। डॉ जयशंकर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे भारत और मंगोलिया के बीच विशेष साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए सार्थक वार्ता की आशा करते हैं। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री मंगोलिया के नेतृत्व के साथ मुलाकात करेंगे। वे मंगोलिया की विदेश मंत्री बी बत्तिसक के साथ वार्ता करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में विदेश मंत्री बुधवार और बृहस्पतिवार को दक्षिण कोरिया जाएंगे। वहां वे विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ चर्चा करेंगे। विदेश मामलों की स्थायी समिति ने सामरिक सीमा सुरक्षा और विदेश नीति मुद्दों की समीक्षा के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 4 दिन की अध्ययन यात्रा शुरू की। सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता में यह समिति सीमांत क्षेत्रों में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा स्थिति का प्रत्यक्ष अवलोकन करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 25 जून तक समिति जम्मू, श्रीनगर, करगिल और लेह की यात्रा करेगी। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 0.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 360 अंक बढ़कर 77,163 पर और निफ्टी 105 अंक बढ़कर 24,118 पर कारोबार कर रहा था। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, कर्नाटक, तेलंगाना, केरलम, गोवा, ओडिशा और पूर्वोत्तर के कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। आज हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज हवा तथा बादल गरजने के साथ वर्षा का भी अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप चंदन शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति में समुद्री क्षमता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और भारत इसे मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कोलकाता में कल स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक पोतों दूनागिरी, संशोधक और अग्रय को नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है और केवल हथियारों का खरीदार देश बनकर नहीं रहना चाहता।
1: आज भारत रक्षा क्षेत्र में केवल खरीदार बनकर नहीं रहना चाहता। हमारी सैन्य शक्ति दुनिया के लिए बाजार नहीं बन सकती। मेरी शक्ति की, सामर्थ्य की पहचान मेरी आत्मनिर्भरता पर है।
0: श्री मोदी ने कहा कि समुद्री सामर्थ्य के बिना कोई भी देश वैश्विक शक्ति नहीं बन सकता। विकास, सुरक्षा और समृद्धि का सीधा संबंध समुद्र से है। श्री मोदी ने कहा कि INS विक्रांत से शुरू हुई आत्मनिर्भरता की यात्रा को इन नए पोतों के शामिल होने से और गति मिलेगी।
1: INS विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्ध पोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में 40 से अधिक युद्धपोत और पनडुब्बियां नौसेना में शामिल की गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्व भर के लोगों का आभार व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह देखकर खुशी होती है कि योग सभी क्षेत्रों और विभिन्न देशों के लोगों को स्वस्थ जीवन तथा कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 पुनर्परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक होने के दावे को खारिज किया है। सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो में प्रश्नपत्र टेलीग्राम पर लीक होने का दावा किया गया था। NTA ने कहा है कि परीक्षा पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच सफलतापूर्वक आयोजित की गई है। देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 22,00,000 से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं के अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जारी करने शुरू कर दिए हैं। बोर्ड के अनुसार 87% से अधिक आवेदनों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं जबकि शेष परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे। स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता समाप्त होने के बाद आज कच्चे तेल की वैश्विक कीमत में 3% तक की तीव्र गिरावट दर्ज की गई। कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत प्रति बैरल में 2% से अधिक की गिरावट के साथ लगभग $79 पर आ गई। इससे आपूर्ति बाधा को लेकर चिंताएं समाप्त होने और ईरान के तेल निर्यातों में वृद्धि की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पश्चिमी एशिया में नाजुक संघर्ष विराम को बढ़ाने तथा तनाव को कम करने पर केंद्रित पहले दौर की वार्ता के समापन की खबर दिए जाने के बाद ये गिरावट आई। गनौर क्षेत्र के गांव खुबड़ू में आज सुबह सोनीपत अपराध शाखा और गनौर पुलिस की अपराध जांच एजेंसी की संयुक्त टीम के साथ हुई मुठभेड़ में गैंगस्टर गोपाल मारा गया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने एक सूचना के आधार पर आरोपी कोई गांव खुबड़ू के पास खेतों में घेराबंदी की तो उसने पुलिस पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। जवाबी कार्रवाई में वो मारा गया। मुठभेड़ के दौरान अपराध जांच एजेंसी के एक हवलदार देवेंद्र के हाथ में भी गोली लगी। उसे उपचार के लिए खानपुर के मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक गांव अटायल निवासी गोपाल हत्या के दो मामलों में उम्र कैद की सजा भुगत रहा था। वह इसी वर्ष मार्च में पैरोल पर जेल से बाहर आया था लेकिन पैरोल खत्म होने पर 30 मई को वापस जेल जाने की बजाय भूमिगत हो गया। इसके बाद उसने सोनीपत और पानीपत क्षेत्र में कई आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार गोपाल पर हत्या, हत्या की कोशिश, दुष्कर्म और अन्य गंभीर अपराधों सहित करीब 25 आपराधिक मामले दर्ज थे। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।
2: मीडियम वेव 262.64 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आपने सुना मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का गीत। इस गीत को लिखा था अनजान ने और संगीत तैयार किया था कल्याण जी आनंद जी ने। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर का ही गाया हुआ उपकार फिल्म से। इस गीत के बोल लिखे हैं गुलशन बावरा ने और संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

लता मंगेशकर की आवाज़ में उपकार फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। गुलशन बावरा की रचना थी और संगीत था कल्याण जी आनंद जी का। कार्यक्रम का अगला गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आपको सुनवाते हैं। इसे लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत तैयार किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म का नाम धर्मवीर।

0: मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे धर्मवीर फिल्म का गीत। गीत के बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने और संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: फिल्म संगीत कार्यक्रम में अब अगला गीत आपको सुनवाते हैं आनंद आश्रम फिल्म से। इसे गाया है यशुदास और प्रीति सागर ने, गीत के बोल लिखे हैं इंदीवर ने और संगीत तैयार किया है श्यामल मित्रा ने।

आनंद आश्रम का गीत, आनंद आश्रम फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। यशोदास और प्रीति सागर की आवाज़ें थीं, गीतकार थे इंदीवर और संगीत तैयार किया श्यामल मित्रा ने। कार्यक्रम का अगला गीत उपासना फिल्म से आपको सुनवा रहे हैं। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने इसे गाया है। गीत के बोल लिखे हैं राजेंद्र कृष्ण ने और संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में उपासना फिल्म का गीत अभी आपने सुना। गीत के बोल लिखे राजेंद्र कृष्ण ने और संगीत था कल्याण जी आनंद जी का। कार्यक्रम का अगला गीत आंचल फिल्म से आपको सुनवाते हैं। किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने इसे गाया है। गीत के बोल लिखे हैं मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीत तैयार किया है R.D. बर्मन ने।

अभी आप सुन रहे थे आंचल फिल्म का गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। मजरूह सुल्तानपुरी ने गीत के बोल लिखे थे और संगीत तैयार किया आरडी बर्मन ने। अगला गीत आपको सुनवाते हैं अमर अकबर एंथनी फिल्म से। इसे गाया है लता मंगेशकर, किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी ने। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीत तैयार किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: अभी आप सुन रहे थे अमर अकबर एंथनी फिल्म का गीत। इसमें आवाज़ें थीं मोहम्मद रफ़ी, मुकेश, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। गीत के बोल लिखे आनंद बख्शी ने और संगीत तैयार किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: लता मंगेशकर की आवाज में आइए अब आपको सुनवाते हैं सौदागर फिल्म का गीत। गीतकार और संगीतकार हैं रविंद्र जैन।

लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे सौदागर फिल्म का गीत। गीतकार और संगीतकार थे रविंद्र जैन। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं विधाता फिल्म से। इसे गाया है लता मंगेशकर ने, गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

लता मंगेशकर की आवाज़ में विधाता फिल्म का गीत अभी आपने सुना। गीत के बोल लिखी आनंद बख्शी ने और संगीत था कल्याण जी आनंद जी का। कार्यक्रम के अंत में आइए आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में धर्मात्मा फिल्म का गीत। गीत के बोल लिखे हैं इंदिवर ने और संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

0: किशोर कुमार का गाया धर्मात्मा फिल्म का ये गीत था। गीत के बोल लिखे इंदिवर ने और संगीत था कल्याण जी आनंद जी का। इसी गीत के साथ ही आज का फिल्म संगीत कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। दिन के 2 बजने को हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे अंग्रेजी समाचार और 2:15 पर होंगे हिंदी में समाचार। समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जा रहे हैं।
1: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. BJP government in West Bengal presents first full budget focusing on social welfare, infrastructure development and employment, announces a slew of women-centric schemes. BRICS National Security Advisors meeting begins in New Delhi to discuss emerging security challenges. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar arrives in Mongolia to hold meeting with his counterpart to deepen economic ties. IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over Assam and Meghalaya today. And in FIFA World Cup, Egypt beat New Zealand 3-1 to secure first ever World

0: Global crude oil prices declined sharply by up to 3% today after talks between the United States and Iran concluded in Switzerland, easing concerns over supply disruptions and raising hopes of increased Iranian oil exports. International benchmark Brent crude fell more than 2% to around $79 a barrel, while U.S. West Texas Intermediate crude traded near $75 per barrel, a decrease of 3%. The decline came after senior U.S. and Iranian officials reportedly wrapped up the first round of talks aimed at extending a fragile ceasefire and reducing tensions in the region. The Intermeteorological Department, IMD, has issued a red alert for extremely heavy rainfall over Assam and Meghalaya today. IMD has also predicted heavy rainfall conditions at isolated places over sub-Himalayan West Bengal, Karnataka, Telangana, Kerala, Goa, Odisha and northeastern parts of the country till tomorrow. Similar conditions will also prevail over Bihar, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Lakshadweep, Puducherry and Karaikal during the day. The Met Department has also forecast thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds over Haryana, Chandigarh, Delhi, Punjab, Himachal Pradesh. News just in. Keir Starmer has resigned as Prime Minister of the United Kingdom in a statement outside 10 Downing Street. He said every decision he has made in office has been about putting the country that he loves first. In the FIFA World Cup 2026, Egypt registered their first ever World Cup victory 3-1 over New Zealand in Vancouver this morning. Liverpool star Mohamed Salah scored his first goal of the tournament. With this win, Egypt took over the first place in Group G. Earlier, Cape Verde held Uruguay to a 2-2 draw in their Group H match in Florida today. Iran and Belgium also played out a goalless draw in their Group G clash in California last night. In today's fixtures, Argentina will take on Austria in Group J. The match will begin at 10:30 p.m. IST. In men's hockey, India defeated the Netherlands 3-2 in their last match of FIH Pro League Rotterdam leg yesterday. Jugraj Singh, Abhishek and Rajinder Singh scored the goals, helping India register the second win of the leg against the Dutch side. Stand-in captain Hardik Singh was named player of the match for his leadership and strong midfield performance. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.5% up in the afternoon session today. The Sensex rose 375 points to 77,178, while the Nifty advanced 108 points to 24,121 when reports last came in. In the broader market on the National Stock Exchange, mid-cap 100 index added 0.3%, while the small-cap 100 index was trading 0.5% up a short while ago. And now before we end the bulletin, the headlines once again. BJP government in West Bengal presents first full budget focusing on social welfare, infrastructure development and employment, announces a slew of women-centric schemes. BRICS National Security Advisors meeting begins in New Delhi to discuss emerging security challenges. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar arrives in Mongolia to hold meeting with his counterpart to deepen economic ties. IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over Assam and Meghalaya today. And in FIFA World Cup, Egypt beat New Zealand 3-1 to secure first ever World Cup victory. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। सामाजिक कल्याण, अवसंरचना विकास और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करते हुए महिलाओं के लिए कई योजनाओं की घोषणा। नई दिल्ली में आज से ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक शुरू, उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर मंगोलिया पहुंचे, आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने पर अपने समकक्ष से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया और फीफा विश्व कप में मिस्र ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराकर विश्व कप में पहली जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जनकल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री स्वप्न दास गुप्ता ने बजट पेश करते हुए बताया कि नौकरियों में 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। इनमें शिक्षकों और शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए 50,000 पद और पुलिस विभाग में 20,000 नियुक्तियां शामिल हैं। अग्निवीरों के लिए आवश्यकता अनुसार 10% आरक्षण शुरू किया गया है। सिविक वॉलंटियर्स, होमगार्ड, ग्रीन पुलिस कर्मियों और एनवीएम कर्मचारियों का मासिक मानदेय ₹2,000 बढ़ाया गया है। कोलकाता क्षेत्र के लिए कल्याणी के पास एक नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का प्रस्ताव है। बजट में 2 प्रमुख रक्षा केंद्रों के विस्तार और विकास में मदद के लिए हासीमारा एयरफोर्स स्टेशन को 25 एकड़ और कलाईकुंडा एयरफोर्स स्टेशन को 37 एकड़ जमीन सौंपने का प्रस्ताव भी है। एक रिपोर्ट।
2: राज्य सरकार ने सरकारी अर्ध सरकारी कर्मचारी, शिक्षक और शिक्षा कर्मियों के लिए 20% महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा की है। महंगाई भत्ता बढ़ के 38% हो जाएगा। यही सुविधा पेंशन भोगियों को भी मिलेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि ये दर 1 अक्टूबर से लागू होगी। वित्त मंत्री ने बताया कि वर्तमान में राज्य पर कुल ऋण 8,15,891 करोड़ रुपए की है। इस कारण सामाजिक परियोजनाओं और वित्तीय शासन की बीच संतुलन बनाए रखना सरकार की सबसे बड़ी परीक्षा है। बजट में अन्नपूर्णा योजना के लिए 36,000 करोड़ रुपए की प्रावधान किया गया है। पार्श्व शिक्षक का वेतन ₹5,000 बढ़ाया गया है। आंगनवाड़ी कर्मी और आशा कर्मियों के लिए मासिक मानदेय में ₹5,000 की वृद्धि की गई है। चंदीपन दासगुप्ता के साथ काश्मीर नाहर, आकाशवाणी समाचार, कोलकाता।
1: तमिलनाडु विधानसभा में आज कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना पर चर्चा हुई। AIADMK, PMK और CPM सहित विपक्षी दलों ने आशंका जताई कि इस परियोजना से कावेरी जल बंटवारे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और तमिलनाडु के हित प्रभावित हो सकते हैं। राज्य सरकार ने परियोजना के विरोध में अपना रुख दोहराते हुए कहा कि वो तमिलनाडु के जल अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने मेकेदातु जल न्यायाधिकरण के गठन की मांग से जुड़े विधानसभा के सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव का भी उल्लेख किया। ओडिशा में विधानसभा अध्यक्ष सुरमा पाढ़ी ने मार्च में राज्यसभा चुनाव के दौरान बीजू जनता दल, BJD और कांग्रेस की क्रॉस वोटिंग के आरोपी विधायकों को अयोग्य ठहराने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अध्यक्ष ने कहा कि दलबदल विरोधी कानून के अंतर्गत याचिकाओं में गंभीर प्रक्रियात्मक कमियां और सबूतों का मानक अभाव था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में कुनो नेशनल पार्क में चीता मित्रों और सहरिया जनजाति के सदस्यों से बातचीत की। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता में उनके योगदान की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि इस महत्वाकांक्षी संरक्षण कार्यक्रम की सफलता में स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। एक रिपोर्ट।
3: राष्ट्रपति ने कूनो नेशनल पार्क में सफारी की और चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता पर लगी प्रदर्शनी देखी और जानवरों की निगरानी, ट्रैकिंग और संरक्षण के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में जानकारी ली। अधिकारियों ने राष्ट्रपति को बताया कि भारत में अभी 52 चीते हैं, जिनमें 49 कूनो नेशनल पार्क में हैं, जबकि 3 को गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य में स्थानांतरित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2022 में प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत की थी। उन्होंने नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा था। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से और चीते लाए गए। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: नई दिल्ली में ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों NSA की बैठक चल रही है। 2 दिन की इस बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल कर रहे हैं। बैठक में समूह के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भागीदारी कर रहे हैं। इन देशों में भारत, ब्राजील, चीन, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। बैठक का मुख्य विषय वर्तमान समय में गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियां हैं। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों के तेजी से बदलते स्वरूप और उभरते सुरक्षा जोखिमों में नई तकनीकों की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने देश के विकास में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की अहम भूमिका पर जोर दिया है।

0: दिल्ली में आज सीआईएसएफ के मुख्यालय के इमारत के भूमि पूजन और ई उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि सीआईएसएफ के जवान देश की तरक्की को सुरक्षित रखने वाले आर्थिक सैनिक के तौर पर काम करते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज दो दिन की आधिकारिक यात्रा पर मंगोलिया पहुंचे। डॉ जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे भारत और मंगोलिया के बीच विशेष साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए सार्थक वार्ता की आशा करते हैं। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री मंगोलिया के विदेश मंत्री बी बत्सिसक के साथ वार्ता करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में विदेश मंत्री बुधवार और बृहस्पतिवार को दक्षिण कोरिया जाएंगे। यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर वहां के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ चर्चा करेंगे। वे बृहस्पतिवार को जेजू में शांति और समृद्धि के लिए जेजू फोरम पर मुख्य भाषण भी देंगे। विदेश मामलों की स्थायी समिति ने सामरिक सीमा सुरक्षा और विदेश नीति मुद्दों की समीक्षा के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख की चार दिन की अध्ययन यात्रा शुरू की। सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता में ये समिति सीमांत क्षेत्रों में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा स्थिति का प्रत्यक्ष अवलोकन करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 25 जून तक समिति जम्मू, श्रीनगर, करगिल और लेह की यात्रा करेगी। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर जलपाईगुड़ी के जलदाबाड़ी में एक सड़क दुर्घटना में दो और घायलों की मृत्यु होने के बाद मृतकों की संख्या 6 हो गई है। मृतकों में दो महिला और एक बच्चा भी शामिल है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और दो मंत्रियों ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। उत्तर प्रदेश में कुख्यात अपराधी ललन सिंह को कल रात सहारनपुर में उत्तर प्रदेश विशेष कार्यबल एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया। उस पर 1,25,000 रुपए का इनाम था। झारखंड में पिछले 24 घंटे में बिजली गिरने से लगभग 8 लोगों की मृत्यु हो गई और 12 से अधिक लोग घायल हुए हैं। बिजली गिरने की घटनाएं रामगढ़, गिरिडीह, खूंटी, देवघर, धनबाद और साहिबगंज जिलों में हुई हैं। बिजली गिरने की घटना में मरने वालों में सीपीआई के एक नेता, एक वार्ड सदस्य, एक किसान और अन्य निवासी शामिल हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज लुधियाना में प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक और पद्म भूषण से सम्मानित सरदारा सिंह जोहल से मुलाकात की। श्री नवीन ने उनके साथ पंजाब के कृषि संकट पर चर्चा की। बैठक के बाद श्री नवीन ने कहा कि श्री जोहल के साथ बातचीत के दौरान कृषि के मुद्दों पर अमूल्य जानकारी प्राप्त हुई।
1: मैं मानता हूं कि ऐसी शख्सियत जिसने किसानों की भावनाओं को समझा, कृषि को समझा और कृषि को कैसे एक सही रूप से आगे बढ़ाया जाए, इस चीज को उन्होंने एक रिसर्च के रूप में देखा है, तो निश्चित रूप से ऐसे शख्सियत से मिलना मेरे लिए भी सौभाग्य का विषय है।
0: केंद्रीय सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन आज शाम दो दिन के मध्य प्रदेश दौरे पर भोपाल पहुंच रहे हैं। डॉ मुरुगन कल देवास जिले की कन्नौज तहसील के डोकाकोई जाएंगे। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा परिचर्चा में हिस्सा लेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @TIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केर स्टार्मर ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर एक बयान में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि पद पर रहते हुए उन्होंने जो भी फैसले किए उनमें देश को सबसे पहले रखने की बात ही मुख्य रही है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर में 0.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 375 अंक बढ़कर 77,178 पर, जबकि निफ्टी 108 अंक बढ़कर 24,121 पर कारोबार कर रहा था। स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता समाप्त होने के बाद आज कच्चे तेल की वैश्विक कीमत में 3% तक की गिरावट दर्ज की गई। इससे आपूर्ति बाधा को लेकर चिंताएं समाप्त होने और ईरान के तेल निर्यातों में वृद्धि की आशा बढ़ गई है। पश्चिम एशिया में नाजुक संघर्ष विराम को बढ़ाने तथा तनाव को कम करने पर केंद्रित पहले दौर की वार्ता के समापन की खबर अमरीका और ईरान के

0: हमारे खिलाड़ी मोहम्मद सलाह ने टूर्नामेंट में अपना पहला गोल किया। इस जीत के साथ मिस्र ग्रुप सी में पहले स्थान पर पहुंच गया है। आज ग्रुप जे में अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, कर्नाटक, तेलंगाना, केरलम, गोवा, ओडिशा और पूर्वोत्तर के कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और कार्यकाल में भी दिन के दौरान ऐसी स्थिति रहेगी। आज हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज हवा तथा बादल गरजने के साथ वर्षा का भी अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, विदर्भ और तेलंगाना में कल तक लू चलने की संभावना है। हरियाणा के राखीगढ़ी पुरातात्विक स्थल से खुदाई में मिले मानव कंकाल अवशेषों को उन्नत वैज्ञानिक अध्ययन के लिए भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण को सौंप दिया गया है। ये प्रक्रिया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण के बीच हाल ही में हुए समझौता ज्ञापन के अंतर्गत की गई है। करीब 550 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला राखीगढ़ी सिंधु सरस्वती सभ्यता की सबसे बड़ी ज्ञात बस्ती माना जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन कंकालों के अध्ययन से सिंधु सरस्वती सभ्यता के लोगों के जीवन, स्वास्थ्य और सामाजिक संरचना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो सकेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का एक लेख साझा किया। इस लेख में कानूनी व्यवस्था को मजबूत करने, न्याय की प्रक्रिया को आसान बनाने और नागरिकों के लिए सरकारी सेवाओं को अधिक सुलभ बनाने की सरकार की कोशिशों का उल्लेख किया गया है। अपने लेख में श्री मेघवाल ने कहा कि न्यायिक संस्थान एक पुल की तरह काम करते हैं जो हर हितधारक को न्याय की व्यापक खोज और सामूहिक भलाई के साथ विश्वास, अपनापन और जुड़ाव की भावना विकसित करने में मदद करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सफलता इस बात का प्रमाण है कि योग न केवल विश्वभर में लाखों लोगों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने में मदद कर रहा है, बल्कि उन्हें सकारात्मक जीवन जीने के लिए प्रेरित भी कर रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। सामाजिक कल्याण, अवसंरचना विकास और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करते हुए महिलाओं के लिए कई योजनाओं की घोषणा। नई दिल्ली में आज से ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक शुरू। उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर मंगोलिया पहुंचे। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया और फीफा विश्व कप में मिस्र ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराकर विश्व कप में पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 262.67 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है खेत खलिहान कार्यक्रम।

लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

खेत खलिहान कार्यक्रम सुनने वाले सारे वाण भैया ने सुरेंद्र भाई की राम राम। भाइयों देखो, जहाँ तक हम बात करें मौसम की, मौसम में एक आध बार तो बहुत ज़्यादा गर्मी बन गया है और एक आध बार बादलवाई हो गया है, तो उससे थोड़ी राहत भी मिल गया है। और देखो बागा अगर देखा जाएगा भाई, जो मौसम है वो तो बदलाव लेगा, क्योंकि आगे मानसून भी आवेगी और मानसून पर आधारित हमारा

0: किसान है वो बहुत कुछ जिसकी बिजाई का काम भी रह रहा है, जैसे अरहर की हम बात करें, बाजरे की बात करें, ये सारी चीज़ें जिन भाइयों के पास पानी के अच्छे पुख्ता साधन नहीं हैं वो बिल्कुल मानसून की बाट में बैठे हुए हैं, और कुछ जो हमारी चारा फसलें हैं उनकी बिजाई भी हम मानसून की जो पहली बरसात आवे उसके बाद हम कर रहे हैं। इसी प्रकार भाइयों देखो जो दूसरी हमारी फसलें हैं जिनमें हम मुख्य रूप से बात करें जो सब्जी फसल है, सब्जी फसलों में जैसे मान लो हम ये जो बेल वाली सब्जी फसल हैं वो चल भी रही हैं, और ईब जो नई बेल हैं वो भी लगाने का काम हमारे जो किसान भाई हैं वो कर रहे हैं, ताकि आगे आने वाले समय में उनसे अच्छी जो पैदावार है ली जा सके और अच्छा जो फल है वो लिया जा सके, क्योंकि आगे आने वाला जो समय है उसमें जो बेलें हैं वो बहुत अच्छी स्वस्थ और जल्दी चलती हैं, क्योंकि ये जो गर्मी का मौसम हो गया है इस गर्मी के मौसम में हर एक बेल है, सब्जी फसल है या हमारी दूसरी जो फसलें हैं वो बहुत काफ़ी कम उसमें ये कहा जा है कम वो ग्रोथ करें हैं और बढ़वार भी कम ले हैं और उनसे फलत है वो भी कम हमने मिला है। लेकिन इब आगे आने वाला जो समय है जो बरसात का समय है मानसून का जो समय है उसके अंदर जितनी भी हम बिजाई करेंगे एक तो जो बढ़वार है वो सारी की सारी फसलें ज़्यादा लेंगी और जल्दी वो फल देना शुरू भी करेंगी, इसलिए कुछ हमारी फसल हैं जिनका हम पहले तैयारी करना बहुत ज़रूरी समझे हैं और उनमें है खरीफ प्याज की नर्सरी तैयार करना, वो किस तरीके से करी जा है उसमें कौन कौन सी सावधानी रखनी है क्या कुछ है इन बातों का की चर्चा करेंगे। लेकिन भाइयों इसमें यह भी ज़रूरी है कि भाई कुछ भाइयों ने तो जो धान लगाने हैं वो शुरू भी कर दिए हैं और जिनकी भाई प्यो तैयार हो रही है वो तो लगाना शुरू भी कर रहे हैं और कई जगह तो ये भी देखने में आया हुआ खड़ी भी बोली है प्योद और बहुत अच्छा जो अच्छे तरीके से जिसको हमको कमाएगा फुटाव की तरफ भी चलेगी। और लेकिन जिन भाइयों के पास पानी के अच्छे साधन नहीं है भाई वो मानसून जिस समय पर आ जाए उसके बाद ही जो धान की रोपाई है करें। बाकी हमारी जो दूसरी फसलें जैसे कपास की हम बात करें जिन भाइयों ने मान लो ठीक समय पर बिजाई कर रखी है तो वो उसके अंदर पहली सिंचाई जरूर कर दें, क्योंकि मान लो जो बरसात है वो कुछ समय रुक कर भी आ सकती है और जब तक हमारी फसल को थोड़ा जो नमी है वो मिलती रहेगी और लगभग जिसकी 45-50 दिन की जो कपास की फसल होगी है उसके अंदर जो सिंचाई है वो हल्की हम जरूर कर दें और जो खाद है वो ज़रूर दे दें ताकि जो हमारी फसल है वो अच्छी बढ़वार ले सके और आगे जैसे ही बरसात का मौसम आएगा उस समय पे जो वहाँ तक हम मान लो अब हमने पानी डाल दिया तो जो थोड़े बहुत खरपतवार हों उनके अंदर भी हम नड़ा पता करें उसकी नड़ाई गुड़ाई करेंगे तो फिर जो खरपतवारों से भी हम अपनी फसल को बचा सके हैं। और आगे आने वाला जो समय है जैसे बरसात का मौसम है उसमें तो खुद जो फसल है वो अच्छी बढ़वार ले हैं और इसमें भी कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ हमारी फसलें ऐसी हैं जो पानी को ज़्यादा नहीं रोक सकती और यदि उनके पानी लग जाए तो फिर वो ख़राब हो जाए, जैसे हम अरहर की बात करें, कपास की बात करें, बाजरे की बात करें, ग्वार की बात करें, तो वो हमने ऐसी जगह पर इन फसलों को लगाना है जहाँ पे पानी निकासी का हमारा अच्छा बढ़िया प्रबंधन है। यदि हमारा प्रबंधन मान लो ये सोचें कि भाई हम पानी नहीं उतार सकते कोई विशेष कारण है, क्योंकि कई हमारे झील के किले ऐसे हो जाए हैं जहाँ से हम पानी नहीं उतार पाते, तो वहाँ पर इस जगह की इस तरह की जो फसल है वो हम बिजाई ना करें, वहाँ पर हम जो पानी वाली फसलें हैं जैसे गन्ने की फसल है वो भी थोड़ा बहुत पानी अच्छा ले ले है और धान की फसल है वो तो एक पानी की फसल है ही। लेकिन इस बार एक बात जरूर भाइयों देखने में आई है कि वह बहुत से हमारे जो किसान भाई हैं उन्होंने सीधी बिजाई जो धान की कर रखी है उसके जो परिणाम तो देखो आगे आएंगे, लेकिन उनका जो अब ये देखने में आया है भाई उनकी जो फसल है वो अच्छी चल रही है और काफ़ी हद तक जो पानी की बचत है वो किसान भाई ज़रूर करेंगे। बाकी आज खेत खलिहान में जो खरीफ प्याज की नर्सरी तैयार करना है इसके बारे में बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनेंगे रागनी राकेश किलोया और उनके साथियों की गाई हुई।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: हो गया इंतजाम।
3: किसका?
2: गुड्डी की फीस का।
3: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
4: आरबीआई कहता है,
5: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

तो भैया ने ये तो सुनी रागनी राकेश कलोईया और उनके साथियों की गाई हुई। भैया खेत खलिहान में चर्चा कर रहे थे जो खरीफ प्याज की नर्सरी है उसको तैयार करने में, इसमें सबसे पहली जो ज़रूरत है हमारी वो है उन्नत किस्मों की। और उन्नत किस्म की जब हम बात करें तो एक किस्म है N53, इसको निपात 53 भी कहते हैं। इसके जो कंद हैं गहरे लाल रंग के, गोल आकार के हों हैं और कम तीखे हों हैं। इसकी जहाँ तक हम फसल की बात करें वो लगभग 140 से 145 दिन में तैयार हो गया है और औसतन पैदावार इसकी 90 से 100 क्विंटल हमने एक ही लगे से अब तक मिल गया है। इसकी जो भंडारण अक्षमता है वो कम है। एक किस्म है एग्री फ्राउन डार्क रेड ADR के नाम से जानी जा है। इसके जो कंद हैं गहरे लाल रंग के हैं और गोलाकार के हैं। ये किस्म लगभग 140 से 150 दिन में तैयार हो गया है। इसके जो तीखेपन की हम बात करें तो उस दूसरी किस्म से निपात 53 से थोड़ा ज़्यादा है। इसकी औसत पैदावार की जहाँ तक हम बात करें 110 से और 120 क्विंटल एक किलो के हिसाब से इसकी पैदावार हमें मिल जाए। जहाँ तक हम प्योर तैयार करने की बात कर रहे हैं तो उसमें देखो ये जो सही समय है इसमें 5 से 6 किलो बीज हमने लेना पड़ेगा। जब हम अगेती प्योर तैयार कर रहे हैं खरीफ की तो उसके लिए जो बिजाई का समय है वो मध्य जून इसका बहुत सही और अच्छा माना गया है। जो खरीफ प्याज की हम प्योद तैयार कर रहे हैं उसमें कुछ सावधानी रखनी पड़ेंगी। उसमें सबसे जो पहली सावधानी है वो ये है भाई, हमने जो पौधशाला है या जो हम नर्सरी जहाँ पर तैयार करण ला रहे हैं वहाँ पर हमारे सिंचाई के साधन नज़दीक होने चाहिए और बहुत अच्छे बढ़िया मीठा पानी के होने चाहिए। और जहाँ बात करें हम इसमें पौधशाला की तो थोड़ा छायादार हो, ऊंचा स्थान हो। और छायादार इसलिए भाई जो धूप है वो क्योंकि जून का महीना है उसमें ज़्यादा बना है और गर्म हवा है तो उसको भी कुछ न कुछ रोक सकेंगे वृक्ष। और जहाँ तक बात है बरसात के पानी की तो उसमें जो पानी निकासी का प्रबंध है साथ में होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हमें जो क्यारी उभरी हुई हो यानी कि ऊंचा उठी हुई क्यारी हो बराबर में जो पानी निकासी का हमारा प्रबंध हो वो होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक हम बात करें गर्म हवा और जो कई बार देखने में आवे है कि भाई बहुत तेज़ धूप जिसमें हो जाए है उससे बचाने के लिए नर्सरी के ऊपर हम कोई छप्पर तान सके हैं और उसके ऊपर जैसे पॉलीथीन है या जाल है या कुछ जो हरी पट्टी है वो भी हम लगा सके हैं ताकि जो नर्सरी है उसके ऊपर जो सीधी धूप है या जो तीखी धूप है तेज धूप है वो ना लग पावे जिससे जो हमारी नर्सरी है वो ख़राब ना हो पावे। इस बात का ध्यान रखना। एक भयो जो आर्द्र गलन का रोग है उससे बचाव के लिए सबसे ज़रूरी बात है ये भाई उसमें बीज का उपचार करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बीज का यदि हम उपचार कर ले हैं तो फिर बहुत कुछ ये कहा जा सके वह जो फंगस वाली बीमारियाँ हैं जो दूसरी बीमारियाँ हैं उनके ऊपर हम पहले काबू पा लें हैं। उसके लिए कैप्टन या जो थीरम दवाई है 2 ग्राम 1 किलो बीज का हिसाब तो वो हमने बीज का उपचार करके और वो लगानी है। इसमें ये कुछ मोटी मोटी ही बात हैं, इनका हमने ध्यान रखना है। और सबसे अच्छा ध्यान तो ये रखना है भाई आगे जो बरसात का मौसम भी आवे है उस बरसात के मौसम को ध्यान में रखते हुए हमने जहाँ पर हमारी पानी की निकासी का साधन अच्छा है वहाँ पर थोड़ा हम ऊंची उठी हुई जो क्यारी हैं उनके अंदर इसकी बिजाई करनी है ताकि जो पानी है ज़्यादा हो जाए तो उसके अंदर हम निकाल सकें और हमारी जो पौध है उसको हम बचा सकें। भाई कुछ समय रह गया तो और भी बात करेंगे लेकिन उससे पहले सुनेंगे रागनी राकेश कलोईया और उनके साथियों की गाई हुई।

भैया ने ये सुनी रागनी राकेश कलोहिया और उनके साथियाँ ही गाई रही। भैया देखो, जहाँ हम बीज की डालने की बात कर रहे हैं उसमें हम 1 से 2 सेंटीमीटर की गहराई तक ही बीज को डाल लें और उसके तुरंत बाद फिर उसके ऊपर जो अच्छी बढ़िया छानी हुई, जो मान लो भुरभुरी ही हल्की ही मिट्टी हो, वो हमने उसके ऊपर डालनी है ताकि ज़्यादा गहराई में बीज ना जावे और उसके अंकुरण में किसी प्रकार की कोई समस्या ना आवे। बाकी हम यदि कतारों में बिजाई करते हैं तो वो बहुत अच्छी रहेगी और ऊपर से थोड़ा जो हल्की ही मिट्टी है वो उसके ऊपर डाल देनी है ताकि जो बीज है उसका अच्छा अंकुरण हो और आगे अच्छी वो बढ़वार लेवे। भाई इन कुछ बातों का ध्यान करेंगे तो जो हमारी खरीफ प्याज की नर्सरी है वो बहुत बढ़िया तैयार होगी। भाई जो खेत खलियान कार्यक्रम है उसका समय समाप्त। सुरेंद्र भाई ने जाजद दो, सारे बण भैया ने राम राम।

अभी आप सुन रहे थे खेत खलिहान कार्यक्रम। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। 3 बज चुके हैं। अब हमारी दूसरी प्रसारण सभा के कार्यक्रम में ही संपन्न होते हैं। FM बैंड 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुनते रहेंगे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रमों का अनुप्रसारण। तीसरी सभा में शाम 5:30 पर मीडियम वेव 262.67 मीटर पर आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे।

मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज़ न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। इस समय शाम के 5:30 और 17 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की तीसरी प्रसारण सभा आरंभ होती है। सभा की शुरुआत कर रहे हैं युवा श्रोताओं के दैनिक मनपसंद कार्यक्रम युवा संसार से।

0: दैनिक कार्यक्रम युवा संसार में आप सभी श्रोताओं को महिमा का नमस्कार
1: और आप सभी को आपकी साथी नंदिनी का भी नमस्कार।
0: दोस्तों, हमारे देश की संस्कृति हमेशा से ही वसुधैव कुटुंबकम और सर्वधर्म संभाव जैसे आदर्शों पर आधारित रही है। सांप्रदायिक सद्भावना हमारे समाज में शांति, सुरक्षा और विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। जब हम एक दूसरे के धर्म और उसकी आस्थाओं का सम्मान करते हैं, तभी समाज में विश्वास और सौहार्द का वातावरण बनता है। आज के समय में इस भावना का महत्व और भी अधिक हो जाता है। हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां पर अफवाहें बहुत तेज़ी से फैलती हैं। ऐसे में ये हमारा कर्तव्य हो जाता है कि हम सत्य, विवेक और सहिष्णुता का परिचय दें और समाज में प्रेम का संदेश फैलाएँ, और यही एक राष्ट्र की प्रगति का आधार भी है। अगर हम सभी को सभी की भावनाओं का सम्मान करते हुए मिलजुल कर साथ रहें तो हमारा देश और अधिक सशक्त, समृद्ध और शांतिपूर्ण बन सकता है।
1: जी बिल्कुल महिमा, आपने बिल्कुल सही कहा। साथ ही सांप्रदायिक सद्भावना का अर्थ विभिन्न धर्मों, जातियों, भाषाओं और संस्कृतियों के लोगों के बीच प्रेम, सम्मान, सहयोग और भाईचारे की भावना बनाए रखना है। ये किसी भी राष्ट्र की एकता और अखंडता का आधार होती है। भारत जैसे बहुधार्मिक और बहुसांस्कृतिक देश में सांप्रदायिक सद्भावना का विशेष महत्व है। इसके माध्यम से समाज में शांति, सौहार्द और आपसी विश्वास का वातावरण बनता है। साथ ही ये हमें शिक्षा देती है कि सभी धर्म समान हैं और प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता है, और ये राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि सभी धर्म सत्य हैं और सभी धर्मों में कुछ ना कुछ अच्छाई अवश्य है। इसलिए हमें आपसी प्रेम, सहिष्णुता और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देकर सांप्रदायिक सद्भावना के मूल्यों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए, ताकि एक शांतिपूर्ण और समृद्ध समाज का निर्माण हो सके।
0: बिल्कुल, और अगर हम इस भावना को, सांप्रदायिक सद्भावना को और

0: अधिक गहन रूप से समझें तो एक समाज तभी सही मायनों में आगे बढ़ पाता है जब उसके सभी वर्गों को सही प्रकार के और बराबरी के प्रकार के जो है वो विकल्प मिले। हमारे देश में भी विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा भी अल्पसंख्यक समुदाय और जो समृद्ध समुदाय हैं उनके लिए एक प्रकार का सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण करने के लिए कई प्रकार की योजनाएं लेकर आई जाती हैं, जिनका उद्देश्य होता है कि शिक्षा, कौशल विकास और स्वरोजगार को बढ़ावा देना। ऐसे में ही कुछ योजनाएं हैं जैसे कि कौशल विकास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम, जिसके तहत विभिन्न व्यवसायों और उद्योगों से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है जिससे कि उनके रोजगार की क्षमता बढ़ सके। और एक और योजना की बात करते हैं तो है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, जिसके तहत पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को प्रशिक्षण दिया जाता है और आधुनिक उपकरण खरीदने के लिए वित्तीय सहायता भी दी जाती है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं कार्यक्रम के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदायों को स्वरोजगार के लिए ऋण प्रदान किया जाता है। इसके तहत जो छोटे व्यवसाय हैं जैसे कि हस्तशिल्प, कृषि और सेवा क्षेत्र से जो जुड़े होते हैं उन कार्यों को प्रोत्साहन दिया जाता है।
1: आपने बिल्कुल सही कहा महिमा, अल्पसंख्यकों को रोजगार सुविधाएँ प्रदान करना सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत में धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के आर्थिक एवं शैक्षिक उत्थान के लिए केंद्र और राज्य सरकारें विभिन्न योजनाएं संचालित करती हैं। इन योजनाओं के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण, स्वरोजगार सहायता, व्यावसायिक शिक्षा, ऋण सुविधाएँ तथा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। अल्पसंख्यक समुदायों के युवाओं को आधुनिक तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार योग्य बनाया जाता है। इसके अतिरिक्त छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए आसान ऋण और वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। साथ ही रोजगार सुविधाओं के विस्तार से न केवल अल्पसंख्यकों का जीवन स्तर बेहतर होता है बल्कि देश के समग्र आर्थिक और सामाजिक विकास को भी बल मिलता है। इसलिए अल्पसंख्यकों के लिए रोजगार के अवसरों और कौशल विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देना अत्यंत आवश्यक है।
0: बिल्कुल, और अब इस कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे। आज सोमवार का दिन है, आज के दिन का विशेष कार्यक्रम आप सभी के लिए हम लेकर आते हैं, हेलो जीनियर्स फोन इन कार्यक्रम। शुरू करने से पहले कुछ नियम आप सभी को बता देते हैं। दोस्तों, 3 सवालों के सही जवाब आपको बना सकते हैं आज के इस कार्यक्रम में जीनियस। यदि किसी एक प्रश्न पर हमारे कोई दो श्रोता रुक जाते हैं और उस प्रश्न का सही उत्तर नहीं जानते हैं तो उस प्रश्न का सही उत्तर नंदिनी और आपके साथ ही महिमा आपको बताएंगे। और इसी के साथ आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस कार्यक्रम में। संपर्क नंबर है हमारे 012-62-55-446, 255-447 और 255-448।
1: तो चलिए महिमा, बढ़ाते हैं अपने कार्यक्रम को आगे और उम्मीद करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा साथी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे और हमें जीनियस भी अवश्य आज के कार्यक्रम में ज़रूर मिलेगा। और शुरुआत करते हैं साथियों अपने पहले प्रश्न के साथ। आपको बताना है कि लाइव इवेंट्स डेवलपमेंट सेल यानी LEDC की स्थापना किस मंत्रालय द्वारा की गई थी। हेलो साथियों, प्रश्न आपके लिए एक बार फिर से दोहरा देते हैं। आपको बताना है लाइव इवेंट्स डेवलपमेंट सेल यानी LEDC की स्थापना किस मंत्रालय द्वारा की गई थी। आपको मंत्रालय का नाम हमें बताना है।
2: The person you are speaking with has put your call.
1: Hello? Hello?
3: Hello?
1: जी नमस्कार, अपना नाम बताएं।
3: जी
1: नमस्कार, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं?
3: जी बिल्कुल। नमस्कार
1: जी, अपना नाम बताइए सबसे पहले।
3: जी मैं त्रिपुरा से बोल रहा हूँ, अविनाश।
1: जी अविनाश, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको बताना है कि लाइव इवेंट्स डेवलपमेंट सेल यानी LEDC की स्थापना किस मंत्रालय द्वारा की गई थी।
3: सूचना और प्रसारण मंत्रालय।
1: जी ये बिल्कुल सही जवाब है अविनाश, सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा इस पहल की शुरुआत की गई थी।
0: और अगला सवाल आपके लिए है, फीफा विश्व कप का 23

0: का संस्करण किस देश की मेजबानी के अंतर्गत शुरू हुआ?
1: जी अमेरिका।
0: जी अमेरिका नहीं, आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कुल 3 देशों ने यहाँ पर जो है वो मेजबानी की है, जिसमें से कि अमेरिका एक देश है। अन्य 2 देशों के नाम बताएं।
1: जी जी, और एक है मेक्सिको।
0: जी बिल्कुल सही, और एक और देश है यहाँ पर।
1: जी, और एक है एक नाम और था, वो तो अभी ध्यान नहीं आ रहा है। एक
0: चलिए, प्रयास अच्छे रहे। कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फीफा विश्व कप का 23वां संस्करण हाल ही में आयोजित हो रहा है और ये इसकी मेजबानी किस देश के अंतर्गत शुरू हुई है? हेलो।
2: हेलो,
0: नमस्कार जी, नाम बताइए।
2: रामधारी बात कर रहा हूँ, गांव ढाणी पिथौरागढ़ जिला हाथी।
0: जी रामधारी जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। फीफा विश्व कप की मेजबानी किसने की है?
2: ये मेक्सिको, कनाडा और अमेरिका कर रहा
0: है। जी, मेक्सिको, कनाडा और अमेरिका के द्वारा फीफा विश्व कप आयोजित किया जा रहा है।
3: और इसी के साथ रामधारी, आप हमें बताइए कि किस राज्य की पुलिस ने ICJS यानी इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0 की राष्ट्रीय रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है?
2: हरियाणा।
3: जी नहीं, आपको हम बता दें कि उस राज्य को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है।
2: उत्तराखंड।
3: जी ये बिल्कुल सही जवाब है रामधारी।
0: और अगला प्रश्न जो आपको आज के इस कार्यक्रम का जीनियस बना सकता है, हाल ही में भारत के UPI और किस देश के नेशनल पेमेंट इंटरफेस के बीच में क्रॉस बॉर्डर लिंकेज की शुरुआत हुई है?
2: सिंगापुर।
0: माफ कीजिए, जवाब दोहराएं।
2: सिंगापुर।
0: जी नहीं, ये पड़ोसी देश है, भारत का पड़ोसी देश है।
2: चाइना।
0: जी नहीं, एक प्रयास हो। कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो भारत के UPI और किस पड़ोसी देश के पेमेंट इंटरफेस के बीच में एक क्रॉस बॉर्डर लिंकेज की शुरुआत हुई है? हेलो।
4: हेलो,
0: नमस्कार जी, नाम बताएं।
4: नमस्ते मैम, राहुल बात कर रहा हूँ, मैं बिट्स पिलानी, जहर जिला झुंझुनू राजस्थान से।
0: राहुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सवाल है आपके लिए कि हाल ही में भारत के UPI ने किस पड़ोसी देश के नेशनल पेमेंट इंटरफेस के साथ एक क्रॉस बॉर्डर लिंकेज की शुरुआत की है?
4: कोई हिंट है क्या मैम?
0: जी ये भारत का पड़ोसी देश है और दोनों देशों के बीच में लेन देन के जो व्यापार है उसको बढ़ावा देने के लिए ये एक समझौता है। जी जापान नहीं है, भारत का पड़ोसी देश है।
4: नेपाल, भूटान।
0: जी नेपाल, बिल्कुल सही उत्तर है आपका यहाँ पर।
3: और इसी के साथ राहुल, आप हमें बताइए कि त्रिसेवा वेटरन्स डे परेड के 5वें संस्करण की मेजबानी किस शहर ने की थी?
4: कोलकाता।
3: जी नहीं,
4: हिंट है मैम।
3: जी ये पश्चिमी तट पर स्थित है।
4: गोवा।
3: जी नहीं,
4: ओके नहीं आता।
3: जी कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़ते हैं अपने अगले साथी से इसी प्रश्न के साथ। हेलो।
5: हेलो
3: जी, नमस्कार, नाम बताएं।
5: जी मैं रवि बोल रहा हूँ।
3: जी रवि, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने प्रश्न सुना, आपको बताना है कि त्रिसेवा वेटरन्स डे परेड के 5वें संस्करण की मेजबानी किस शहर ने की थी?
5: त्रिसेवा।
3: जी हम प्रश्न फिर से दोहरा देते हैं, त्रिसेवा वेटरन्स डे परेड के 5वें संस्करण की मेजबानी किस शहर ने की थी?
5: राज्य नहीं, शहर बताना।
3: जी आपको बता दें कि ये जो आयोजन है मरीन ड्राइव पर किया गया था। काफ़ी बड़ा हिंट है ये आपके लिए रवि।
5: मुंबई।
3: जी ये बिल्कुल सही जवाब है, मुंबई में ये आयोजित किया गया था।
0: और अगला सवाल है आपके लिए, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य को भारत का 100वां रामस्थर स्थल बनाया गया है, किस राज्य में ये स्थित है?
5: उत्तर प्रदेश।
0: उत्तर प्रदेश, बिल्कुल सही जवाब है आपका।
5: बलिया।
0: जी बिल्कुल, इसे सुरहा ताल भी कहा जाता है।
3: और इसी के साथ रवि, आपके लिए वो प्रश्न जो आपको कार्यक्रम का जीनियस भी बना सकता है, हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न का जवाब हमें दे पाएंगे। आपके लिए प्रश्न है कि जनवरी 2026 में भारतीय सेना द्वारा लॉजिस्टिक्स प्रबंधन को आधुनिक बनाने के लिए शुरू की गए पैन आर्मी डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? जी हम प्रश्न एक बार फिर से, जनवरी 2026 में भारतीय सेना द्वारा लॉजिस्टिक्स प्रबंधन को आधुनिक बनाने के लिए शुरू किए गए पैन आर्मी डिजिटल प्लेटफॉर्म का क्या नाम है? जी हिंट तो हम आपको नहीं दे सकते, बस हम आपको इतना बता सकते हैं कि ये प्लेटफॉर्म लॉजिस्टिक वस्तुओं के लगभग रियल टाइम ट्रैकिंग की सुविधा देता है और इसे भारतीय सेना और भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू सूचना विज्ञान संस्थान ने मिलकर विकसित किया है।
5: सॉरी नहीं आता
3: जी। कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रवि, आप हमारे कार्यक्रम के जीनियस बनते बनते रह गए। उम्मीद करते हैं आप कार्यक्रम में फिर से जुड़ेंगे। हेलो।
1: हेलो
3: जी नमस्कार, नाम बताएं।
1: जी अविनाश बोल रहा हूँ और इसका जवाब डीआरडीओ।
3: जी अविनाश, सबसे पहले तो कार्यक्रम में फिर से स्वागत है आपका, और जो आपने अभी हमें जवाब दिया वो सही जवाब नहीं है, कुछ और प्रयास आप करना चाहेंगे?
1: नहीं मैम, अगले साल पे जुड़ते हैं।
3: जी कार्यक्रम में जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो महिमा दो साथी इस प्रश्न का सही जवाब नहीं दे पाए हैं, और कार्यक्रम के रूल्स के मुताबिक इसका सही जवाब है डेपो इंटीग्रेशन मैनेजमेंट एडिशन यानी DIME, इसका सही जवाब है।
0: बिल्कुल, और अब अगला सवाल आप सभी के लिए है कि भारत के किस राज्य में रामसर स्थलों की संख्या सबसे अधिक है? हेलो।
6: हेलो
0: जी नमस्कार, नाम बताएं।
6: नमस्कार, राहुल बात कर रहा हूँ।
0: जी राहुल जी, भारत के किस राज्य में रामसर स्थलों की जो संख्या है वो सबसे अधिक है?
6: मतलब राज्य बताना है क्या?
0: जी राज्य बताना है आपको।
6: उत्तर प्रदेश।
0: जी उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर आता है और वहाँ पर कुल 13 हैं जो रामसर स्थल हैं वो घोषित किए गए हैं। आप पहले स्थान पर बताएं कि किस राज्य में संख्या सबसे अधिक है?
6: तमिलनाडु।
0: तमिलनाडु बिल्कुल सही और सटीक जवाब है, तमिलनाडु में कुल 20 रामसर स्थलों की संख्या है।
3: और इसी के साथ राहुल आप हमें बताइए कि भारत की दूसरी BSL-4 यानी बायो कंटेनमेंट सुविधा की आधारशिला किस स्थान पर रखी गई थी?
6: चंडीगढ़ पंजाब।
3: जी नहीं,
6: कोई हिंट है?
3: जी आपको बता दें कि ये भारत के पश्चिम दिशा में पड़ता है, जो कि जी गुजरात के गांधीनगर में जो है इसकी स्थापना की गई थी।
0: अगला सवाल है आपके लिए, प्रतिष्ठित नॉर्वे शतरंज का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं?
6: हिंट है मैम कोई?
0: जी ये जो नॉर्वे शतरंज का जो ये टूर्नामेंट हुआ ये नॉर्वे में आयोजित किया गया है, और ये भारतीय ग्रैंड मास्टर का नाम आपको बताना है। कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नॉर्वे शतरंज जीतने वाले पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं?
7: हेलो।
0: हेलो
7: जी मैं संदीप बोल रहा हूँ।
0: संदीप बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल है आपके लिए कि नॉर्वे शतरंज जीतने वाले पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं?
7: जी मैम वो आर प्रज्ञानंद।
0: जी बिल्कुल सही और सटीक जवाब है, आर प्रज्ञानंद जो है वो ये चैंपियनशिप उन्होंने जीती है।
3: और इसी के साथ संदीप आप हमें बताइए कि नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन हैं?
7: बैडमिंटन
3: जी
7: ये तो नहीं पता मुझे।
3: जी कुछ प्रयास आप करना चाहेंगे?
7: जी नहीं।
3: चलिए कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इसी तरह से आप कार्यक्रम का हिस्सा बनते रहिएगा। जुड़ते हैं अगले साथी से इसी प्रश्न के साथ। हेलो साथियों आपको बताना है कि
1: कम उम्र के सर्वोच्च खिलाड़ी।
3: नमस्कार अपना नाम बताएं।
1: जी मैं अविनाश बोल रहा हूँ त्रिपुरा से।
3: जी अविनाश कार्यक्रम में फिर से स्वागत है आपका, आपको बताना है कि नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन हैं?

0: ये बैडमिंटन का पता है ना
1: जी। आपको बता दें कि वर्ष 1980 में विश्व नंबर वन रैंकिंग पर पहुंचने वाले ये पहले भारतीय बने और उसी वर्ष प्रतिष्ठित ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाले पहले खिलाड़ी भी ये बनकर इन्होंने इतिहास रचा।
0: जी प्रकाश
1: जी, ये बिल्कुल सही जवाब है, प्रकाश पादुकोण जो हैं हमारे भारत के कम उम्र के नेशनल बैडमिंटन चैंपियन रह चुके हैं। ये बिल्कुल सही जवाब है आपका अविनाश।
2: और जुड़े रहिएगा हमारे साथ, अगला सवाल है आपके लिए, प्रोजेक्ट गंगा किस राज्य से संबंधित है? आपके बता देते हैं, संबंधित है ग्रामीण परिवारों को हाई स्पीड कनेक्टिविटी देने के लिए ये प्रोजेक्ट है।
0: जी उत्तर प्रदेश।
2: जी सही जवाब है, बिल्कुल उत्तर प्रदेश
0: जी।
2: तो आप अपना नाम बता दीजिए एक बार।
0: जी अविनाश बोल रहा हूँ त्रिपुरा से।
2: जी अविनाश जी, आप त्रिपुरा से बात कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत बधाई, आप बनते हैं आज के इस कार्यक्रम के हमारे पहले जीनियस। तीन सवालों के लगातार सही जवाब दिए हैं आपने, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया
0: जी। धन्यवाद
2: धन्यवाद।
1: तो महिमा, अविनाश जो है हमें हमारे आज के कार्यक्रम के पहले जीनियस मिल चुके हैं, उम्मीद करते हैं हमें और भी जीनियस मिलेंगे। बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे अपने अगले प्रश्न के साथ। आपको बताना है कि भारत रत्न से सम्मानित पहले उपराष्ट्रपति का नाम बताइए। हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं।
3: सतीश बोल रहा मैडम।
1: जी सतीश, कार्यक्रम में स्वागत है आपका, आपने प्रश्न सुना।
3: हाँ मैडम, राष्ट्रपति का नाम।
1: जी भारत रत्न से सम्मानित पहले उपराष्ट्रपति का नाम आपको बताना है।
3: सीपी राधा कृष्ण मैडम।
1: जी एक बार फिर से बताइए।
3: सीपी राधा कृष्ण।
1: जी डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन जो है इन्हें पहली बार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ये बिल्कुल सही जवाब है आपका।
2: और अगला सवाल है सतीश जी आपके लिए कि किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने असम राज्य के साथ मिलकर गुवाहाटी में एक ब्लू वैली क्लस्टर का शुभारंभ किया है?
3: WHO मैडम।
2: जी नहीं, ये तो सही जवाब नहीं है।
3: तो मैडम DRDO।
2: जी नहीं, ये भी सही जवाब नहीं है।
3: तो मैडम अगले प्रश्न पे आता हूँ।
2: हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने असम राज्य के साथ मिलकर ब्लू वैली क्लस्टर शुरू किया है।
4: गुड इवनिंग मैम, राहुल बात कर रहा हूँ।
2: गुड इवनिंग राहुल जी, सवाल है आपके लिए कि किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने असम राज्य के साथ मिलकर ब्लू वैली क्लस्टर की शुरुआत की है?
4: मतलब क्या बताना मैम?
2: जी आपको अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नाम बताना है जिसने असम राज्य के साथ मिलकर गुवाहाटी में ब्लू वैली क्लस्टर शुरू किया है।
4: अंतर्राष्ट्रीय DIBD।
2: जी नहीं, ये सही जवाब नहीं है।
4: संयुक्त राष्ट्र UNDP।
2: जी नहीं, ये भी सही उत्तर नहीं आपका।
4: ADB।
2: जी नहीं, ADB भी सही जवाब नहीं है यहाँ पर। तो नियमों के मुताबिक दो श्रोता यहाँ जुड़े हैं इस प्रश्न को लेकर। सही उत्तर है दोस्तों, यूरोपियन संघ ने असम राज्य के साथ मिलकर ब्लू वैली क्लस्टर शुरू किया है।
1: और इसी के साथ आपको बताना है साथियों कि विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? हेलो
5: हेलो
1: जी नमस्कार, अपना नाम बताएं।
5: जी नमस्कार मैडम, मैं उमेश बात कर रहा हूँ।
1: जी उमेश, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका, आपने प्रश्न सुना।
5: जी नहीं, एक बार रिपीट करें।
1: जी हम फिर से दोहरा देते हैं, आपको बताना है कि विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है?
5: 14 जून को।
1: जी ये बिल्कुल सही जवाब है, 14 जून को हम विश्व रक्तदाता के दिवस में हम मनाते हैं।
2: और अगला सवाल है आपके लिए, हाल ही में जारी की गई वैश्विक शांति सूचकांक में 163 देशों की सूची में भारत का स्थान क्या रहा?
5: कुछ हिंट मिलेगा?
2: जी कुल 163 देशों की यहाँ पर सूची थी जिसके अंतर्गत भारत का स्थान जो है वो 100 से ऊपर है।
5: 127।
2: बिल्कुल सही और सटीक जवाब दिया है आपने, दो प्रश्नों के अभी तक आप सही उत्तर दे चुके हैं। और अगला प्रश्न

0: जो आपको आज के इस कार्यक्रम का जीनियस बना सकता है वो है अहमदाबाद में आयोजित प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप की पदक तालिका में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा?
1: जी भारत।
0: भारत, बिल्कुल। भारत ने कुल 114 मेडल यहाँ पर जीते, जिसमें से कि 102 गोल्ड मेडल थे और 3 सवाल सही जवाब। आप अपना नाम एक बार फिर बता दीजिए।
1: जी उमेश बात कर रहा हूँ।
0: उमेश जी, आपको बहुत बहुत बधाई हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए। आप बनते हैं आज के इस कार्यक्रम के जीनियस।
1: जी धन्यवाद।
2: तो महिमा, अविनाश और उमेश आज के कार्यक्रम के 2 जीनियस हमें मिल चुके हैं। बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे अपने अगले प्रश्न के साथ। आपको बताना है कि हिंद तीर चादर के नाम से किसे जाना जाता है? हेलो,
1: नमस्ते मैडम
2: जी। सतीश बात कर रहे हैं।
1: हाँ जी
2: जी, कार्यक्रम में फिर से स्वागत है आपका। आपने प्रश्न सुना?
1: हिंदुस्तान को मैडम हिंद की चादर?
2: जी नहीं, ये सही जवाब नहीं है सतीश।
1: तो मैडम फिर तो अगले प्रश्न पे आता हूँ मैडम
2: जी।
1: हेलो
2: साथियों, आपके लिए प्रश्न है, हिंद दी चादर के नाम से किसे जाना जाता है?
1: गुरु तेग बहादुर जी के।
2: बिल्कुल सही जवाब है। नमस्कार, अपना नाम भी बता दीजिए।
1: रामधारी बात कर रहा हूँ
2: जी। रामधारी, ये बिल्कुल सही जवाब है आपका।
0: और अगला सवाल आपके लिए है, जोजिला के बीच में संपर्क को सुनिश्चित करेगी। हाल ही में इस टनल का अंतिम चरण पूरा कर लिया गया है। हेलो।
1: हेलो, हाँ जी, हाँ जी
0: जी, सवाल सुना आपने?
1: जोजिला, क्या बोला जरा?
0: जी, जोजिला टनल ने हाल ही में अपना अंतिम चरण पूरा किया है। आपको बताना है कि ये टनल किन दो क्षेत्रों के बीच में संपर्क सुनिश्चित करेगी?
1: जोजिला ये है लद्दाख को हिमाचल प्रदेश।
0: जी लद्दाख सही है, लेकिन हिमाचल प्रदेश सही नहीं है। ग्यारह हजार 578 फीट की ऊंचाई पर यह स्थित है।
1: श्रीनगर को?
0: जी श्रीनगर भी नहीं। एक और प्रयास आपकी ओर से।
1: कारगिल को लद्दाख?
0: जी नहीं, प्रयास अच्छे रहे लेकिन ये सही जवाब नहीं है यहाँ पर। कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो कश्मीर वैली को और लद्दाख के बीच में जोजिला टनल का जो है ये संपर्क स्थापित किया जाएगा इसके माध्यम से।
2: जी बिल्कुल महिमा। और अगला प्रश्न हम अपने साथियों से पूछ लेते हैं कि दक्षिण भारत के हिंदू राजाओं पर हमला करने वाला पहला मुस्लिम सुल्तान कौन था? हेलो, हेलो, आपको बताना है कि दक्षिण भारत के हिंदू राजाओं पर हमला करने वाला पहला मुस्लिम सुल्तान कौन था? हेलो,
3: हेलो
2: जी, नमस्कार, नाम बताएं।
3: जी मैम, मैं संदीप बोल रहा हूँ।
2: जी संदीप, कार्यक्रम में फिर से स्वागत है आपका। आपने प्रश्न सुना?
3: जी मैम, ये मोहम्मद बिन कासिम।
2: जी ये सही जवाब नहीं है संदीप।
3: तो फिर
2: आपको बता दें कि वो खिलजी वंश से संपर्क रखते हैं।
3: खिलजी वंश, जलालुद्दीन खिलजी?
2: जी अलाउद्दीन खिलजी इस प्रश्न का सही जवाब है।
0: और अगला सवाल है यहाँ पर आपके लिए कि लोकटक झील किस राज्य में स्थित है?
3: लोकटक झील मणिपुर में।
0: मणिपुर, बिल्कुल सही उत्तर है यहाँ पर। और किस पर्वत श्रृंखला को एशिया और यूरोप के बीच में सीमा माना जाता है? हेलो,
3: रिपीट करना मैम।
0: किस पर्वत श्रृंखला को एशिया और यूरोप के बीच की सीमा माना जाता है?
3: एशिया और यूरोप की,
0: कार्यक्रम में यहाँ पर आप हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो, हेलो,
1: हेलो
0: जी, किस पर्वत श्रृंखला को एशिया और यूरोप के बीच की सीमा माना जाता है? कार्यक्रम में हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नियमों के मुताबिक 2 साथी हो चुके हैं, तो यूरल पर्वत इस प्रश्न का सही

0: जवाब है। तो दोस्तों, प्रश्न उत्तर का ये सिलसिला अब यहीं पर समाप्त करते हैं, और कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। दीजिएगा इजाज़त अपने रेडियो साथी नंदिनी और महिमा को।
1: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा संसार, आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्स, न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर। शाम के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज दोपहर एक भीषण अग्निकांड में 14 छात्रों की मौत हो गई। अलीगंज के पुरानिया इलाके में एक दुकान के ऊपर चल रहे कोचिंग सेंटर में आग लग गई, जिससे छात्रों में दहशत फैल गई। कुछ लोग घायल हो गए हैं और उन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। मीडिया से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि इमारत में स्थित एनिमेशन सेंटर में मौजूद 16 से 18 वर्ष की आयु के 14 छात्रों की मौत हो गई है। उन्होंने बताया कि दमकल कर्मी इमारत के कोनों, शौचालयों और अन्य क्षेत्रों में छात्रों की तलाश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुई भीषण अग्निकांड पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि बचाव अभियान जारी है और अधिकारी हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपये और घायलों को 50-50 हज़ार रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज उलानबतार में मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्सतेग पटनमुख से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि चर्चाओं में भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी, मजबूती और संभावनाओं पर बात की गई है। दोनों नेताओं ने विकास परियोजनाओं, क्षमता निर्माण, संस्कृति, शिक्षा, सुरक्षा और बहुपक्षीय मंचों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच की मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा परिचालन दक्षता में सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1 लाख खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री स्वप्न दास गुप्ता ने बजट पेश करते हुए बताया कि नौकरियों में 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। अग्निवीरों के लिए आवश्यकता अनुसार 10% आरक्षण शुरू किया गया है। महाराष्ट्र विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हुआ। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सदन में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 97,706 करोड़ रुपए से अधिक की अनुपूरक मांगे पेश की। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने नवनिर्वाचित सदस्यों सुनीत्रा पवार और अक्षय करडिले को पद की शपथ दिलाई। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने राज्य के कई हिस्सों में जल संकट का मुद्दा उठाया। तमिलनाडु विधानसभा में आज कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना पर चर्चा हुई। AIADMK, PMK और CPM सहित विपक्षी दलों ने आशंका व्यक्त की है कि इस परियोजना से कावेरी जल बंटवारे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और तमिलनाडु के हित प्रभावित हो सकते हैं। राज्य सरकार ने कहा है कि वो तमिलनाडु के जल अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज लुधियाना में विख्यात कृषि वैज्ञानिक और पद्म भूषण से सम्मानित सरदारा सिंह जोहल से मुलाकात की। श्री नवीन ने उनके साथ पंजाब के कृषि संकट पर चर्चा की। बैठक के बाद श्री नवीन ने कहा कि श्री जोहल के साथ बातचीत में कृषि के मुद्दों पर अमूल्य जानकारी प्राप्त हुई।
1: मैं मानता हूं कि ऐसी शख्सियत जिसने किसानों की भावनाओं को समझा, कृषि को समझा और कृषि को कैसे एक सही रूप से

0: आगे बढ़ाया जाए, इस चीज को उन्होंने एक रिसर्च के रूप में देखा है, तो निश्चित रूप से ऐसे शख्सियत से मिलना मेरे लिए भी सौभाग्य का विषय है।
1: ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक से इतर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज नई दिल्ली में ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के रक्षा मामलों के उपसचिव गदीर निजामीपुर से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। श्री डोभाल ने इथियोपिया के राष्ट्रीय खुफिया सुरक्षा सेवा के विश्लेषण कार्यकारी निदेशक मिलियन लेमा तेदेसे से भी मुलाकात की। दोनों पक्षों ने भारत इथियोपिया रणनीतिक भागीदारी बढ़ाने और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज ग्रुप जे में अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले आज खेले गए मुकाबले में मिस ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। पहले एक नज़र आज के शेष कार्यक्रमों पर। आज रात 9:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम पब्लिक स्पीक, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। साप्ताहिक समीक्षा आप सुन सकते हैं 6:30 पर, जिसे आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से रिले किया जाएगा। सजीव फोन इन कार्यक्रम चौपाल सुनिएगा 7:00 कार्यक्रम ग्रामीण संसार में। 6:20 पर कार्यक्रम कृषि जगत में डॉक्टर हंस राज की पूर्व प्रसारित बातचीत का विषय होगा वर्षाकालीन भिंडी की काश्त। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में रात 10:00 सुनिएगा अहमद अली खां का गाया राग मारू बिहाग। सुगम संगीत कार्यक्रम आप सुन सकते हैं रात 8:25 पर, जिसमें कलाकार रहेंगी फरीदा खानम। फरमाइशी फिल्म संगीत का पत्रों पर आधारित कार्यक्रम मन चाहे गीत अपने सुनने वालों के लिए लेकर आएंगे रात 10:30 पर। रात 9:15 पर सुनेगा कार्यक्रम एक फिल्म से, इसमें आज आपको सुनवाएंगे राजा और रंक फिल्म से चुनिंदा गीत। और फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा 7:30 पर। ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। अब एक नज़र कल के मुख्य आकर्षणों पर। हरियाणवी फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम थारी पसंद सुनिएगा कल रात 9:30 पर। समसामयिक विषयों पर चर्चा के साथ फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुबह सवेरे अपने सुनने वालों के लिए लेकर आएंगे प्रातः 7:25 पर। कार्यक्रम विविधा में सुनिएगा मनोज भारती से कविता पाठ, समय रहेगा प्रातः 7:15। युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युवा संसार आप सुन पाएंगे 5:30 पर। तिल की काश्त ये विषय होगा चर्चा का कार्यक्रम खेत खलिहान में दिन में 2:30 पर। कार्यक्रम कृषि जगत में 6:20 पर डॉक्टर अमित कुमार की पूर्व प्रसारित बातचीत का विषय होगा धान की रोपाई में सावधानियां। गांवों में आपसी भाईचारा ये विषय होगा श्री बलवान सिंह और नरेश की पूर्व प्रसारित बातचीत का कार्यक्रम ग्रामीण संसार में 7:00। NCERT द्वारा तैयार प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन में 12:30 पर। प्रायोजित कार्यक्रम ऑर्गन इंडिया होगा 5:45 पर। अब जानकारी कुछ संगीत कार्यक्रमों की। कार्यक्रम सुगम संगीत आप सुन सकते हैं रात 8:25 पर। फरमाइशी फिल्म संगीत का पत्रों पर आधारित कार्यक्रम मन चाहे गीत होगा रात 10:30 पर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत सुनिएगा दिन में 1:10 पर। कार्यक्रम एक फिल्म से होगा रात 9:15 पर। फिल्म संगीत का लुत्फ लीजिएगा प्रातः 9:00 और 7:30 पर। और हरियाणवी लोक संगीत में प्रातः 8:30 पर कलाकार रहेंगे DC सिंह।

0: ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रूपरेखा। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। शाम के 6:10 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से रिले करेंगे।
1: दीदी, नौकरी लग गई।
2: अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
1: हाँ दी, नया मोबाइल।
2: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
1: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
2: पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो।
1: पर दीप,
2: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
1: हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा।
2: अच्छा।
3: RBI कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप चंदन शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में गांव में पटवारियों की उपलब्धता बढ़ाने सहित विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा हुई। राखीगढ़ी पुरातत्व स्थल में खुदाई में मिले मानव कंकाल अवशेषों को उन्नत वैज्ञानिक अध्ययन के लिए भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण को सौंपा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में कृषि एवं किसान कल्याण के लिए अनेक योजनाएं शुरू की गईं। किसानों ने पीएम किसान सम्मान निधि की तारीफ की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भिवानी जिले के गांव धीराणा में नया उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने की मंजूरी दी। और पंचकूला नगर निगम के कथित गबन मामले में गिरफ्तार आईएएस अधिकारी आरके सिंह को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। अब समाचार विस्तार से। आज चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती और श्यामलात भूमि देने का अधिकार जिला उपायुक्त को देने पर चर्चा हुई। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने बताया कि कुल 15 प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिनमें से लगभग 13 पर निर्णय लिया गया है।
1: 13 एजेंडा क्लियर हो गए हैं। इसमें ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी भी है और टीचर ट्रांसफर पॉलिसी भी है। उसके साथ साथ कई आइटम ऐसी हैं जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर पंचायती लैंड शामलात भूमि देने की बात थी, वो पहले डायरेक्टर को पावर थी, अब उसको पावर फ्रॉम डीसी साहब को दे रहे हैं, क्योंकि यहां पर पूरे हरियाणा का डायरेक्टर पंचायत पर जिस प्रकार से स्पीड बढ़नी चाहिए थी काम की नहीं बन पा रही थी।
0: बैठक में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई उनमें राजस्व विभाग में स्टाफ की कमी दूर करने और गांवों में पटवारियों की उपलब्धता बढ़ाना शामिल है। इसके अलावा नए भर्ती 2600 पटवारियों के प्रशिक्षण की अवधि 18 माह से घटाकर 12 माह करने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई है। सरकार का तर्क है कि लंबे प्रशिक्षण के कारण बड़ी संख्या में चयनित पटवारी गांवों में नहीं पहुंच पा रहे हैं। प्रशिक्षण अवधि कम होने से राजस्व रिकॉर्ड, इंतकाल, जमाबंदी और भूमि संबंधी सेवाओं के लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आएगी। हरियाणा के राखीगढ़ी पुरातत्व स्थल से खुदाई में मिले मानव कंकाल अवशेषों को उन्नत वैज्ञानिक अध्ययन के लिए भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण को सौंप दिया गया है। ये प्रक्रिया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण के बीच हाल ही में हुए समझौता ज्ञापन के अंतर्गत की गई। करीब 550 एकड़ क्षेत्र में फैला राखीगढ़ी सिंधु सरस्वती सभ्यता की सबसे बड़ी ज्ञात बस्ती माना जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन कंकालों के अध्ययन से सिंधु सरस्वती सभ्यता के लोगों के जीवन, स्वास्थ्य और सामाजिक संरचना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो सकेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारत के कृषि क्षेत्र में अभूतपूर्व और क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। इस दौरान केंद्र सरकार ने किसानों की मदद के लिए अनेक योजनाएं शुरू की, जिनमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना और किसान सम्मान निधि योजना प्रमुख हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ने किसानों को बीज आदि की खरीद के लिए होने वाले खर्च से निपटने में राहत दी है और छोटे मोटे कृषि कर्जों के लिए कर्ज लेने से बचाया है। सबसे खास बात यह है कि ये राशि किसानों के बैंक खातों में बिना किसी बिचौलिए के और बिना किसी सिफारिश के सीधे पहुंच रही है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी की। इसके तहत देश के 9,44,00,000 से अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ से अधिक की राशि का सीधा हस्तांतरण किया गया। इस योजना के अंतर्गत हरियाणा के 15,95,644 लाभार्थी किसानों के खातों में 319,13,00,000 रुपये की राशि पहुंची है। जींद के एक किसान ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा,
2: ये जो मोदी साहब ने जो अपने स्कीम चलाई है किसानों के सम्मान के लिए, ये बहुत अच्छी स्कीम है। जिस टाइम ये किस्त आती है तकरीबन ये महीने ऐसे हैं जिनमें जमींदार के ऊपर खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है। इसमें कुछ तो सहारा लगता है आदमी को, खाद बीज कुछ तो ले आता है और ये किस्त बिल्कुल टाइम टू टाइम आती है। अब 23वीं किस्त मेरी ये परसों शाम को टाइम टू टाइम मैसेज आया, मैंने शाम को सोने के वक्त देखे 9 बजे चेक किया, उससे पहले आ चुकी थी किस्त। बहुत अच्छा कर रहे हैं मोदी जी, उनका दिल से धन्यवाद।
0: हरियाणा के किसानों को अब तक कुल 23 किस्तों में 7,881,60,00,000 रुपये मिले हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भिवानी जिले के गांव धीराणा में नया उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने की प्रशासनिक मंजूरी दे दी है। हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि इस स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण और बुनियादी ढांचे को विकसित करने पर लगभग 55,49,000 रुपये खर्च होने का अनुमान है। इस बजट से केंद्र में आवश्यक चिकित्सा उपकरण, दवाइयां और मरीजों के लिए जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था भी की जाएगी, जिससे धिराणा और आसपास के ग्रामीणों को सीधा लाभ मिलेगा। पंचकुला नगर निगम के 79,46,00,000 रुपए के कथित गबन मामले में गिरफ्तार आईएएस अधिकारी आरके सिंह को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने आज 3 दिन का रिमांड पूरा होने पर अदालत में पेश किया, जिसके बाद उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। सीबीआई ने इस दौरान रिमांड अवधि में हुई पूछताछ और जांच की प्रगति से अदालत को अवगत करवाया। गौरतलब है कि आरके सिंह पर पंचकुला नगर निगम से जुड़े कथित गबन मामले में भूमिका निभाने का आरोप है। सीबीआई इस मामले में वित्तीय लेन देन, प्रशासनिक निर्णयों और संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी की जांच कर रही है। हरियाणा राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने नूह में खेल विभाग में तैनात उप अधीक्षक राम मेहर को 50,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसकी कार जिला खेल विभाग में ठेकेदार के माध्यम से मासिक किराए पर लगी थी, किंतु उसे इस वर्ष फरवरी से वाहन का भुगतान प्राप्त नहीं हुआ और खेल अधिकारी द्वारा उसके वाहन को 1 जून से विभागीय सेवा से भी हटा दिया गया। उसके बाद खेल विभाग के कुछ कर्मचारी उसकी गाड़ी को पुनः विभाग में लगाने के बदले 1,50,000 रुपये की रिश्वत मांग रहे थे। ब्यूरो से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी को न्यायालय में भेजकर आगे की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के माध्यम से देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और स्वदेशी उद्योगों में पिछले 12 वर्षों में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकल से ग्लोबल तक की परिकल्पना को ध्यान में रखकर बुनी गई खादी आज देश की आर्थिक मजबूती और ग्रामीण समृद्धि का बड़ा आधार बन गई है। हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग के बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. बलप्रीत सिंह ने कहा कि सरकार ने इन 12 वर्षों में खादी व ग्रामोद्योग पर विशेष ध्यान दिया है।
3: इन 12 वर्षों में खादी पे एक खास फोकस किया गया है ताकि हम मेक इन इंडिया के स्लोगन को एक रियल सेंस में अपना सके, तो उसी के उपलक्ष्य में कई इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जिसमें से फाइनेंशियल असिस्टेंस से लेके मार्केटिंग असिस्टेंस तक का कवरेज किया गया है। फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात करें तो हमारी स्कीम्स हैं जैसे प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, उसके अंडर हमारी विलेज इंडस्ट्रीज है, माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज है, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं।
0: लोगों को जहां अनुदान पर ऋण उपलब्ध हुआ, वहीं डिजिटल मार्केटिंग द्वारा नया बाजार उपलब्ध हो रहा है। गनौर क्षेत्र के गांव खुबड़ू में आज सुबह सोनीपत अपराध शाखा और गनार पुलिस की अपराध जांच एजेंसी की संयुक्त टीम के साथ हुई मुठभेड़ में गैंगस्टर गोपाल मारा गया। मुठभेड़ के दौरान अपराध जांच एजेंसी के एक हवलदार देवेंद्र के हाथ में भी गोली लगी। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार गोपाल पर हत्या, हत्या की कोशिश, दुष्कर्म और अन्य गंभीर अपराधों सहित करीब 25 आपराधिक मामले दर्ज थे। पुलिस के मुताबिक हत्या के 2 मामलों में उम्र कैद की सजा भुगत रहा गोपाल इसी वर्ष मार्च में मिली पैरोल खत्म होने पर 30 मई को वापस जेल जाने की बजाय भूमिगत हो गया था। इसके बाद उसने सोनीपत और पानीपत क्षेत्र में कई आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 4 व 5 जुलाई को ली जाने वाली एचटेट परीक्षा 2025 हेतु पंजीकरण करवाने वाले अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क जमा करवाकर अपने विवरणों में रह गई कोई भी त्रुटि ऑफलाइन माध्यम से दूर करवा सकते हैं। बोर्ड अध्यक्ष शंकरलाल धूपड़ ने बताया कि यह सुविधा 25 जून तक केवल कार्य दिवसों में सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक बोर्ड कार्यालय के कमरा नंबर 28 में मिलेगी। उन्होंने अभ्यर्थियों से महत्वपूर्ण सूचनाओं के लिए बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट नियमित रूप से देखने की अपील की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में गांवों में पटवारियों की उपलब्धता बढ़ाने सहित विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा हुई। राखीगढ़ी पुरातत्व स्थल में खुदाई में मिले मानव कंकाल अवशेषों को उन्नत वैज्ञानिक अध्ययन के लिए भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण को सौंपा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में कृषि एवं किसान कल्याण के लिए अनेक योजनाएं शुरू की गई। किसानों ने पीएम किसान सम्मान निधि की तारीफ की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भिवानी जिले के गांव धिराणा में नया उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने की मंजूरी दी। और पंचकुला नगर निगम के कथित गबन मामले में गिरफ्तार आईएएस अधिकारी आरके सिंह को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।
4: कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
5: PLI है ना।
6: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
7: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

ਲਾਰੀ ਯਾ ਪਾਗਲ ਖੇਖੇ।

भैया ने ये सुनी रागनी मास्टर रामफल शर्मा और उनके साथियों की गाई हुई। भैया देखो, जब हम पहले भी बात कर रहे थे, भाई पशुओं का जो संतुलन है, संतुलित खाना है, चारा दाना है, वो बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ जैसे गर्मी का मौसम है, उस गर्मी के मौसम के हिसाब से हमने ये देखना चाहिए, भाई उनको ताज़ा पानी है वो ज़रूर पिलाना है, दिन में बहुत बार उनको पिलाना पड़ा है। और जो बहुत अच्छी अच्छी डेयरी फार्मिंग का काम कर रहे हैं हमारे पशुपालक भाई, वो पशु को के साथ में पानी का भी प्रबंध कर रहे हैं कि भाई जितनी भी पशु को प्यास लगे वो समय समय पे अपना जो पानी है पीता रहे और जो चारा दाना है वो साथ के साथ भी लेता रहे। उससे देखो, जब हम पशु के आगे पानी रख देंगे, चाहे कुछ मान लो हमारे पास एक या दो पशु है तो उसको हम बाल्टी में रख सके हैं, लेकिन जब ज़्यादा हम पशु रखे हैं और जो डेयरी फार्मिंग का काम कर रहे हैं, तो फिर वो भाई अपना साथ में खोर में

प्रस्तुत है हरियाणा राज्य की साप्ताहिक समाचार समीक्षा। लेखक हैं वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गोयल, वाचक चंदन शर्मा। भारत आज विश्व के सबसे तेजी से उभरते हुए देशों में शामिल है। भारत आधुनिक विज्ञान और तकनीक के साथ अपनी सांस्कृतिक विरासत को भी समान महत्व दे रहा है। भारत की ऐसी एक मूल्यवान धरोहर है योग, जिसने आज पूरी दुनिया को स्वस्थ जीवन का मार्ग दिखाया है। योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि शरीर, मन और आत्मा के संतुलन का एक समग्र विज्ञान है। इसकी उत्पत्ति हजारों वर्ष पूर्व प्राचीन भारत में हुई थी, जिसके प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होते हैं। भारतीय ऋषियों और मुनियों ने मानव जीवन को स्वस्थ, संतुलित और सार्थक बनाने के लिए योग विकसित की, जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी प्राचीन काल में थी। महर्षि पतंजलि को योग का जनक माना जाता है। उन्होंने योग के प्राचीन ज्ञान को व्यवस्थित करते हुए योग सूत्र की रचना की। इसके अतिरिक्त भगवद्गीता, उपनिषदों और हठ योग संबंधी ग्रंथों ने योग को दार्शनिक और आध्यात्मिक आधार प्रदान किया। समय के साथ यह ज्ञान भारत की सीमाओं से निकलकर विश्व भर में फैलता गया। योग ने न केवल आध्यात्मिक साधना का मार्ग प्रशस्त किया, बल्कि जीवन शैली से जुड़ी अनेक समस्याओं के समाधान का भी माध्यम बना। 19वीं शताब्दी के अंत में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में अपने ऐतिहासिक संबोधन के माध्यम से पश्चिमी देशों में भारतीय दर्शन और योग की नींव रखी। इसके बाद परमहंस योगानंद, बी के एस अयंगर, महर्षि महेश योगी तथा टी कृष्णमाचार्य जैसे महान योगाचार्यों ने योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज दुनिया के लगभग सभी देशों में योग का अभ्यास किया जाता है और लाखों लोग इसे अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बना चुके हैं। योग को वैश्विक पहचान दिलाने में भारत की कूटनीतिक पहल अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा में रखे गए प्रस्ताव के बाद वर्ष 2014 में 21 जून को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। संयुक्त राष्ट्र में इस प्रस्ताव को रिकॉर्ड संख्या में देशों का समर्थन प्राप्त हुआ, जो योग के प्रति वैश्विक विश्वास और सम्मान को दर्शाता है। ये भारत की सांस्कृतिक शक्ति और विश्व कल्याण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। वर्ष 2016 में यूनेस्को ने योग को मानवता की अमूर्ति सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया। यह सम्मान न केवल योग की वैश्विक स्वीकार्यता का प्रमाण है, बल्कि विश्व स्वास्थ्य और मानव कल्याण में भारत के योगदान की भी बड़ी मान्यता है। ये उपलब्धि भारत की उस प्राचीन ज्ञान परंपरा का सम्मान है, जिसने सदियों से मानवता को स्वस्थ और संतुलित जीवन का संदेश दिया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पहले आयोजन में नई दिल्ली के राजपथ पर दुनिया की सबसे बड़ी योग कक्षा का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया, जिसमें 35,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त अहमदाबाद में आयोजित पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में 60 से अधिक देशों के खिलाड़ियों ने भाग लेकर यह सिद्ध कर दिया कि योग अब केवल साधना नहीं, बल्कि एक वैश्विक खेल गतिविधि के रूप में भी विकसित हो रहा है। योगासन प्रतियोगिताओं के माध्यम से युवा पीढ़ी में भी योग के प्रति रुचि बढ़ रही है। भारत सरकार ने योगासन को औपचारिक रूप से एक प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में मान्यता प्रदान की है। इसके बाद विभिन्न राज्य सरकारों ने भी अपनी खेल नीतियों में योगासन को शामिल करना प्रारंभ कर दिया। खेलो इंडिया प्रतियोगिता में योग को 5 पारंपरिक खेलों में स्थान दिया गया है। यह मंच देशभर के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने और राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने का अवसर प्रदान करता है। खेलो इंडिया के माध्यम से उभरती प्रतिभाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का मार्ग भी प्राप्त हो रहा है। योग का महत्व केवल खेलों तक सीमित नहीं है। आधुनिक जीवन शैली में बढ़ते तनाव, अनियमित खानपान, मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बीच योग एक प्रभावी समाधान के रूप में सामने आया है। वैज्ञानिक शोधों में यह भी सिद्ध हुआ है कि नियमित योगा

0: अभ्यास शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने, मानसिक तनाव कम करने और जीवन की गुणवत्ता सुधारने में सहायक होता है। कोविड 19 महामारी के दौरान भी बड़ी संख्या में लोगों ने योग और प्राणायाम को अपनाकर अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने का प्रयास किया। हरियाणा सरकार ने भी योग के प्रचार प्रसार और संस्थागत विकास के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग तथा हरियाणा लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में योग संबंधी ज्ञान को अनिवार्य किया गया है। राज्य में आयुष योग सहायक और योग प्रशिक्षक के पदों पर सीधी भर्ती की जा रही है। ये पहल युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित कर रही है। आगामी शैक्षणिक सत्र में कक्षा 3 से 9वीं तक योग शिक्षा को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जा रहा है, जिससे विद्यार्थियों के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास को बढ़ावा मिलेगा। विद्यालयों में योग शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए पीटीआई, डीपीईडी, पीजीटी तथा चयनित पीआरटी शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। इससे विद्यार्थियों में अनुशासन, एकाग्रता और सकारात्मक सोच विकसित होगी। इसके साथ ही मोरनी में प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग क्षेत्र में एक राज्य स्तरीय संस्थान स्थापित किया जा रहा है, जहां स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम संचालित होंगे। हरियाणा के विभिन्न विश्वविद्यालयों में स्थापित किए जा रहे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में भी योग को प्रमुख घटक के रूप में शामिल किया गया है, जिससे योग शिक्षा, अनुसंधान, प्रशिक्षण और नवाचार को नई दिशा मिलेगी। इससे योग के क्षेत्र में वैज्ञानिक अध्ययन और शोध को भी प्रोत्साहन मिलेगा। राज्य सरकार द्वारा उच्चतर शिक्षा संस्थानों में स्पोर्ट्स विभाग का नाम बदलकर स्पोर्ट्स एवं योग विभाग करना भी एक सराहनीय पहल है। इससे योग को संस्थागत पहचान मिलने के साथ साथ युवाओं में इसके प्रति जागरूकता, रुचि और भी बढ़ेगी। यह कदम दर्शाता है कि योग अब केवल पारंपरिक अभ्यास नहीं बल्कि शिक्षा और खेल व्यवस्था का भी अभिन्न हिस्सा बन रहा है। आज जब पूरी दुनिया तनाव, जीवन शैली संबंधी बीमारियों और मानसिक चुनौतियों से जूझ रही है, तब योग मानवता के लिए आशा और स्वास्थ्य का एक सशक्त माध्यम बनकर उभरा है। योग केवल भारत की पहचान नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के स्वास्थ्य, शांतिपूर्ण और संतुलित भविष्य की आधारशिला है। इसी के साथ समाचार समीक्षा समाप्त हुई।
1: कृषि जगत कार्यक्रम में भाइयों का फिर से स्वागत है और ये भजन सुनाओगे एक बातचीत मिट्टी में पोषक तत्वों का महत्व। डॉक्टर अंकित गिल जी आए थे तो उनसे बातचीत करी थी, तो भाई सुने ये बातचीत।
2: श्रोता, हमारी मिट्टी पोषण का एक भंडार होती है। इसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो पौधे अपने बढ़वार के लिए और अपने खान पान के लिए इस्तेमाल करते हैं, और उनका जब हम सेवन करते हैं तो उसका सीधा लाभ हमें यानी मनुष्यों को और पशुओं को मिलता है। ये कितने प्रकार के तत्व होते हैं, उनका क्या लक्षण होता है, किस प्रकार के कौन कौन से तत्व इसमें मौजूद हैं और उनके क्या कुछ परिणाम निकलते हैं अगर किसी प्रकार की कोई कमी होती है, तो इसके बारे में आज बात करने के लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर अंकित गिल जी को। आप मृदा वैज्ञानिक हैं और बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय रोहतक से पधारे हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है।
3: डॉक्टर साहब, सर्वप्रथम आपको नमस्कार और सभी किसान भाइयों को मेरी तरफ से सह दिल से नमस्कार।
2: जी नमस्कार। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि मिट्टी में कितने प्रकार के तत्व होते हैं एक पौधे को अपना जीवन पूरा करने के लिए।
3: डॉक्टर साहब, मिट्टी में एक पौधे को अपने फसल चक्र पूरा, जीवन चक्र पूरा करने के लिए कुल 17 पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है।
2: 17?
3: हाँ जी
2: जी। कौन कौन से हैं थोड़ा सा बताइए।
3: ये 17 डॉक्टर साहब, इसमें हमारी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश,
2: एनपीके जो के आमतौर पर,
3: इसके बाद आ जाएंगे अपने सेकेंडरी द्वितीय पोषक तत्व कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। उसके बाद डॉक्टर साहब आते हैं अपने सूक्ष्म पोषक तत्व जिसमें अपने कैल्शियम, इसमें जिंक, बोरोन, मोलिब्डेनम, निकल, क्लोरीन, ये सब आदि मौजूद है।
2: मौजूद है, तो यानी कि इतने तत्वों की जरूरत होती है एक पौधे को फलने फूलने की। अब जानना चाहेंगे कि हमारी जो मिट्टी है उसमें इन तत्वों की क्या स्थिति है, क्या ये सभी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं?
3: नहीं, ये प्रचुर मात्रा में, जैसे हम 17 में से एक, जैसे एक एक करके बात करेंगे, जैसे नाइट्रोजन की बात करते हैं, नाइट्रोजन ऐसा पोषक तत्व है जो सार्वभौमिक, यूनिवर्सली डेफिशिएंट है।
2: अच्छा, सभी जगह कमी है।
3: और जो अगर अपने इंडियन सोइल्स की बात करेंगे तो नाइट्रोजन की कमी है, ऑर्गेनिक मैटर हमारा बहुत लो पत्ती पे है, उसकी कमी है। अपने जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करेंगे तो उसमें जिंक हो गया, आयरन हो गया, बोरोन हो गया, इनकी कमी भी अब बहुत ज़्यादा आधुनिक खेती में देखी जा रही है। सर, हम किसान भाई अपने खेतों में खाद, दवाइयाँ डालते रहते हैं, फिर भी अपनी जो फसल की जो पैदावार हमें चाहिए होती है अक्सर वो हमें नहीं मिल पाती, तो उनकी कभी तो क्या मतलब अलग अलग तरीके की समस्या होती है। इसमें कभी आपके पत्ते पीले पड़ जाते हैं, कभी आपका जो फल

0: वो समय से पहले नीचे गिर जाता है,
1: जी
0: या फल मतलब जो आपका फल है वो फट जाता है, कभी कभी जो आपका दाने का आकार है, साइज़ है,
1: जी
0: वो भी कम होता है, पौधा छोटा रहता है और दाना कई बार भर नहीं पाता।
1: जी
0: इससे हम नॉर्मली किसान भाई क्या सोचते हैं, भाई ये तो किसी ना किसी बीमारी का अटैक है। आमतौर पर 90% तक ये पौधे की भूख भी हो सकती है, दूसरा कारण ये भी हो सकता है। जैसे हम मनुष्यों को जी अपने जीवन चक्र में विटामिन मिनरल्स प्रोटीन की ज़रूरत होती है हमारी जीवन शैली को चलाने के लिए, ऐसे ही
1: जी
0: पौधे को अपने जीवन चक्र पूरा करने के लिए 17 पोषक तत्वों की
1: आवश्यकता होती है
0: आवश्यकता होती है।
1: जी
0: वैसे तो अपने पोषक तत्व बहुत होते हैं, 108 में होते हैं, पर ये 17 ऐसे पोषक तत्व हैं जिनकी पौधे को ज़रूरत होती है, और अगर इनमें से एक पोषक तत्व भी अपना अब्सेंट होता है या मात्रा कम होती है उस वक्त, तो पौधा अपना जीवन काल संपूर्ण नहीं कर पाएगा। मतलब उसमें कोई ना कोई कमी, इसके पैदावार में छोटापन, बोनापन, उसमें कोई ना कोई वो लक्षण
1: आ
0: पक्का
1: जाएगा।
0: दिखाएगा। कहने का मतलब इन 17 का, एक एक का 17 का अलग रोल है। अगर एक भी उसमें तो 16 पोषक तत्व अपने पास अधिक मात्रा में और एक कमी है, तो उसका अपने को सीधा सीधा पैदावार पर असर दिखेगा। और इसी को हम साइंस की भाषा में इसको लॉ ऑफ मिनिमम भी बोलते हैं डॉक्टर साहब,
1: यानी
0: यानी
1: कि
0: कि
1: कम से कम
0: कम से कम अगर एक भी कम होगा ना, तो
1: जी
0: पौधा अपना जीवन चक्र मतलब उसका फसल चक्र है उसमें कमी मतलब पैदावार अच्छी जो हम चाहते हैं ना,
1: नहीं दे
0: हम ये
1: पाएगा।
0: बात अपना जैसा कार्यक्रम चल रहा है कि किसान की कैसे आमदनी बढ़ाई जाए, कैसे उसकी पैदावार बढ़ाई जाए,
1: जी
0: तो अगर 16 अधिक है और एक की कमी है, तो हम उसमें पैदावार संपूर्ण लेने में कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं।
1: जी
0: चाहे कितना भी यूरिया DAP डाल ले उसमें, उससे कुछ नहीं होगा जब तक हमें उसका पता नहीं चलेगा कि वो कौन सा पोषक तत्व है जिसकी कमी है। और वो तो पोषक तत्व की कमी हम अलग अलग प्रकार से टेस्ट करके भी, मृदा प्रशिक्षण से खड़ी फसल में भी देख सकते हैं, वो अलग अलग है। मान लीजिए जैसे अपने मेनली ये जो पोषक तत्व इस 4 श्रेणी में बांटे गए हैं, 17 पोषक तत्व मैंने आपको बताया। सबसे
1: जी
0: पहले नंबर पे आएंगे जो आधारभूत पोषक तत्व, ये होते हैं मेनली अपने डॉक्टर साहब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये
1: जी
0: हमें वातावरण से मिलते हैं, जो कार्बन हो गया नाम से पता चल रहा है, ऑक्सीजन हो गया, ये हमें हवा से मिलती हैं, और जो
1: जी
0: हाइड्रोजन हो गया डॉक्टर साहब वो हमें पानी से मिलता है। इसी प्रकार इसके बाद आते हैं डॉक्टर साहब मुख्य पोषक तत्व। मुख्य पोषक तत्व डॉक्टर साहब उनको बोलते हैं जिनकी ज़्यादा हमें, जिनकी मात्रा हमें ज़्यादा चाहिए होते हैं, और कह सकते हैं उन्हें हम बोरों में डालते हैं। बोरी
1: जी
0: का मतलब जैसे नाइट्रोजन, यूरिया डालते हैं, DAP डालते हैं, SSP डालते हैं। इसमें आएंगे अपने मेनली नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश। इसके बाद डॉक्टर साहब आते हैं द्वितीय पोषक तत्व, जिनकी ज़रूरत हमें प्रमुख पोषक तत्व है उनसे तो कम होती है, बट जो सूक्ष्म पोषक तत्व है उनसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है।
1: जी
0: इसमें हमारे आएंगे तीन डॉक्टर साहब, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। इसके बाद जो बच गए हुए बचते हैं आपके 8 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, सूक्ष्म पोषक तत्व। टीम है ना, इनकी एक संकीर्ण रेंज होते हैं, सीमा होती है, क्रिटिकल रेंज, मतलब इनकी जरूरत हमें बहुत कम ग्राम में मिलती है। लेकिन
1: जी
0: अगर इनका महत्व क्या, अगर 1 ग्राम भी कम हो जाए तो ये मान के चलो पैदावार अपनी क्विंटलों में कम हो जाती है। और अगर इनका फिर क्रिटिकल रेंज जो मैंने आपको बताया कि संकीर्ण सीमा, इनके अगर ज्यादा होती है सीमा,
1: जी
0: जैसे जिंक की है 0.6 मान लो, अगर इसकी ज्यादा होगी तो वो क्रॉप डैमेज करेगी, मतलब उसको दाना नहीं
1: फसल का
0: बनेगा,
1: नुकसान करेगी,
0: फसल का नुकसान करेगी, वो
1: किसी न किसी
0: टॉक्सिक टॉक्सिक हो जाएगी उससे ऊपर। अगर
1: जी
0: जी उससे नीचे होएगी तो फसल छोटी रह जाएगी, फूल नहीं बनेगा, आदि इस तरीके के अपने लक्षण अपने को मतलब अल्टीमेटली अपनी प्रोडक्टिविटी पैदावार पर असर डालेगा। आज के डॉक्टर साहब आधुनिक युग में इन परिस्थितियों को देखकर सूक्ष्म पोषक तत्वों पर बड़े पैमाने पर ध्यान देने की जरूरत है। वो डॉक्टर साहब मैं क्यों कह रहा हूँ, कहीं ना कहीं हम खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं, हमारी जो सेहत है, हम खाते हैं, उगाते हैं,
1: जी
0: मिट्टी से लेते हैं, वही हम खाते हैं, वही मनुष्य खाता है, वही जानवर खाता है। आजकल आपको पता है पहले कंपेरेटिवली हर हॉस्पिटल में लाइन नहीं टूटती डॉक्टर साहब,
1: जी
0: अमूमन एक घर में अगर मान लो 5-6 सदस्य हैं तो कोई गौरतलब वाली बात नहीं है कि 4 या 5 आदमी उनमें से दवाई लेते हों, चाहे वो
1: बिल्कुल
0: बच्चा हो आपका, चाहे कोई गर्भवती महिला हो, चाहे बुजुर्ग हो। बुजुर्ग का तो फिर भी कह देते हैं कि भाई नहीं, बुजुर्ग हैं दवाई की जरूरत है, वरना आजकल जी डॉक्टर साहब BP, शुगर, ये सब ऐसी बीमारी हो गई हैं जो 30 साल से उम्र उम्र के जो अपनी ये एज ग्रुप है उनमें बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है। इवन बच्चों को कैंसर, हार्ट अटैक जैसी बीमारी आ रही है, तो उसका कारण कहीं ना कहीं पे हम आगे बात करेंगे, जो ये अपने जितने भी कीटनाशक हैं
1: अंधाधुंध जो
0: अंधाधुंध जो कर रहे हैं वो शब्द है, जैसे आप भी हर बार ये जिक्र चलता है अंधाधुंध अंधाधुंध,
1: जी
0: अंधाधुंध अंधाधुंध का मतलब क्या है कि संतुलित क्यों नहीं डाल रहे। आज उस संतुलित के ऊपर डॉक्टर साहब हम बात करेंगे,
1: जी
0: और आपको कुछ ऐसी मेरे 2-4 बीमारियां मेरे ध्यान में है जो मैं आपको भी बताऊंगा, जो सिर्फ जैसे अपना ग्रीन रेवोल्यूशन था डॉक्टर साहब, हरित क्रांति,
1: हरित क्रांति
0: जब हरित क्रांति आई हमारे पास पैदावार नहीं थी, हमारी जनसंख्या भूखी थी, उस टाइम में NPK के ऊपर इतना ध्यान दिया, नाइट्रोजन, पोटास, फॉस्फोरस, केमिकल फर्टिलाइजर्स आए, अपनी हाई यील्डिंग वैरायटीज आई, सीड्स आए, इरिगेशन फैसिलिटीज भी इतना ध्यान दिया, और अंधाधुंध इतने डाले डॉक्टर साहब आज तक कि हमारी मिट्टी की मृदा की स्वास्थ्य बिल्कुल खराब कर दी। जो हमारे मैंने क्या बताया आपको, 17 पोषक तत्व हैं, सिर्फ 3 पे ही फोकस रखा हमारे किसान भाइयों ने सभी आज तक निरंतर, पर अब पहल कर रहे हैं आपके माध्यम से, कहीं ना कहीं जागरूक सरकार के माध्यम से भी ये काफी प्रोग्राम कर रहे हैं जागरूकता, कि किसान को कैसे जागरूक करें कि पौधे का काम सिर्फ NPK से नहीं चलेगा, सिर्फ यूरिया DAP से नहीं चलेगा, उसको सारे पैमाने देखने पड़ेंगे।
1: जी
0: जैसे

0: आपको छोटा सा उदाहरण के तौर में बताता हूँ, आपका एक ये माइक्रो सूक्ष्म पोषक तत्व तो होता है लोहा, लोहा की कमी से डॉक्टर साहब एनीमिया की बीमारी होती है, एनीमिया की बीमारी का नाम जिसमें खून की कमी हो जाती है। ये मोस्टली आजकल आपके गर्भवती महिलाओं में खून की कमी, जब बच्चा उस टाइम होता है डिलीवरी, तो उस टाइम खून की कमी कम पाई जाती है। ये बहुत कॉमन चीज हो चुकी है, अखबारों में, न्यूज पेपर में, हर जगह पढ़ते हैं। जैसे जिंक है, जिंक डॉक्टर साहब शरीर के बढ़ने, बच्चे की जो शरीर की बढ़ने गति है ना, उसको कम कर देता है। डायरिया, उसको लगातार निरंतर 10 लगते हैं, उसकी वजह से उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है बच्चे की, वो ऑटोमेटिक कम हो जाती है। जो बच्चा आजकल पैदा हो रहा है उसका वजन कम होने लग गया, जैसे हम दाने की बात करते हैं खाली होते हैं दाने का, वैसे बच्चे का भी वजन कम होता है। उसमें कहीं ना कहीं घूम फिर के तो डॉक्टर साहब वही बात आ रही है। अब हम पशुओं की बात करेंगे, मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम की एक बीमारी होती है डॉक्टर साहब पशुओं में, ग्रास टेटेनी। इसमें जो अपना चारा होता है उसमें मैग्नीशियम की कमी के कारण जो पशु है उसके मांसपेशियों की बीमारी हो जाती है उनको। अल्टीमेटली खाता तो वही है, एनपीके जितने भी उसमें जितने भी हैं वही बात, फोकस उसी पे रखते हैं मेन पे। पूरा जो संपूर्ण आहार जिसको संतुलित आहार बोलते हैं वो नहीं जा पा रही, वो पशु से कैसे ना दुग्ध या किसी ना किसी प्रकार से हम उसको डॉक्टर साहब हम ले रहे हैं, हम ग्रहण कर रहे हैं, वो लाइफ साइकिल में हमारे, मतलब ये जो जहर बोल लो या डीजी इंसेक्ट कुछ भी बोल लो, ये हमारी लाइफ साइकिल में आ चुका है, क्रॉप में आ गया, उसको हम फल फ्रूट कुछ भी हम खा रहे हैं, पशु खा रहे हैं, पशु से हम दूध ले रहे हैं, तो वो अपने लाइफ साइकिल में डॉक्टर साहब आज के टाइम में आ चुका है और हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, और इसमें हमने अपना जो मन है वो बदलना पड़ेगा, क्योंकि चारे वाली जितनी भी फसल है उसमें हम कोशिश करते भी खंडावा कर दिया और जो उससे पैदा हुआ वो बहुत है, क्योंकि वो तो पशुओं को खिलाना। तो ये हमारा जो सोच है इसमें हमें परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि इसका ना सिर्फ उस फसल की पैदावार पर उस फसल को खाने वाले या उससे पैदावार लेने वाले व्यक्ति है या पशु है उनके पर भी असर आता है।
0: इसी के साथ जैसे मैंने आपको कुछ मुख्य इनकी बीमारियां बताई हैं, जैसे नाइट्रोजन से कुपोषण का शिकार होते हैं बच्चे, कैल्शियम की वजह से जन्म से बच्चों में कैल्शियम कम होता है तो उनकी हड्डियों का वो विकास नहीं हो पाता डॉक्टर साहब जो होना चाहिए। ये कुछ कमियां हैं जो हमें पता भी, ऐसी बात नहीं है, फिर भी हम उसको एक तरीके से उस पर पर्दा लगा रखा है कि नहीं बस अब तो उसी पत्ती से चल रहे हैं भाई, फलाना साइड वाला ये डाल रहे हैं अंधाधुंध, मेरे को तो इस साथ दे बोरी मत, किलो दो किलो फालतू ही डालना है, 10 किलो, ऐसे नहीं है।
1: पड़ोसी से पूछ के भाई तू कितने कट्टे लेके आया, मैं 2 लेके आया, मैं तो मैं 3 तो कम से कम डाल लूं।
0: इसीलिए हर जगह हर उसमें मृदा प्रशिक्षण जरूरी है, अपने सरकार भारत सरकार का भी, हरियाणा सरकार की भी अलग अलग स्कीम है, हम आगे बताऊं एक दो जो निरंतर आज के टाइम पे भी चल रही है। सिर्फ एक ही उनका काम है कि भाई मृदा की सेहत को कैसे संभाला जाए, मृदा की सेहत संभलेगी तो फसल की सेहत संभलेगी, फसल संभलेगी तो हम संभलेंगे और पशु संभलेंगे। जो अपना ये साइकिल है ये निरंतर इसमें सुधार होगा, अदरवाइज वो आपको पता ही चला डॉक्टर साहब, चाहे पशु लगा लो चाहे इंसान लगा लो, डॉक्टरों के मतलब भरा पड़ा है।
1: बिल्कुल। और डॉक्टर साहब इसमें जो आपने जो तत्व बताए हैं इनके अलावा भी ऑर्गेनिक मैटर एक नाम है वो सुनने में आता है।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, ऑर्गेनिक मैटर मतलब जब ये जान है जी मिट्टी की, इसकी मात्रा 0.4 से लेके 0.75 तक होती है, बट ये हमारे यहाँ मिट्टियों में कम है। इसको हम देसी तरीके से बोलेंगे तो ये मिट्टी की जान है। इसके लिए हम निरंतर किसान भाइयों को बताते हैं गोबर खाद डालो, वर्मिंग कंपोस्टिंग करो, जैविक खाद, बायोपेस्टिसाइड, बायोसुमेंट जितने भी हो सके, क्योंकि डॉक्टर साहब जितने हम देखो जितना कम हो सके रासायनिक उर्वरक होगा उससे हमारे पैसों की बचत होगी। जैसे गोबर खाद डालते हैं उनसे भी हमें लगभग सभी चीजें मिलती हैं, बट उनकी पर्याप्त मात्रा समय लगता है, थोड़ी कम मिलती हैं, बट जितने हम दूसरे तरीके से डाल रहे हैं डॉक्टर साहब दुष्परिणाम है, आपको हम जिक्र ही कर रहे हैं चीजों की, क्या क्या अपने दुष्परिणाम अपने में पशुओं में वो अपने लाइफ साइकिल में आ गए हैं। इनसे बचने के लिए जैसे हम नेचुरल फार्मिंग आजकल बहुत ज्यादा कंसेप्ट है कि कैसे ना कैसे हमें इन बीमारियों से बचा जाए, हमारी मिट्टी मतलब आगे की अगर पीढ़ियों की हम बात सोच के चलेंगे डॉक्टर साहब तो बहुत ज्यादा मुश्किल आने वाली है। पानी की कमी हो रही है, नीचे मिट्टी के नीचे पानी हो, पानी खराब होने लग रहा है, मिट्टी भी खराब होने लग रही है, इतने साल्ट्स उसमें जमा होने लग रहे हैं, सोडियम कैल्शियम बुरा हाल हो रहा है डॉक्टर साहब। बिल्कुल
1: जी।
0: तो उन्हीं को देखते हुए आज हम एक एक अभी जो अपने 17 पोषक तत्व हैं इनकी एक एक दो दो योगदान बताएंगे कि इनका क्या मुख्य योगदान और उनकी कैसे कमी है। मान लो फसल खड़ी है, पहला बात तो है कि हम उसको प्रशिक्षण से पता कर सकते हैं
1: जी।
0: किसी भी आपके जिले में अपने कृषि एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट होता है वहाँ पे अपनी लैब है, प्रयोगशाला है मृदा की, वहाँ पे अपनी मिट्टी का सैंपल ले और उसको जांच कराए। एक तरीका तो ये हमें उससे पता चल जाए कि हमारे पास कितना धरती में कितना हमारे पास नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, जैविक कार्बन उपलब्ध है, कितना इसी है, उससे क्या पता चलेगा डॉक्टर साहब हमारे पास कितना है और जोन से हम फसल लगा रहे हैं उसके लिए कितना हमें चाहिए है। जो वो जो फर्क है, वो जो डिफरेंस है, वो हमें इससे पता चलता है कि हमें कितना डालना है, ना कि अंधाधुंध ना भाई 2 बोरी यूरिया की डालनी है, 1 DAP की डालनी है, 2-3 SSP की डालनी है, ऐसे नहीं। सबसे पहला तो है डॉक्टर साहब मृदा प्रशिक्षण, अगर वो कराएं तो उससे 2-3 साल में हमें किसान भाइयों को कराना ही कराना चाहिए। इससे अलग दूसरी चीज डॉक्टर साहब, अगर मान लो अपनी फसल खड़ी है तो उसमें भी हमारी अलग अलग पहचान है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि हर जो पोषक तत्व उसके अलग अपने लक्षण है जिससे हमें पता चले कि भाई इस चीज की बीमारी है। जैसे आपको उदाहरण के लिए भी मैं बताता हूँ सभी के सभी का, जैसे नाइट्रोजन की बात करेंगे, नाइट्रोजन को हम डॉक्टर साहब बहुत

0: ये लगा लो सार्वभौमिक कमी है इसकी, पूरे राष्ट्र में बोल लो, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे बोल लो, मतलब हर जगह नाइट्रोजन कम मात्रा में। और इसे डॉक्टर साहब हम एक तरीके से पौधे के विकास का इंजन भी बोलते हैं अपनी देशी भाषा में, कि जो जो हरा कलर है क्रॉप को, ये इसी की वजह से होता है। और जितने भी वनस्पतिक वृद्धि करता है वो सिर्फ डायरेक्टली नाइट्रोजन की वजह से ही करता है, यानी वनस्पतिक
1: बढ़वार से
0: इसका
1: होते हैं
0: बढ़वार का मतलब हो गया तना और पत्ती
1: जी
0: बढ़ने का काम नाइट्रोजन का है।
1: जी
0: और डॉक्टर साहब इसकी कमी है जो हम कह रहे हैं कि खड़ी फसल, उसमें कैसा पता चले हमें कि नाइट्रोजन की कमी है? तो पौधा मतलब एक तो बात अपने अमूमन किसान को जैसे देखते हैं हम डेली किसी भी चीज़ को, बच्चा भी देखता है अपने को बढ़ता हुआ दिखता है
1: जी
0: कंपैरिजन करते हैं मनुष्य से, तो ऐसे हम जब किसान डेली अपनी फसल को दिखता है तो उसको पता चलता है कि फसल निरंतर उस स्पीड से नहीं बढ़ रही है, कहना मतलब फसल बो नहीं रह रही है।
1: जी
0: जो पुरानी पत्तियां हैं वे डॉक्टर साहब वे पीली पड़ रही हैं, वे पुरानी पत्तियां पीली क्यों पड़ रही हैं? बिकॉज जो पौधा है वो अपनी जान बचाने के लिए जो पूरी लीफ से जो नाइट्रोजन है वो ऊपर की तरफ नई पत्तियों को दे देता है, ऊपर की तरफ जाएगा तो नीचे वाली में डॉक्टर साहब रहे, नहीं तो
1: नहीं
0: ना
1: रहे
0: रहे तो वो पीली हो जाती है। तो इसका मुख्यतः ये कारण है, पीली पत्तियों से हम नाइट्रोजन की पहचान कर सकते हैं।
1: जी
0: इसके बाद डॉक्टर साहब आता है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस को हम एक तरीके से पौधे की ऊर्जा भी कहते हैं। यह जो जड़ों का विकास करता है वो सारा काम डॉक्टर साहब फॉस्फोरस ही करता है। मजबूत जड़ अपनी जितनी मिट्टी में जितने अपने पोषक तत्व हैं जड़ों से तो आता है,
1: जी
0: पौधा जो अपना खाना लेता है वो जड़ों से तो लेता है, जितने भी अपने पोषक तत्व हैं वो सारे जड़ों से ही आते हैं, इसलिए उसका फॉस्फोरस का जड़ों के प्रति मतलब डायरेक्ट रोल है फॉस्फोरस का उसके प्लांट के लाइफ साइकिल में।
1: जी
0: और डॉक्टर साहब इसकी कमी का मतलब जैसे अपनी जड़ें विकसित नहीं होती मान लो, तो प्लांट का रंग है जो कलर है प्लांट वो नीला या बैंगनी रंग का हो जाता है। नॉर्मली डॉक्टर साहब जो बैंगनी रंग है वो जो टमाटर है उसमें अपने को देखने को मिलता है,
1: जी
0: उससे पता चलता है कि मैं इसमें फॉस्फोरस की कमी
1: कमी
0: है।
1: है
0: और डॉक्टर साहब इसके बाद हम बात करेंगे फॉस्फोरस के बाद पोटेशियम की। पोटेशियम को मतलब पौधे का पौध रक्षक या पुलिसमैन भी कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता है? क्योंकि पौधे में रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है, मतलब रोग प्रतिरोध के लिए जैसे एंटीबॉडीज अपने काम कर दिए,
1: जी
0: पोटेशियम प्लांट में पौधे में वो काम करता है। ये तने को मजबूत बनाए रखता है ताकि फसल गिरे नहीं, कितनी आंधी बारिश आ जाए फसल जैसे कैसे खड़ी रहे। तो
1: जी
0: आजकल का मौसम आप देख रहे हो,
1: जी जी
0: हर मतलब तीसरे दल नीलों की बातें चलती हैं, कितना मौसम में परिवर्तन आ रहा है बुरा हाल, और
1: जी
0: इतनी तेज तूफान आते हैं, इंसान अपने आप को नहीं खड़ा मतलब रोक सकता तो फसल कैसे रोकेगी?
1: जी
0: तो आज इस बात मतलब ये आज का उदाहरण लेटेस्ट दे दिया आपको कि ये जो पोटेशियम का काम है ये सारे जो फसल को तने को जो मजबूत और खड़ा रखती है, और इसका डायरेक्ट रोल डॉक्टर साहब एक फसलों में जो चमक है स्वाद हर वजन है वो पोटेशियम के ही मद्देनजर
1: कारण
0: रखते हुए
1: होती
0: होता है डॉक्टर साहब। इसकी कमी की पहचान क्या होती है डॉक्टर साहब? पत्तियों के किनारे जलने लग जाते हैं, जैसे वी शेप है ऊपर से नीचे से साइडों में सूखने लग जाते हैं, जलने से लग जाते हैं,
1: है जी
0: पुरानी पत्तियों में पहले पाए जाते हैं ना कि नई पत्तियों में। ये हो गया डॉक्टर साहब तीन वे NPK जिनका अपने को मतलब प्रमुख पोषक तत्व है जो हमें ज्यादा मात्रा में डालने पड़ते
1: चाहिए
0: हैं। इसके बाद आगे डॉक्टर साहब द्वितीय पोषक तत्व जिसमें कैल्शियम मैग्नीशियम और सल्फर की बात करेंगे। कैल्शियम डॉक्टर साहब जैसे आपको पता है अपन मनुष्य है, मनुष्य की जो जो अपने हड्डियों में काम करता है कैल्शियम, ऐसे ही फसल की कोशिकाओं यानी कि सेल वॉल होती है जो कोशिकाओं होती है,
1: जी
0: कोशिकाओं की दीवार को मजबूत करता है
1: जी
0: कैल्शियम का, और उसकी कमी के कारण डॉक्टर साहब जो आपकी पत्तियां हैं वो मुड़ जाती हैं और फलों की जो आकार है वो बिगड़ जाता है, मतलब फूल है जो आपके इसकी कमी के कारण झड़ने लग जाते हैं।
1: जी
0: जैसे टमाटर के नीचे से आप कभी देखोगे अगर वो काला काला नीचे से सड़ जाता है तो कैल्शियम का मुख्य उदाहरण है ये।
1: जी
0: टमाटर का फ्रूट लगा हुआ है फल आया हुआ है और नीचे से वो काला हो जाता है,
1: जी
0: ये उसका मुख्य उदाहरण है कैल्शियम की बीमारी का। इसके बाद डॉक्टर साहब हम बात करेंगे अगले की मैग्नीशियम की। जो
1: जी
0: मैग्नीशियम है उसका मेन काम पत्तों का हरा रंग जो होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है डॉक्टर साहब, और क्लोरोफिल के केंद्र में अगर मैग्नीशियम अगर अब्सेंट है मान लो तो आपका पत्ता भोजन नहीं बना पाएगा, भोजन नहीं बना पाएगा तो फिर पौधा अपना जीवित कैसे रह पाएगा?
1: जी
0: तो
1: बिल्कुल
0: सीधा सीधा मतलब आपको पता चल रहा है कि मैग्नीशियम का क्या है। और इसकी कमियां डॉक्टर साहब क्या हैं? कमी जो पुरानी पत्तियां हैं उनकी जो नसें हैं वे हरी होती हैं बट जो उसका पत्ता है वो पीला पड़ जाता है। इसके बाद डॉक्टर साहब अगला आएगा सल्फर। सल्फर मतलब जिसको तेल का राजा बोलते हैं, तिलनी फसलों के लिए वरदान है डॉक्टर साहब। जैसे अपनी सरसों होगी, सोयाबीन हो गया, मूंगफली हो गया, इसमें अपनी तेल की मात्रा बहुत ज्यादा होती है,
1: बिल्कुल
0: और आमतौर
1: सरसों की बोतल अगर हम खोलते हैं सरसों के तेल की तो उसमें जो गंध आती है वो सल्फर की है।
0: बिल्कुल ये गंध जैसे अपने किसान भाइयों जैसे डॉक्टर साहब अपने प्याज और लहसुन हर घर में यूज होते हैं, जैसे सरसों का तेल होता है
1: जी
0: उनमें भी जो गंध होती है वो सल्फर की वजह से होती है। वो सल्फर क्या करता है उसमें जितने भी कीट उसके नजदीक आते हैं उनको आने नहीं देता है, गंध इसलिए होती है जो बहुत। और सल्फर भी मतलब इसका रोल भी बहुत सभी लगभग हर एक एंजाइम को एक्टिवेट करता है डॉक्टर साहब, ये हर
1: जी
0: एक को मतलब सोर्सेज अपने पोषक तत्वों को अवेलेबल कराने में बहुत हेल्पफुल है सल्फर। और डॉक्टर साहब इसकी कमी है ये सेम जैसे नाइट्रोजन की तरह है, बट नाइट्रोजन में तो ये पुरानी पत्तियों पे आती है जो मैंने बताया आपको नीचे आती है, पर
1: जी
0: सल्फर में वे ऊपर वाली पत्तियों पे आती है जो ऊपर वाला गुच्छा होता है, तो ये कीटों को भगाता है नेचुरली। इसके बाद डॉक्टर साहब जो हम बात करेंगे अपने सूक्ष्म पोषक तत्वों की,
1: जी
0: सबसे ज्यादा कमी इनकी देखी जाती है जिनकी तरफ हम ध्यान भी नहीं दे रहे बहुत अलग। मतलब जनसंख्या का बोझ बढ़ रहा है हमारी धरती वहां पे,

0: जनसंख्या तो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, बोझ बढ़ रहा है, पर जो जमीन की जो क्वालिटी है वो निरंतर गिर रही है
1: जी।
0: तो डॉक्टर साहब इन चीजों को स्टेबलाइज करने के लिए दोनों का संतुलित, हर चीज संतुलित रहेगी जब भी ठीक रहेगी डॉक्टर साहब।
1: बिल्कुल
0: संतुलन से ऊपर जाएगा जब भी नहीं, नीचे जाएगा तब भी, कोई भी चीज हो डॉक्टर साहब जब तक वो संतुलित मात्रा पे संतुलित लेवल पे नहीं आएगी इतने काम नहीं चलेगा।
1: जी
0: तो ये हमें संतुलन करना बहुत जरूरी है। जैसे हम एनपीके का ध्यान रखते हैं ऐसे ही हमें अपने जितने भी माइक्रो सूक्ष्म पोषक तत्व माइक्रो न्यूट्रिएंट इनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है।
1: जी
0: सूक्ष्म पोषक तत्व में डॉक्टर साहब सबसे पहले हम बात करेंगे जिंक की। जिंक भी ये मान के चलो जैसे आपने नाइट्रोजन का मैंने आपने बताया था, पर जिंक 35-50% कमी है अपनी मिट्टियों में डॉक्टर साहब। जिंक कहीं पे 47% है, कहीं पे 40% है, अमूमन मैंने रेंज बता दी आपको कि 35-50% अपनी भारतीय मिट्टी में सबसे ज्यादा कमी जिंक की पाई जाती है। और इसका डॉक्टर साहब महत्व क्या है, जिंक का काम क्या है, जिंक मेनली प्लांट्स के सारे हॉर्मोन्स बनाता है जिससे पौधे की लंबाई बढ़ती है। मेन इसका जो ट्रांसलोकेशन और ट्रांसमर प्री फॉस्फोरस का परिवहन जो संचालित करता है वो जिंक ही करता है।
1: जी,
0: फॉस्फोरस एक मुख्य अपना पोषक तत्व है जो उसका
1: जड़ों का विकास करेगा और उससे फिर जो भोजन का उसको अलग अलग हिस्से तक ले जाने का
0: बिल्कुल
1: काम
0: अलग
1: करेगा।
0: अलग हिस्से तक परिवहन का एज ए
1: जी
0: ट्रांसपोर्ट मान लो, ट्रांसपोर्ट ऑफ फॉस्फोरस, ये काम सारा जिंक की मदद
1: जिंक
0: के
1: के
0: बिना नहीं हो सकता। कमी कैसे पता चलती है अपने को खेत में, इसकी पत्तियां डॉक्टर साहब छोटी होती हैं, 6 में दिखाई देती हैं।
1: जी
0: धान में एक बहुत प्रसिद्ध बीमारी है खैरा डिजीज, सुनी होता आपने, वो
1: जी
0: मेनली जिंक की वजह से ही आती है।
1: जी
0: मक्के में जो हमारे ऊपर की जो पत्तियां होती हुई आती हैं वे सफ़ेद रंग की आती हैं,
1: जी
0: वो भी जिंक का ही एक कारण है। धान में तो खैरा डिजीज और मक्के में आपकी जो ऊपर वाली पत्ती आती है वह सफ़ेद रंग की आती है। इसके बाद डॉक्टर साहब दूसरे नंबर पे आ गया आपका लोहा।
1: लोहा
0: लोहा जो जो अपना पौधे में क्लोरोफिल होता है उसको बनाने में डायरेक्टली रोल करता है, बनाने में उसकी मदद करता है। इसकी कमी कहाँ पाई जाती है, मान ली मेनली डॉक्टर साहब इसकी क्षारीय मिट्टी में,
1: जी
0: मतलब जो नई पत्तियां हैं वे अपने को पूर्णतः तरीके से सफ़ेद और पीली दिखाई देती हैं और जो उसकी नसें हैं वो हरी दिखाई देती हैं। नॉर्मली जो अपनी नर्सरी होती है धान की, गन्ने की और मूंगफली की में ये कमी वहाँ पे लोहे की पाई जाती है मेनली।
1: जी
0: इसके बाद तीसरी बात करेंगे जी आप बोरोन की। बोरोन भी डॉक्टर साहब जिंक के बाद ऐसा है दूसरा सूक्ष्म पोषक तत्व तो जिसकी कमी आजकल बहुत ज़्यादा पाने लग गई है, करीबन करीबन 40-50% इसकी कमी मान के चलो, अलग मिट्टियों के अलग अलग अपने स्थानों के हिसाब से। और बोरोन की बात करेंगे तो हम जो बोरोन हॉर्टिकल्चर मतलब जितनी भी अपनी बागवानी के लिए वरदान
1: जरूरी
0: है, बहुत
1: जी
0: जरूरी है, फल फूल जितनी भी सारी प्रक्रियाएं हैं ये बोरोन के बिना संभव ही नहीं है।
1: जी जी
0: जो फूल से लेकर फल तक की जो प्रक्रिया होती है उसमें बोरोन का बहुत महत्व रोल रहता है डॉक्टर साहब। फलों को फटने से जो बचाता है वो बोरोन ही है। जब कभी भी आपको अनार हो गया, कुछ
1: जी
0: जो ऐसा फ्रूट होगा जो फटा दिखता है उसमें दरार दिखती है
1: जी
0: तो वो बोरोन ही है, वो बोरोन की कमी है।
1: उसकी कमी के
0: हाँ,
1: लक्षण
0: बोरोन के छिड़काव से हम उसकी कमी को दूर कर सकते हैं। फूल ज्यादा जड़ रहे हैं और दाना नहीं बन रहा है उसको, वो भी बोरोन की ही कमी है, क्योंकि प्राथमिकता तो पहले तो फूल ही आएगा उसके बाद ही
1: जी
0: फल
1: जी
0: आएगा। तो
1: जी
0: इसका रोल देखो बागवानी, जितने फ्रूट्स हम खाते हैं एडिबल पार्ट सारे के सारे,
1: जी जी
0: अगर फूल ही नहीं हो तो फल कहाँ से होगा। इसके बाद डॉक्टर साहब हम बात करेंगे अगले पोषक तत्वों की, मैग्नीशियम की। जो
1: जी
0: मैग्नीशियम की कमी है डॉक्टर साहब, मैंने आपको बताया भी था जब बीमारी का उदाहरण दिया था जो अपने जानवरों में आती है ग्रास स्टेटिनी, सिर्फ और सिर्फ इसको हम हाइपोमैग्नीशिया भी बोलते हैं, जिसमें आपकी जो गाय होगी, भैंस होगी, भेड़ होगी, उनकी मांसपेशियों में विकार आ जाता है डॉक्टर साहब।
1: जी
0: मैग्नीशियम की कमी से डॉक्टर साहब जो पत्तियों में भूरे और काले रंग के निशान दिखाई देते हैं स्पॉट्स, मुख्य काम डॉक्टर साहब इसका जो अपनी जितनी भी शुगर है उनका परिवहन का है। एंजाइम एक्टिवेटर भी बोलते हैं हम मैग्नीशियम को। और साथ ही साथ में जो शुगर केन में एक प्रसिद्ध बीमारी है फाला रोग,
1: जी
0: वो भी मैग्नीशियम के कारण ही आता है। इसके बाद हम डॉक्टर साहब बात करेंगे तांबे की, पांचवा पोषक तत्व आपका तांबा। जो पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है डॉक्टर साहब उसको डायरेक्टली तांबा ही बढ़ाता है। जैसे अपना पोटेशियम का काम था, पौधे की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको डायरेक्टली हम तांबे से भी कंपेयर कर सकते हैं। फफूंद के लिए ये बहुत ज्यादा प्रतिरोधक है। मेनली जो तांबे की कमी है वो नींबू में पाई जाती है, और नींबू में एक बीमारी आती है डॉक्टर साहब डाईबैक, जो पौधे को ऊपर से लेके नीचे तक सुखा देती है, खत्म कर देती है। जब सुखाते हैं तो उसमें से गम निकलता है, मतलब अनाज वाली फसलों में डॉक्टर साहब ये मान के चलो इसकी कमी से दाने खाली रह जाते हैं। धान होगी, चावल
1: जी
0: होगी, अपने गेहूं होगी, डॉक्टर साहब इस कमी के कारण अपने दाने खाली खाली रह जाते हैं।
1: जी
0: और ये थे डॉक्टर साहब पांच मेन, जिंक, लोहा, बोरोन, मैग्नीशियम और तांबा।
1: जी
0: और इससे अलग बच के तीन जो अपने सूक्ष्म पोषक तत्व हैं वे हो गए मोलिब्डेनम, क्लोरीन और निकल। इनकी ज्यादातर मतलब जैसे क्लोरीन है वो तो सिंपल सी बात अपने पानी से मिलता है,
1: पानी से
0: निरंतर
1: मिलता
0: पानी देते हैं, वो उसकी
1: जी
0: कभी
1: जी
0: कमी मतलब बहुत कम होती है, रेयर नहीं हो पाती।
1: जी
0: पौधे में सीधा पानी का संतुलन बनाता है क्लोरीन।
1: जी
0: और डॉक्टर साहब ये फंगस से भी बचाता है, जैसे कॉपर में भी फंगस फफूंद के लिए के उसमें थी इंपॉर्टेंस, ऐसे
1: जी
0: ही क्लोरीन का भी फंगस के प्रति थोड़ा प्रतिरोधक रहता है। मतलब क्लोरीन की कमी वैसे हम बात करेंगे तो कमी होती है। इसी तरीके से जो अपनी मोलिब्डेनम

0: हम और निकल की बात करेंगे तो वो मतलब ये लगा लो कि नेग्लिजिबल है, वो सोयल में प्रेजेंट है, उतना पर्याप्त है, इसकी ऐसी कमी वाली बात नहीं होती।
1: जी
0: बट मोलिब्डेनम दलहनी फसलों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जितनी भी अपनी दलहनी की फसल हैं इनके लिए
1: जी
0: मोलिब्डेनम का यूज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे पौधे की जड़ों में डॉक्टर साहब जो गांठ होती हैं
1: जी
0: जो हवा से नाइट्रोजन खींचती हैं, वो बिना मोलिब्डेनम के ये नहीं कर सकती।
1: अच्छा,
0: जितने
1: जो
0: पौधे
1: राइजोबियम
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: का
0: बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर, नाइट्रोजन फिक्सिंग फैक्टर
1: जी
0: राइजोबियम में ये जो जड़ दाड़ों में जो जड़ें होती हैं ना, वे
1: जी
0: मतलब मोलिब्डेनम के बिना वो काम नहीं कर सकते। इसी प्रकार डॉक्टर साहब अगर मतलब कि जो फूल गोभी होती है उसमें मोलिब्डेनम की वजह, मोलिब्डेनम की कमी की वजह से विपटेल बीमारी आती है एक,
1: जी
0: जो आमतौर पर बहुत ज़्यादा इसमें आपकी फूल गोभी में देखने को मिलती है, जिससे आपकी पत्तियाँ पतली हो जाती हैं, नुकीली हो जाती हैं और टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, फिर सूख जाती हैं।
1: जी
0: ये बहुत इसका मतलब बीमारी का
1: लक्षण
0: इसका
1: है
0: लक्षण है।
1: जी।
0: इसके बाद डॉक्टर साहब एक अपना लास्ट आ गया निकल। निकल ये सबसे नया इंट्रोड्यूस्ड वो है जी, एलिमेंट है, सबसे बाद में हुआ है, पहले
1: जी
0: 16 होते थे, जब 17वां जुड़ा तो निकल ही जुड़ा था।
1: जी
0: निकल का डॉक्टर साहब डायरेक्ट रोल है, ये यूरिया को पचाने वाला एंजाइम का हिस्सा है।
1: अच्छा
0: और ये अपने मतलब है, यूरिया तो आपको पता ही है, फिर नाइट्रोजन होगा, नाइट्रोजन तो पौधे का मतलब सबसे मेन होगा, सबसे
1: जी
0: ऊपर मैक्रो न्यूट्रिएंट होगा डॉक्टर साहब। नाइट
1: जी जी
0: तो नाइट्रोजन का अगर ये यूरिया उसको पचाने का काम करता तो ये भी मतलब उतना ही
1: जरूरी
0: इंपॉर्टेंट होगा डॉक्टर साहब,
1: जरूरी
0: जरूरी होगा।
1: बिल्कुल
0: तो इसलिए इसका आविष्कार हुआ। और इसको मतलब इसका जो लक्षण क्या आता है डॉक्टर साहब, जो अपनी पत्तियाँ हैं वो किनारे से जलने लगती हैं
1: जी
0: निकल के कारण।
1: जी
0: तो ये 17 मैंने आपको एक एक करके डॉक्टर साहब 17 के 17 बता दिए हैं, जो अपने CHO जो अपने वातावरण से मिलते हैं,
1: जी
0: NPK जिन्हें हमें ज़्यादा डालने पड़ते हैं, जो कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर हैं ये द्वितीय में आते हैं, जिनकी हमें कंपैरिजन में माइक्रोन्यूट्रिएंट से ज़्यादा और आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट से कम,
1: जी
0: सूक्ष्म पोषक तत्व से ज़्यादा और
1: जी
0: प्रमुख पोषक तत्व से कम की इनकी वो क्या बोलते हैं डालने पड़ते हैं हमें मिट्टी में।
1: जी
0: और आपको वो इसका बता ही दिया मैंने।
1: जी अब डॉक्टर साहब जानना चाहेंगे कि आप के सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं जो कि मिट्टी के उपजाऊपन को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है।
0: डॉक्टर साहब भारत सरकार और ICAR दोनों के मिलन की वजह से तरफ से 1 जून से 30 जून तक
1: जी
0: आपके डॉक्टर साहब राष्ट्रव्यापी अभियान है, खेत बचाओ अभियान। ऐसे ही हमारी हरियाणा सरकार का भी एक अभियान चल रहा है, हर खेत स्वस्थ खेत।
1: जी
0: इसमें सीधा सीधा हम अगर बात करेंगे तो मृदा की सेहत को हमें सुधारना है। वो कैसे सुधारना है, आपको पता है कि मृदा का प्रशिक्षण करना पड़ेगा। ये जो डॉक्टर साहब ज़्यादा भी होते हैं, जो सूक्ष्म पोषक तत्वों की बात करूँगा, ये ज़्यादा भी होंगे तो भी दिक्कत है
1: तो भी
0: इनकी, आज
1: नुकसान
0: के टाइम
1: करेगा
0: में क्या ज़रूरत है। मतलब बहुत इनको संतुलित क्रिटिकल रेंज, जो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि
1: जी
0: इनकी रेंज बहुत ज़रूरी है डॉक्टर साहब। अगर ये रेंज से ऊपर जाएंगे तो ये
1: जी
0: टॉक्सिक हो जाएंगे,
1: जी
0: नीचे जाएंगे डॉक्टर साहब तो ये डेफिशिएंसी मतलब इनकी कमी आ जाएगी।
1: जी
0: क्रिटिकल रेंज है
1: यानी कि
0: मतलब
1: इनकी कमी और इनकी अधिकता
0: बिल्कुल
1: दोनों खतरनाक
0: दोनों
1: है, इनको
0: खतरनाक,
1: संतुलित रखना
0: बिल्कुल
1: बहुत बहुत
0: बिल्कुल
1: जरूरी है।
0: बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब। मैं तो अंत में आपको ये
1: जी
0: कहूँ, जैसे अगर हमें स्वस्थ रहना है
1: जी
0: तो संतुलित भोजन खाएं,
1: जी
0: अगर मिट्टी को बचाना है तो संतुलित उर्वरक अपनाएं।
1: जी
0: इसी तरीके से मतलब अर्थात अगर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा गोबर खाद डालें, रासायनिक उर्वरकों का कम उपयोग करें, हम प्रयोग करें
1: जी
0: जितना कम से कम कर सके, जितना वर्मी कंपोस्टिंग करें, जैविक खेती करें, नेचुरल फार्मिंग करें, जितने ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर साहब
1: जी
0: हम मतलब उर्वरकों का कम प्रयोग करेंगे, उसी हिसाब से जैसे जो पोषक तत्व हैं भाई हमारे गोबर खाद में सारे होते हैं, लगभग सारे होते हैं,
1: जी
0: कम मात्रा में होते हैं,
1: जी
0: पर डॉक्टर साहब उससे कोई हानि तो नहीं है ना।
1: जी जी यानी कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि मिट्टी की जांच करवाने के बाद ही हमें पोषक तत्वों का, मिट्टी में किसी तत्व की कमी है उसकी जानकारी, और हमने किसी पोषक तत्व का छिड़काव करना है, तो ये सारे मिट्टी की जांच के आधार पर ही हमें पता चल पाएगा। तो सबसे प्रमुख कार्य हमारा ये है कि मिट्टी की जांच करवाएं और उसमें जो सिफारिश की गई है उसके अनुसार ही हमने खादों का
0: चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में प्रयोगशाला है, उसकी जो ब्रांचेज हैं उनमें प्रयोगशाला है।
1: जी
0: आपके हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात करेंगे तो कृषि जो आधिकारिक ऑफिसर वहाँ पे आपके प्रयोगशाला है,
1: जी
0: तो कहीं भी लेके जाओ मिट्टी का सैम जांच बहुत ज़रूरी है। प्रशिक्षण जितना करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि आपकी मिट्टी में आज के टाइम में जान कितनी है।
1: जी
0: हमें जान वो बनानी है पर रसायनकों से नहीं,
1: जी
0: जितना कम कर सके और जैविक तरीके से अपने हमें अपनी मिट्टी की जान बनानी है। और वो फिर मिट्टी की जान स्वस्थ होगी तो डॉक्टर साहब आपकी
1: जी
0: और हमारी और पशुओं की, जितने भी अपने संसाधन है, जनजीवन है, सभी की जान स्वस्थ होगी।
1: जी तो आपने बहुत विस्तार से जानकारी दी है और हम किसान भाइयों को एक-एक तत्व की उपयोगिता है उसका भी पता चल गया होगा, और ज़रूर इस तरफ भाई ध्यान देंगे कि मिट्टी की जांच करवाने के बाद ही हम आगे कोई कदम उठा

0: तो इस बातचीत में भाग लेने के लिए डॉक्टर अंकित गिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद डॉक्टर साहब, जय हिंद।
2: तो ये तो सुनी भैया ने बातचीत, बहुत अच्छी बढ़िया जानकारी दी डॉक्टर अंकित गिल जी ने, और इसी बातचीत के साथ जो कृषि जगत कार्यक्रम है उसका समय समाप्त। ई कार्यक्रम सुनेंगे ग्रामीण संसार, और भाइयों ग्रामीण संसार में आज फोन इन कार्यक्रम रहेगा, जिसमें जो हमारे श्रोता भाई हैं वो अपना फ़ोन करें, कार्यक्रम संबंधी जो भी सुझाव है उनका सुझाव दें, और कोई उनकी कोई किसी प्रकार की पसंद है, कोई कार्यक्रम में किसी प्रकार का फेरबदल है तो उसके बारे में हमने ज़रूर बताएं, और कार्यक्रम कैसे उनको लगे हैं इसके बारे में ज़रूर बताएं। तो भाइयों के फ़ोन लेना शुरू करते हैं। हेलो हेलो
3: जी, नमस्कार जी।
2: जी नमस्कार, नाम बताओ जी।
3: जी मैं सतपाल शर्मा, गाँव जिला करनाल।
2: जी सतपाल शर्मा जी,
3: जी एक मेरे चाचा जी हैं उनकी भी राम राम, उनका नाम दयाराम शर्मा है।
2: जी दयाराम जी को भी और सतपाल जी को भी आकाशवाणी परिवार की तरफ से बहुत बहुत राम राम और नमस्कार। सुनाइए हमारे प्रोग्राम कैसे लगते हैं आपको?
3: प्रोग्राम तो जी आपके सारे बहुत बढ़िया है, हम तो 76 से सुन रहे हैं।
2: अच्छा,
3: अभी तक तो कोई प्रोग्राम के बारे में कोई ऐसी बात नहीं लगी।
2: हाँ,
3: तो प्रोग्राम बढ़िया ना लगे,
2: यानी कि जब से आकाशवाणी शुरू हुआ 76 से जब से आप यहाँ शुरू होता है।
3: हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल जी,
2: जी। और कोई
3: हाँ जी,
2: और कोई किसी प्रकार का आपका कार्यक्रम संबंधी कोई सुझाव हो, भाई हम इसमें क्या, इसको बढ़िया बनाने के लिए क्या कुछ और कर सकते हैं भाई, ताकि हमारे जो कार्यक्रम हैं वो और भी अच्छे लगें।
3: प्रोग्राम के बारे में तो जी आपका स्टाफ है बहुत बढ़िया, आपने आप ही सारे प्रोग्राम सेट कर दिया है, बहुत बढ़िया, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा
2: जी।
3: हाँ जी,
2: चलो फोन किया इसके लिए सतपाल शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
3: हाँ जी नमस्कार जी।
2: हेलो
4: हेलो,
2: हाँ जी राम राम।
4: राम राम भाई, पुनिया साहब राम राम।
2: हाँ राम राम गिल साहब,
4: तो आप ठीक हो?
2: बिल्कुल ठीक ठाक। कार्यक्रम कैसे लग रहे हमारे?
4: अभी अभी बिल्कुल अभी कुछ देर पहले बातचीत सुनी थी।
2: हाँ,
4: मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी की।
2: हाँ,
4: डॉक्टर अंकित गिल से।
2: हाँ,
4: बहुत अच्छी बहुत बढ़िया जानकारी।
2: नहीं देखो एक बात बताओ, कितनी हाँ, अच्छी बढ़िया जानकारी दी थी भाई, जब मिट्टी में मिट्टी स्वस्थ होगी और उससे जो अन्न पैदा होगा उसको यदि हम मान लो लेंगे तो हमारे अंदर जो बीमारियां हैं वो भी कम होंगी, और बहुत सारी डॉक्टर साहब ने बहुत आज खुल कर ये इतने पोषक तत्वों के बारे में बताया है कि भाई बहुत अच्छा लगा,
4: बहुत
2: बढ़िया लगा।
4: किसान भाइयों के लिए दिए,
2: बिल्कुल बिल्कुल,
4: आपका भी और सभी का डॉक्टर कितने सबका धन्यवाद,
2: बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छी बढ़िया जानकारी दी। और बादल सिंह जी, जैसे कि हमारे जो श्रोता हैं वो जिस तरह की जो जानकारी चाहे हम कोशिश करते हैं कि भाई उनको उसी तरह की जो जानकारी है अच्छे से अच्छी
4: मिले, भाइयों को इसी तरह की उपयोगी जानकारी
2: मिलती रहे,
4: कार्यक्रम को चार चांद रखते
2: हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और कोई हमारे कार्यक्रम संबंधी कोई बातचीत हो तो
4: संबंधी एक हरियाणवी फिल्म को गाने की फरमाइश है, अगर आपको कभी सुना दे तो।
2: कल भी सुनाया हो कदे?
4: नहीं वो ने उस फिल्म का गाना नहीं सुना, आप लंबे अरसे थे।
2: अच्छा,
4: फिल्म का नाम है झटका।
2: अच्छा क्या नाम है?
4: और पहले है?
2: क्या नाम बताया फिल्म का?
4: चोरा झटका। पहले एक फिल्म से एक फिल्म से गाना सुना करते ना आप?
2: हाँ,
4: इसके गाने खूब बजा करते।
2: अच्छा,
4: तो लंबे से फिल्म के गाने नहीं आ रहे।
2: चलो चलो कोशिश करते हैं इसकी, बादल सिंह जी, इसको ढूंढने की और बजाने की भी।
4: जी अगर इसका कोई भी गाना सुना दे अच्छी बात हो।
2: चलो बहुत बहुत धन्यवाद, फोन किया आपने, धन्यवाद
4: जी।
2: राम राम। हेलो
5: सुरेंद्र भाई, राम राम
2: जी। राम राम जी, नाम बताओ।
5: मुन्ना बोल रहा था।
2: मुन्ना भाई कैसे हो?
5: बढ़िया, आपनी बताओ।
2: बिल्कुल सही,
5: आकाशवाणी ठीक ठाक?
2: बिल्कुल आकाशवाणी ठीक चल रही है, और आपका जो हमारे श्रोता है उनसे आकाशवाणी चल रही है भाई, और हमारे जो कार्यक्रम है किस तरह के लग रहे हैं आपको, जैसा आप सुझाव दोगे उसी प्रकार की हमारी आगे रूपरेखा रहे, हम उसमें और सुधार करने की कोशिश करें ताकि हमारे जो श्रोता हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको पसंद करें। क्या सुझाव है आपका?
5: बात हुई

0: अपनी 27 अप्रैल में बात हुई थी,
1: फिर
0: 3 सोमवार में फोन करिया,
1: हाँ,
0: फिर अपना ये प्रोग्राम को नहीं आया कई दिन।
1: हाँ, कुछ दिन ये दिल्ली से पीछे से प्रोग्राम चलाया था, उस कारण ये प्रोग्राम 10 मिनट का रह गया था, उसमें हम जो फोन इन कार्यक्रम है वो नहीं कर पाए। तो क्या सुझाव है आपका, हमारे कार्यक्रम संबंधी कोई सुझाव है तो हमें बताइए।
0: 31 तारीख को रात 9:30 बजे अगली सुनवाई थी नरेश बिरदानिया की आवाज में।
1: नरेश,
0: हाँ, नरेश बिरदानिया,
1: हाँ जी।
0: शेख ताराचंद का किस्सा था, बिल्कुल बेसुरी सहायक कलाकार था, इसका इस तरह लगा जो सांस छे।
1: अच्छा,
0: इसकी आवाज पड़ता है, इसे कलाकारों को गाट बजाया करो।
1: चलो,
0: एक बात
1: चलो,
0: तो या।
1: चलो चलो कोशिश करेंगे थोड़ा और सुन।
0: कार्यक्रम में अगला एतवार ने सुनवाया था साहब सिंह की आवाज में रागनी,
1: हाँ,
0: वह भी बिल्कुल ना के बराबर थी, कोनी इतनी बढ़िया लगी।
1: समझ गया मुन्ना भाई, देखो एक बात सुनो, हर कलाकार मान लो जो आपको पसंद है वो हर बार नहीं चल सकता, उसका ये कारण है कि भाई जितने कलाकार हैं उनको कुछ न कुछ, मान लो किसी का सुर ज़्यादा लोग पसंद करते हैं उसको हम ज़्यादा थोड़ा हाँ बजा दें हैं।
0: नहीं,
1: समझ गए हम, इसकी जो क्वालिटी है यदि उसमें कोई फ़र्क होगा तो आगे इसको कम करेंगे, ये हो जाएगा। बाकी हर कलाकार को देखो मौका देना ज़रूरी हो गया है, ठीक है न।
0: 12 तारीख में, 19 तारीख में और 26 तारीख में थारी पसंद कार्यक्रम पसंद आया।
1: अच्छा,
0: और जो 5 तारीख का थारी पसंद कार्यक्रम था ना, वो ना के बराबर था, क्योंकि 4 बार बिजली गई, रागनी नहीं सुन पाया मर अशोक भाई था। पिछला मंगलवार ने भी जो थारी पसंद कार्यक्रम था ना, वो अशोक भाई द्वारा था। फिर एक प्रार्थना है आपते,
1: हाँ,
0: संपूर्ण भाई रिटायर हुए ने,
1: हाँ,
0: उसका पहले न्यू क्या करते, थारी पसंद का एकदम बिल्कुल गड़बड़ बन चुका है।
1: हाँ,
0: तो श्रोता भाई भी सुनो, रात भी सुनो हो
1: बिल्कुल,
0: कि इसमें थारी पसंद में भाई हरियाणवी फिल्मों के गीत ना बजाया करो, फरमाइश ना करया करो, सब पसंद गड़बड़ बन चुका है, रहने दियो।
1: इसमें
0: आखिरी में थारी पसंद का एकदम में हरियाणवी फिल्म का गीत बज गया था।
1: नहीं देखो, मैं बताऊंगा आपने मुन्ना भाई इसमें, कि देखो आपसे जो पहले वाला फोन था न, वो इस बात के लिए था भाई हरियाणवी फिल्म का गीत सुनवाओ। जब फरमाइशी कार्यक्रम है तो देखो उसमें सुनवाने जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि ये भी फरमाइशी कार्यक्रम है, पसंद अपनी अपनी है, आपकी पसंद है, थारी पसंद है, ये कार्यक्रम फरमाइशी कार्यक्रम है। और इसमें जैसे आप अब सुझाओ
0: आपकी पसंद उसमें सुनाना दिया करो, कोई का जीवन जरूरत कोई मन थारी पसंद तो प्योर गड़वा बन चुका है, या तो सही संपूर्ण भाई तसल्ली कर।
1: चलो चलो कोई नहीं, तसल्ली नहीं, तसल्ली वाली कोई बात नहीं है, चलो कोशिश करेंगे। हैं,
0: एक दिन गजानन शर्मा को सुनवाओ,
1: गजानन शर्मा
0: लोक संगीत में।
1: कई बार क्या है कि मान लो हम गजानन शर्मा जी को यदि मान लो दिन में बजा दे हैं कई बार, तो वो शाम को उसमें नहीं बजा पाते, ये भी हो जाए। बाकी अच्छे कलाकार हैं वो ये कहना पड़ेगा।
0: सुनवाओ अपनी से कि नल दमयंती का किस्सा है, कठी रागनी सुनवाओ, और एक रीता बहन जी से प्रार्थना है, रूपरेखा ढंग से दिया करें।
1: अच्छा अच्छा,
0: रूपरेखा बताई थी बिंदी की कास्ट, और बात की सुना दी आपने दूसरी।
1: नहीं, वो क्या है कि वो जो बात थी वो पहले की बजाई हुई थी, लेकिन जो अब ये डॉक्टर अंकित गिल जी वाली बातचीत थी ये अब तुरंत रिकॉर्ड हुई थी, ये बजानी जरूरी होगी, इसलिए वो उन्होंने अपनी समरी लिखी ना उसमें बता दिया। इसमें कई बार हमारे से भी कमी रह जाती है।
0: उसका रूप बसंत का किस्सा है,
1: जरूर जरूर जरूर, रूप बसंत का।
0: हाँ, केशवराम जी तर संपूर्ण भाई तो बातचीत कब करवा रहे हो, आपने को करवावांगे जल्दी
1: भाई,
0: हमारी बातचीत को नहीं हो पाई।
1: अच्छा,
0: और लैणा सिंह अत्री का आपने वादा करया था भले भी कविता पाठ सुनवावांगे,
1: फिर सुनवाया था ये पीछे। भैया देखो मुन्ना भाई, आपने सुना ना सुना वो अलग बात है, उनके घर पे जाकर रिकॉर्डिंग की, स्थल रिकॉर्डिंग पे आधारित उनका कार्यक्रम है, पूरे प्रोग्राम में उन्हीं का ही चला था, लैणा सिंह अत्री का ही। शायद एक महीना भी ना होया होगा।
0: ना जी, दिल्ली का प्रोग्राम है, ग्रामीण से सारा हुआ, 10 मिनट का हुआ है।
1: नहीं नहीं नहीं नहीं, नहीं महीना नहीं होया होगा, तो डेढ़ होया होगा, बस ज्यादा नहीं होया है। ये
0: ना एक दिन बस ये मैंने पूछा, जैसे संपूर्ण भाई है,
1: हाँ,
0: और लैणा सिंह अत्री है, आमी श्यामी बुला की बातचीत करवा दे, और न्यू केशवराम की कई।
1: चलो जब उन टाइम जब इकट्ठा ना हो तो फिर तो दिक्कत हो जाए ना।
0: वैसे आपने बात की तो रिकॉर्ड सुनवाई थी संपूर्ण भाई की।
1: हाँ, रिकॉर्ड भैया उस उनके घर जैसे उनके घर पे जाकर वो रिकॉर्डिंग करी थी और वो सुनवाई थी डेढ़ एक महीना पहले।
0: केशवराम जी की आपने?
1: हाँ नहीं, केशवराम जी की नहीं, लेना

0: सिंगत जी की। हाँ तो चलो कभी उनसे मौका होया तो उनसे भी मिलेंगे और उनसे बातचीत करेंगे और कोशिश। चलो चलो ठीक है जी,
1: संपूर्ण नहीं बुलाओ।
0: चलो ठीक है जी,
1: धन्यवाद।
0: राम राम। हेलो जी, नमस्कार, नाम बताओ। प्रकाश जी, कैसे हो? बिल्कुल, मौसम कैसा चल रहा है?
2: मौसम सर,
0: हाँ बादलवाई हो रही है,
2: बारिश अच्छी हो रही है सर।
0: आज हुई है?
2: हाँ कल हुई थी कि परसों हुई थी।
0: अच्छा,
2: बढ़िया बारिश है, बुआरा हो गया तो खूब बढ़िया।
0: चलो चलो, ये बताओ कार्यक्रम कैसे लगते हैं हमारे?
2: कार्यक्रम तो सर ठीक लगते हैं, सारे सुने हमें तो सर। ये मुन्ना भाई को बोलो, थोड़ा बहुत लंबा बोल
0: दिया। चलो देखो, मैं बार बार कोशिश कर रहा था लेकिन वो बार बार जैसे आप बोलो तो बीच में फोन काटना भी अच्छा नहीं लगता। तो हर एक जो हमारा श्रोता भाई है, जो भी फोन करे उससे यही प्रार्थना है, वे छोटे शब्दों में बात करे, क्योंकि और भी हमारे जो श्रोता भाई हैं वो लाइन पर होते हैं और फिर उनकी ये रवे हमारे फोन नहीं मिलते। तो बताइए, ये आगे आने वाले जो हमारे फोन होंगे उनको हम छोटा करने की कोशिश करेंगे। हेलो।
2: हेलो,
0: हाँ जी बताइए, क्या सुझाव है अपना?
2: भाई आवाज आप कट गई।
0: हाँ सुझाव क्या है अपना?
2: हाँ एक सुझाव ये है सर मेरा।
0: हाँ
2: एक जो खेत, जैसे खेत खलिहान में जो दो राग नहीं सुनाई जाए।
0: हाँ
2: तो इसमें सर मतलब हफ्ते में दो या तीन दिन तो राग पूरी बजे है।
0: हाँ
2: और तीन या चार या पांच दिन मतलब राग नहीं आता, छाप लगते काट दी जा सर, या फिर खेत नहीं सुनाई जा उसकी।
0: अच्छा,
2: अधूरी रागनी काट दी जा सर, ये हफ्ते में चार पांच दिन हो ये गड़बड़।
0: ये लास्ट जो लास्ट रागनी सुनवाओ है?
2: पहली में
0: तो प्रकाश जी क्यों नहीं काटेंगे, क्योंकि टाइम होता है। कई बार क्या है कि टाइम हो जाना पीछे से, एक भाई ये सिग्नल हो गया भाई टाइम हो गया आपका, उसमें कट जाती है। एक आध बार होना चाहिए, बाकी जो आप बता रहे हो कि एक दो दिन ठीक जा है, बाकी इसमें है तो वो जरूर हम बातचीत करेंगे इस पे।
2: सर मैं तो काफी दिन से मैं लिख रखी एक एक चीज, बहुत लंबे समय से काम चल रहा है।
0: अच्छा,
2: काट देंगे या साफ लगते काट।
0: अच्छा अच्छा, लास्ट वाली रागनी में जो दूसरे नंबर पर रागनी सुनवाई जा है।
2: और कई बार पूरी रागनी बाज जैसे पूरी बाज के रुक है आरामदार, कई बार हफ्ते में चार या पांच दिन इजी हो जाए और रागनी अब चेक काट दी जाती है या साफ लगते काट दी जा।
0: इसका प्रकाश जी बिल्कुल आपका जो सुझाव है वो सही है, और इसको हम पूरी मीटिंग करके और हर एक जो साथी है उसको यही कहेंगे, भाई थोड़ा सा टाइम से एक मिनट हमारी पीछे से बोलने की बचनी चाहिए, बल्कि
2: थोड़ा सा आगरी आराम से रागनी बजनी।
0: नहीं बिल्कुल, पूरी कोशिश करेंगे हम बजवाएंगे इसको।
2: ठीक है सर,
0: ठीक है, धन्यवाद प्रकाश जी। हेलो।
3: हेलो,
0: हाँ जी, नाम बताइए।
3: हेलो
0: हेलो, नाम बताओ जी।
3: मैं कलियाज मनोहर डाल बोलो जी।
0: हाँ जी,
3: बहुत शांत प्रोग्राम तो बढ़िया आना रही आपके।
0: हैं?
3: प्रोग्राम बहुत बढ़िया आवाज है।
0: हाँ
3: तो सांग सुनवा दो।
0: सांग बोलो, कौन सा?
3: राजा का।
0: राजा नल का।
3: हाँ
0: चलो, ये भी है जो शुरू वाला जो ये होगा ना इतवार, इसको कोशिश करते हैं। ठीक है ना?
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: चलो धन्यवाद, आपका भी फोन किया मनोहरलाल जी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी,
3: वो बता दिया, छोड़ो गाड़ी कितने जाओगी,
0: बेरा ना छोड़ो या गाड़ी कितने ले जाओगी। हाँ, बाबूराम दैया की रागनी। बाबूराम दैया जी की रागनी है ये।
3: हाँ जी,
0: चलो कोशिश करते हैं, लिख लिया मैंने।
3: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद जी, ठीक है, धन्यवाद जी। हेलो, अगला फोन लेते हैं
4: जी।
0: राम राम, नाम बताओ जी।
4: जयवीर प्रजापत बोल रहे हैं जी।
0: जयवीर जी।
4: हाँ जी,
0: कहाँ से?
4: सांगा दिवाली के पास।
0: अच्छा अच्छा,
4: हाँ।
0: तो क्या सुझाव है जयवीर जी?
4: सुझाव सारे प्रोग्राम बढ़िया चल रहे हैं।
0: हाँ,
4: थोड़ा हाँ एक श्रोता भैया का बड़ा कम टाइम दिया रो, बहुत ज्यादा टाइम ले लिया मुन्ना भाई ने तो आज।
0: हाँ मुन्ना भाई ने आज थोड़ा हाँ ज्यादा ले लिया, देखो वो भी श्रोता है और प्रकाश जी ने भी ये शिकायत करी, भाई ज्यादा टाइम मत लो। तो कोशिश हम यही करेंगे कि भाई कम से कम सब देखो, सारे आप जैसे श्रोता भाई हैं, हम किसी को नाराज ये नहीं करना चाहते भाई मेरा फोन काट दिया, लेकिन खुद ये सोचो कि भाई हमारे और भी श्रोता भाई हैं वो इस लाइन में जुड़े हुए हैं और उनसे फोन पे बात हो जाए। ठीक है ना? तो बताइए जयवीर जी।

0: क्या सुझाव है अपना?
1: जो बॉयलर आग की फरमाश करी थी, ये
0: हाँ,
1: खास जो सत्य फरमानी ने गा रखी है अपने, जो बेराना छोरो का टिकट ले गया
0: अच्छा
1: और
0: अच्छा
1: ये
0: सत्य की है।
1: सत्य के जी, और दोबारा रिकॉर्ड कर लियो तो मेरा को नहीं पहले सत्य का
0: नहीं
1: आगर
0: कोई
1: करो।
0: नहीं, सत्य प्रमाणिया की होगी, आपका ध्यान होगी उस कह मेरे नहीं हो ये
1: हाँ
0: चीज़, कोई जरूरी थोड़ा कि मेरे हर एक चीज़ ध्यान है।
1: ना सही बात है,
0: हाँ कोई
1: और
0: बात नहीं,
1: प्रोग्राम तो
0: सत्य जिया की होगी तो उनकी जरूर सुनवाओगे भाई। हैं
1: बढ़िया प्रोग्राम कर रहे जी, शाम शुरू करते ही बोलते बोलिया।
0: चलो अब करते हैं,
1: हाँ
0: ठीक है, धन्यवाद जयवीर भाई,
1: वाह वाह राम भाई,
0: राम राम। हेलो,
1: हेलो,
0: हाँ नाम बताओ जी।
1: राम राम जी,
0: राम राम जी,
1: जयवीर सैनी गांव नानुकला से।
0: जी जयवीर जी,
1: और जी कैसे हो जी? सब
0: बिल्कुल जयवीर जी बिल्कुल ठीक हैं। सुनाइए,
1: बढ़िया,
0: कार्यक्रम
1: कार्यक्रम
0: कैसे लगते हैं हमारे?
1: बहुत बढ़िया लगे जी। आप पुराना श्रोता हूँ मैं,
0: अच्छा
1: दोपहर में खेत खलियान,
0: हाँ,
1: जैसे थाली पसंद अपनी पसंद एक सुन लेता हूँ जी।
0: अच्छा,
1: बीच में जैसे जो कभी गोष्ठी वगैरह थी वो बढ़िया लगे जी।
0: हाँ तो
1: और साथ में कौन
0: इसमें कोई सुझाव आप देना चाहते हो वे, जिससे हमारा कार्यक्रम और अच्छा हो?
1: तो जैसे सर क्या है कि जैसे आजकल क्या वो ऑनलाइन जमाना हो गया, हमारी पसंद भी थोड़ी ऑनलाइन होनी चाहिए ना आजकल, या तो व्हाट्सएप पे
0: हमारी
1: फेसबुक
0: पसंद ऑनलाइन
1: पे।
0: करने में क्या है कि उस टाइम फिर वो रागनी निकालनी मुश्किल हो जाती है, या तो
1: ना ना वो जैसे वो
0: पहले उसकी डिटेल
1: है
0: हो।
1: तो पैक जैसे भाई आज 10 लाख नहीं रख दी, 10 या 15 जितनी रागनी है,
0: अच्छा
1: जैसे 10 लाख नहीं रख ली भाई आज, 10 कलाकारों की रागनी रहेगी, 5 की तो
0: नहीं, वो
1: पैक बता।
0: एक वो इस तरह मान लो किसी कलाकार ने किसी की कर दी, वो उस टाइम एट ए टाइम वो फिर दिखाना, फिर एक का दो राग नहीं सुन पाओगे। या तो ये हो कि आप जैसे पत्थर है वो लिखो, भाई हमने इस चीज़ की रागनी सुननी है उसको
1: तब तो
0: हम।
1: सिर्फ मान लिया ऐसा हो गया, मेरे गांव में मेरे ना डाकाना पड़े लेकिन आज तक मिले मिले नहीं, कई साल हो गए नहीं डालते थे। पहले तो बलजीत तो भाई संपूर्ण भाई आते थे जब डालते थे, वो पत्थर पत्थर मिलने हो गए बंद।
0: चलो फिर आप अब बता दो भाई, आप कौन सा जो गीत है, भजन है या रागनी है, क्या सुनना चाहते हो? आपकी बात।
1: एक राग नहीं है जी, अगर राजकीय की वो देशभक्ति की रागनी जी,
0: अच्छा, क्या कोई बोलो तो बताओ,
1: देश
0: नहीं
1: यार की कुश्ती
0: है
1: करना जीत गई, देश
0: क्या?
1: यार की कुछ ऐसे बोल, देश यार की कुश्ती जीत गई हो। हाँ
0: अच्छा
1: अगर मिले तो
0: चलो, मिलेगी तो भाई जरूर सुनाओगे। हैं
1: निजवानपुरी है, कोई बढ़िया से कोई
0: नहीं,
1: भी रागनी सुना
0: अगवानपुरिया
1: दो।
0: जी की तो रागनी तो चले हैं, बाकी
1: हाँ चले। हाँ हाँ
0: जो आपने देशभक्ति की कही ना,
1: अजय अजय
0: उसकी कोशिश करते हैं ढूंढते हैं
1: हाँ जी
0: उसको।
1: अजय
0: हैं
1: जरूर सुना, देशभक्ति भी हो जाएगी तो सुना दिया करो
0: चलो
1: जी।
0: चलो चलो, ठीक है, धन्यवाद जयवीर जी।
1: धन्यवाद जी फोन लेने के लिए आपका।
0: जी धन्यवाद। हेलो,
1: भाई राम राम,
0: राम राम जी, नाम बताओ।
1: ओम प्रकाश पुनिया
0: ओम प्रकाश पुनिया, कहाँ से जी?
1: खुडन से जी।
0: जी
1: भाई एक साहब मेरी फरमाइश है, एक रागनी सुभाष के खेसके की होया करती।
0: घड़ी ना बीती ना पल गुजरे, उतरिया जहाज से करते हैं।
1: ना जी ना जी ना जी ना जी,
0: अच्छा,
1: कौन से डट रहा कर थारे में,
0: यह किसकी गाई हुई
1: बिजली
0: है
1: के साथ
0: जी?
1: चांदना हो रहा है चौबारे में।
0: अच्छा
1: हाँ जब सुभाष उड़े जा से जर्मनी
0: हाँ
1: में कड़े उड़े कुएं पर पानी पियो है किसी हिंदू और की साड़ी देख के, और
0: हाँ
1: वो ने बोला मैं देश ना आजाद करवाने खातर ऐसे ऐसे आ रहा हूँ सुभाष मेरा नाम से, और मन रुकन आ जाओ हुआ, मैं बोली मेरे पछ पछ आ जाओ अपने घर ले जा के वो चौबारे
0: चल
1: में चढ़ा दिया।
0: पुनिया जी, एक ऐसी मैं आपको बात बताऊं, या तो देखो आपको
1: हाँ
0: कलाकार का नाम का पता हो ना,
1: हाँ
0: तो फिर तो ये काम चल सके, नहीं तो ये तो बड़ा मुश्किल काम हो जाए ना भाई, ये टेक टेक से तो कई बार रागनी मिलती
1: भाई
0: नहीं।
1: साहब कलाकार का ध्यान नहीं, बाकी ये रागनी मेरे बहुत पसंद थी साहब।
0: आपका पसंद थी और कोशिश तो हम टोन की कर लें, लेकिन जब कलाकार का नाम का पता हो ना, तो फिर इसमें हमने आसानी हो गया है।
1: बस घने दिन हो गए साहब, साहब पहले सुनी थी और उसके बाद में नहीं आई रागनी।
0: चलो फिर, या तो उसका कलाकार का नाम का पता आपने फिर लाग जाए तो फिर बता दियो, हम कोशिश करेंगे इसको ढूंढ कर आपको
1: आपका
0: सुनाएंगे।
1: शुभ नाम जी, क्या
0: भाई मेरा सुरेंद्र नाम है, सुरेंद्र पूनिया हूँ मैं भी,
1: क्या नाम बता?
0: सुरेंद्र, सुरेंद्र भाई।
1: सुरेंद्र पूनिया है
0: हाँ हाँ
1: भाई, ऐसा है साहब मैं क्या नाम, मेरा तो पूरी जिंदगी में आज फोन मिल लेना, मेरा फोन नहीं मिलता।
0: चल चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, चलो आपका आज मिल गया,
1: बहुत
0: और
1: धन्यवाद साहब आपका,
0: बहुत
1: आपके
0: बहुत
1: दर्शन हुए, आपसे
0: चलो
1: बात होकर
0: चलो,
1: बड़ी खुशी हुई। थैंक
0: धन्यवाद जी,
1: यू सर,
0: धन्यवाद
1: थैंक
0: ओम प्रकाश जी।

0: हेलो
1: हेलो, नमस्कार।
0: जी, नमस्कार। नाम बताओ जी।
1: मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से। जी
0: राकेश जी, शिमला से।
1: जी जी जी जी
0: सुनाइए राकेश जी, कैसे हो?
1: बस बढ़िया है। बहुत अच्छा चल रहा है और मौसम भी थोड़ा बादल बादल आ गए थे तो फिर अब साफ हो गया मौसम
0: अच्छा
1: और बहुत अच्छा चल रहा है। और आकाशवाणी रोज तब जो है हम सुनते रहते हैं और सभी प्रोग्राम आपके अच्छे से लगते हैं और सुनते भी हैं सभी प्रोग्राम आपके।
0: तो इसमें कोई क्या सुझाव देना चाहेंगे राकेश जी? आप इस कार्यक्रम में, जो हमारे कार्यक्रम चलते हैं भाई, इसमें आप भाई, कोई
1: जी, देखो
0: हमारे से कई बार कोई कमी
1: जी,
0: रह जाती है, तो उसके बारे में जो हमारे श्रोता हैं वो ही बताओगे ना। हमने
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: हम तो
1: बिल्कुल, तभी
0: प्रोग्राम
1: तो
0: अपनी
1: रखा।
0: तरफ से बढ़िया दे हुए हैं, लेकिन कोई कमी रह जाता आप बताओ ना उसको।
1: जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे कि कई आकाशवाणी केंद्र जो है व्हाट्सएप वाला सिस्टम रख रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आकाशवाणी रोहतक भी व्हाट्सएप पर आधारित हो, क्योंकि सभी जो है सोशल मीडिया पे अब सभी आकाशवाणी चाह रहे हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक। अगर आप भी अपना प्रोग्राम फेसबुक पे डाल या व्हाट्सएप फरमाइश प्रोग्राम करें तो वो अच्छा रहेगा, तो ताकि
0: चल
1: लोग।
0: देखो, ये एक और हमारे साथी थे जयवीर जी, उनका भी यही सुझाव था भाई। व्हाट्सएप व्हाट्सएप तो नहीं कर, उन्होंने कहा था कि भाई इस तरह का कार्यक्रम जो सोशल मीडिया संबंधी है, वो इस तरह का कार्यक्रम हो जाए तो अच्छा है। उसमें रागनी है या
1: जी,
0: कोई बातचीत है, जो भी हमारा
1: चाहे कोई भी
0: श्रोता।
1: हो, कोई भी।
0: हाँ, तो
1: जी,
0: इसकी देखो बात रखेंगे, जितना संभव होगा पूरा करने की कोशिश करेंगे जी।
1: बिल्कुल,
0: राकेश जी, राम राम।
1: राम राम।
0: हेलो हेलो
1: नमस्कार जी,
0: जी, नमस्कार। नाम बताओ जी।
1: और रामदेव सुरेंद्र जी, ठीक हो जी? कार्यक्रम
0: हाँ बिल्कुल। हाँ
1: सभी पसंद है जी आपके।
0: हाँ नाम क्या बताया आपने?
1: मटोर पर राम दिया जी।
0: राम दिया टांक
1: हाँ जी, ठीक
0: जी, कैसे हो?
1: है जी सुरेंद्र जी।
0: हाँ बताओ, कार्यक्रम कैसे लगते हैं? क्या इसमें गुंजाइश है, हम इस कार्यक्रम को और अच्छा बना सकें? अपने जो हमारे कार्यक्रम हैं, ग्रामीण संसार के हैं, कृषि जगत के हैं, खेत खलियान में है, या कोई रागनी संबंधी, जो भी आपका सुझाव हो बताओ रामदिया जी।
1: कार्यक्रम तो ठीक है सुरेंद्र जी आपके। ये हरियाणा की फिल्म का गीत सुनाओ नहीं आप जी,
0: हाँ
1: ये मेरा बिल्कुल भी पसंद कोई नहीं जी।
0: भाई, के कराए तेरा यू पसंद नहीं, किसे का पसंद है?
1: साढ़े बारह सुनवाई करो दृष्टि,
0: चलो
1: साढ़े बारह बजे सुनवाई करो।
0: देखो, ये कार्यक्रम तो फरमाइशी कार्यक्रम है ना, इसमें जो सभी श्रोता हैं, देखो कोशिश ये करी जाए भाई, हर एक की जो ख्वाहिश है उसको हम पूरा करने की कोशिश करें, चाहे हरियाणवी फिल्म है, क्योंकि हरियाणवी फिल्म भी हमारे इसमें जो कल्चर में, इसमें संस्कृति में जुड़ी हुई चीज़ें हैं, तो ये भी एकाध बजाना पड़े है। और रागनी है उनका, उनकी कोई विशेष फरमाइश हो की हो तो बताओ।
1: सारी पसंद में सुनवाई करो जी, इसमें ये नहीं सुनवाई करो जी गाना जी। तो
0: चलो चलो ठीक है, और कोई सुझाव आपका?
1: बतिया है जी, साढ़े
0: चलो
1: बारह सुनवाई दे करो दृष्टि।
0: चलो चलो ठीक है जी, धन्यवाद जी, रामदेव जी। हेलो हेलो
1: सुरेंद्र भाई नमस्कार,
0: जी, नमस्कार। नाम बताओ
1: फूल फूल सिंह पीटीआई नरगढ़ गामरे रेवाड़ी से।
0: जी।
1: अजी मुन्ना भाई ने कह रही इतना टाइम ना ले। अच्छा
0: जी आज उनके उनका थोड़ी बात 1-2 मिनट लंबी होगी, वो आगे कई श्रोताओं के फोन ये आ लिया, आज लंबी बात रही।
1: एक भाई साहब वो सांग सुनवा दिया करो
0: कौन सा सांग बताओ?
1: नल दमयंती को।
0: नल दमयंती के सांग की काफी सिफारिश आ रही है, ये बिल्कुल सुनवाओगे, और ये नोट कर लिया मैंने। हैं,
1: प्रोग्राम आपका सारा अच्छा लगे, धन्यवाद।
0: अच्छा चलो, धन्यवाद जी।
1: धन्यवाद।
0: हेलो हेलो हेलो।
1: हेलो जी,
0: हाँ जी, नाम बताओ।
1: मेरा नाम महावीर है, राठी
0: महावीर जी, कहाँ से बोल रहे हो?
1: से। हमारे
0: हाँ जी महावीर जी, बताइए क्या किस तरह के प्रोग्राम लग रहे हैं हमारे, क्या सुझाव है आपका?
1: प्रोग्राम का वैसे तो ठीक है जी, एक शिकायत है,
0: शिकायत भी करो।
1: 15 साल हो गए, आप जितने भी कलाकार हैं आपके,
0: हाँ
1: चाहे उनका तीसरा दिन नंबर पढ़ो, चाहे 10वां दिन पढ़ो, चाहे 20वां पढ़ो, आप वही 4 रागनी उनकी, वही 15 साल से वही सुनने हमारी है।
0: नहीं, कलाकार वही हैं, रागनी, क्योंकि रागनी तो उनकी वही रहेंगी ना महावीर जी, है
1: सर
0: वो।
1: एक बात है जी, चाहे
0: हाँ
1: चाहे 15वां दिन नंबर आ जाओ, दोबारा वही कैसेट फिर सुना जो।
0: ना, वो तो नहीं इस तरह का, तो देखो कोशिश ये रहे भैया, अरे कलाकार की, कलाकार थोड़े नहीं हैं, बहुत ज्यादा कलाकार हैं हमारे पास है। और कोशिश
1: हाँ
0: ये
1: जी,
0: रहे है कि

0: जी
1: इसका जानकारी होती थोड़ी उनकी बदल के सुना दिया,
0: बदल का
1: कलाकार तो वही है,
0: बदल का सुनवा दे। महावीर जी धन्यवाद। अब जो हमारा खेत ये ग्रामीण संसार कार्यक्रम इसका समय समाप्त हुआ। सुरेंद्र भाई ने इजाजत दो, सारे बाण भैया ने राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्रामीण संसार, आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। आइए सुनते हैं सूचनाएं गुमशुदा व्यक्तियों के बारे में। थाना सदर जींद, जिला जींद सूचित करता है कि विजय उर्फ काला सुपुत्र दुल्ली चंद, जो कि दिनांक 31 मई 2026 से लापता है। विजय का हुलिया आपको बता दें, उम्र 48 वर्ष, कद 5 फुट 8 इंच, रंग सांवला व स्वस्थ शरीर है। इनके बारे में कोई भी जानकारी देने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं थाना सदर जींद, जिला जींद को। थाना कलानूर रोहतक सूचित करता है कि शीला, वाइफ ऑफ अजय, जो कि दिनांक 8 जून 2026 से लापता है। शीला का हुलिया आपको बता दें, उम्र 45 वर्ष, कद 5 फुट 1 इंच, रंग सांवला, लंबूतरा चेहरा व स्वस्थ शरीर है। शीला वाइफ ऑफ वजीर, इनके बारे में कोई भी जानकारी देने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं थाना कलानूर, जिला रोहतक से। थाना पुरानी सब्जी मंडी रोहतक सूचित करता है कि प्रिंस सुपुत्र मंगतराम, जो कि दिनांक 13 जून 2026 से लापता है। प्रिंस का हुलिया आपको बता दें, उम्र 18 वर्ष, कद 5 फुट 8 इंच, रंग गोरा, लंबूतरा चेहरा व दुबला पतला शरीर है। इनके बारे में कोई भी सूचना देने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं थाना पुराने सब्जी मंडी, जिला रोहतक से। पुलिस चौकी कहानूर रोहतक सूचित करता है कि मीना वाइफ ऑफ प्रदीप, जो कि दिनांक 9 जून 2026 से लापता है। मीना का हुलिया आपको बता दें, उम्र 31 वर्ष, कद 5 फुट 3 इंच, रंग गोरा, गोल चेहरा व स्वस्थ शरीर है। इनके बारे में कोई भी जानकारी देने के लिए संपर्क किया जा सकता है पुलिस चौकी कहानूर, जिला रोहतक से। थाना पुरानी सब्जी मंडी, जिला रोहतक सूचित करता है कि सुमन वाइफ ऑफ गोविंदा, जो कि दिनांक 16 जून 2026 से लापता है। सुमन का हुलिया आपको बता दें, उम्र 31 वर्ष, कद 5 फुट 2 इंच, रंग गेहुआ, गोल चेहरा व स्वस्थ शरीर है। इनके बारे में कोई भी सूचना देने के लिए संपर्क कर सकते हैं थाना पुरानी सब्जी मंडी, जिला रोहतक से। पुलिस चौकी शहर महम, जिला रोहतक सूचित करता है कि प्रीति वाइफ ऑफ रणवीर, जो कि दिनांक 19 जून 2026 से अपनी बेटी के साथ लापता है। प्रीति का हुलिया कुछ इस तरह से है, उम्र 21 वर्ष, कद 5 फुट 4 इंच, रंग सांवला, गोल चेहरा व पतला शरीर है। इनके बारे में कोई भी जानकारी देने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं पुलिस चौकी शहर महम, जिला रोहतक से। सूचनाएं समाप्त हुई। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम में। पहला गीत सुनवाने जा रहे हैं आपको अरिजीत सिंह और हर्षदीप कौर की आवाज़ों में, रईस फिल्म से। अमिताभ भट्टाचार्य के बोल हैं, जैम का संगीत है।

अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा और जम का संगीतबद्ध किया गीत आपने सुना, अरिजीत सिंह, हर्षदीप कौर और साथियों की आवाज़ों में रईस फिल्म से। कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल के युगल।

रॉकी और रानी की प्रेम कहानी फिल्म से। एक बार फिर से अमिताभ भट्टाचार्य के बोल हैं, प्रीतम का संगीत है।

अरिजीत सिंह, श्रेया घोषाल और साथियों की आवाज़ों में आपने सुना रॉकी और रानी की प्रेम कहानी फिल्म से ये गीत। अमिताभ भट्टाचार्य के बोल थे, प्रीतम का संगीत था। आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम में। अगला गीत सुनवाने जा रहे हैं दम लगा के हईशा फिल्म से।

दम लगा के हईशा, ये था फिल्म का नाम जिसका गीत आपने मोनाली ठाकुर की आवाज़ में सुना। गीत के बोल लिखे थे वरुण ग्रोवर ने और संगीत दिया था इस गीत को अनु मलिक ने। कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं राहत फ़तेह अली खां की आवाज़ में लव आजकल फिल्म से। अरशाद कामिल के बोलों को संगीत दिया है प्रीतम ने।

राहत फ़तेह अली खां की आवाज़ में आपने सुना लव आजकल फ़िल्म से एक गीत, जिसे लिखा अरशाद कामिल ने और संगीत दिया प्रीतम ने। कार्यक्रम में अगला गीत आइए आपको सुनवाते हैं अरिजीत सिंह की आवाज़ में एनिमल फिल्म से। सिद्धार्थ गरिमा के बोल हैं, श्रेयस पुरानिक का संगीत है।

सिद्धार्थ गरिमा का लिखा और श्रेयस पौराणिक का संगीतबद्ध किया गीत आपने सुना अरिजीत सिंह की आवाज़ में एनिमल फिल्म से। आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। अगला गीत आइए आपको सुनवाते हैं अरमान मलिक और श्रद्धा कपूर की आवाज़ों में बागी फिल्म से। गीत के बोल लिखे हैं संजीव चतुर्वेदी ने और संगीत से सवारा है इस गीत को अमाल मलिक ने।

कार्यक्रम में अगला गीत सुनवाने जा रहे हैं अरिजीत सिंह और रेखा भारद्वाज की आवाज़ों में बदलापुर फिल्म से। दिनेश विजन और प्रिया सरैया के बोल हैं, सचिन जिगर का संगीत है।

सुमेधा कर्माहे की आवाज़ में आपने सुना बरेली की बर्फी फिल्म से ये गीत। गीत संगीत आर्को प्रेवो मुखर्जी का था। आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम में। अगला गीत सुनवाने जा रहे हैं अरिजीत सिंह और शिल्पा राव की आवाज़ों में लाल सिंह चड्ढा फिल्म से। अमिताभ भट्टाचार्य के बोल हैं, प्रीतम का संगीत है।

कार्यक्रम के अंत में सुनवाने जा रहे हैं विशाल मिश्रा, नीति मोहन और साथियों की आवाज़ों में गदर 2 फिल्म से गीत। सईद कादरी के बोल हैं, मिथुन का संगीत है।

0: विशाल मिश्रा, नीति मोहन और साथियों के गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। इसमें आज आपको सुनवाने जा रहे हैं फरीदा खानम की गाई गज़लें। सुनते हैं इनकी आवाज़ में ये पहली प्रस्तुति।
1: आज जाने

आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। इसमें आज आपको सुनवा रहे हैं फरीदा खानम की गाई गज़लें। सुनते हैं इनकी आवाज़ में ये अगली प्रस्तुति।

0: इसी प्रस्तुति के साथ संपन्न होता है कार्यक्रम सुगम संगीत। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत, जिसमें आज आपने फरीदा खानम की गाई गजलें सुनी। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है, मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्स, न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और ठीक 9 बजे होंगे अंग्रेजी में समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। उत्तर प्रदेश के लखनऊ कोचिंग सेंटर में आग लगने से 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। उद्धव ठाकरे गुट वाले शिवसेना के 6 लोकसभा सदस्य शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट में शामिल। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने लेबर पार्टी में असंतोष के बाद इस्तीफे की घोषणा की। ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व कप में प्रीतम केंद्र ने स्वर्ण पदक सहित भारतीय निशानेबाजों ने 4 और पदक जीते, तालिका में भारत शीर्ष पर। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा।

0: विस्तार से। लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज दोपहर एक भीषण आग की घटना में 15 लोगों की मौत हो गई। इनमें ज्यादातर 16 से 18 वर्ष के छात्र थे। अलीगंज के पुरानिया इलाके में एक दुकान के ऊपर चल रहे एनिमेशन कोचिंग सेंटर में आग लग गई। 4 छात्र घायल हो गए हैं, जिन्हें लखनऊ के KGMC अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक रिपोर्ट।
1: आग इमारत में अंदर से लगी और तेजी से फैल गई, जिससे लोग अंदर ही फंस गए। फायर ब्रिगेड, पुलिसकर्मी, SDRF और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और बचाव और राहत अभियान शुरू किया। कुछ लोगों ने पहली मंजिल से कूदकर अपनी जान बचाने की भी कोशिश की। बचाव दल दीवार तोड़कर इमारत में दाखिल हुआ और लोगों को बाहर निकालने में भी कामयाब रहा। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि राज्य के DGP और अपर मुख्य सचिव गृह की उच्च स्तरीय समिति मामले की जांच करेगी।
2: घटना की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दे दिए हैं। प्रमुख सचिव गृह DGP मौके पर बुलाया गया है और उनको निर्देश दिए कि घटना की कारणों की जांच और घटना कैसे घटी, भविष्य में न घटे, इसके कड़ी कार्रवाई करें।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
3: मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के उन नौजवानों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। और इस पूरे मामले के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि वे स्वयं मौके पे जाकर के इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जिससे इस पूरे मामले की तह में हम जाकर के दोषियों को सजा दे सकें।
1: अलीगढ़ और फिरोजाबाद जिलों का अपना दौरा अधूरा छोड़कर लखनऊ लौटे मुख्यमंत्री ने घटना स्थल का निरीक्षण किया और अस्पताल में घायलों से भी मुलाकात की। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय एक निजी समाचार चैनल के कार्यक्रम ग्रेट पावर इंडिया नेशन फर्स्ट को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
4: निभाया देश के नागरिकों को मैं सलाम करता हूं। साथियों, यहां हमारे साथी सिद्धर बैंबू जी बैठे हैं। जब हमारे उद्यमी नेशन फर्स्ट की भावना के साथ चलते हैं, जब वो देश की आवश्यकताओं को समझते हुए अपने लक्ष्य बनाते हैं, तो संस्थाएं भी बनती हैं और देश भी समृद्ध होता है। सिद्धार्थ बैंबू जी ने क्या काम किया है, शायद यहां बातों में कितना निकला होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन अभी मैं फ्रांस में विवाटेक में गया था। करीब 1.5-2 लाख नौजवान वहां होंगे। चलने के लिए भी मैं और फ्रांस के राष्ट्रपति अलग अलग स्टॉल पे जा रहे थे, देखने के लिए भी नौजवानों ने क्या काम किया है। तो हम जोहो के स्टॉल पे गए, मैं हैरान था जी और गर्व होता था कि जोहो के स्टॉल पर यूरोप के नौजवानों की जो भीड़ लगी थी और वो समझना चाहते हैं कि ये क्या है दुनिया में नई चीज। भारत में शायद उतनी चर्चा नहीं होगी जितनी मैंने वहां फ्रांस में देखी।
0: शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज घोषणा की कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसद उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। श्री शिंदे ने इन सभी सांसदों का पार्टी में स्वागत किया। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने कहा कि आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक है।
5: आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे 6,000 शिवसेना में शामिल हुए हैं, इससे शिवसेना की ताकत बढ़ रही है। शिवसेना सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो चुकी है और ये डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बड़े पैमाने पे सहयोग कर रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा।
6: रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। इनमें बागुआपाला बुद्धापंक हरिदासपुर पारादीप खुर्दा रोड बलंगीर नौपाड़ा गुनुपुर लांजीगढ़ रोड जूनागढ़ और बोबिल्ली सालूर शामिल हैं। इन मार्गों पर कवच की स्थापना से स्वचालित रेल सुरक्षा और किसी भी तरह की टक्कर से बचाव की क्षमता प्रदान करके रेलगाड़ी संचालन

0: सर्वोच्च स्तर की सुरक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। मंत्रालय ने कहा कि इस परियोजना से पूर्वी तट रेलवे द्वारा सेवा प्रदान किए जाने वाले ओडिशा और पड़ोसी क्षेत्रों के प्रमुख खंडों पर यात्री और मालगाड़ी दोनों के संचालन को लाभ होने की उम्मीद है। यह भीड़ भाड़ और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मार्गों पर कवच का विस्तार करने के उद्देश्य से जारी रेलवे के अभियान को मजबूती भी प्रदान करेगा। सौम्या की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है।
2: वित्त मंत्री डॉक्टर शपन दासगुप्ता ने आज 4,00,000 करोड़ रुपए से अधिक का राज्य बजट प्रस्तुत किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इसे विकसित भारत के साथ विकसित बंगाल के निर्माण का बजट बताया। बजट में राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 18% से बढ़ाकर 38% करने की घोषणा की गई। महिला सुरक्षा के लिए सभी थानों में नारी सहायता डेस्क और दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड बनाया जाएगा। दार्जिलिंग और गंगा सागर को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। काश्मीर नहार, आकाशवाणी समाचार, कोलकाता।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मंगोलिया के उलानबतार में मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुख उखना से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पिछले साल श्री उखना की भारत यात्रा ने भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी को मजबूती प्रदान की थी। उन्होंने मुलाकात के दौरान मंगोलिया के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी। इससे पहले दिन में विदेश मंत्री ने उलानबतार में मंगोलिया के विदेश मंत्री बचनमुख से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चाओं में भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी मजबूती और संभावनाओं पर बात की गई। दोनों नेताओं ने विकास परियोजनाओं, क्षमता निर्माण, संस्कृति, शिक्षा, सुरक्षा और बहुपक्षीय मंचों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में इसराइल के रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक सेवानिवृत्त मेजर जनरल अमीर बराम से मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि श्री बराम ने राजनाथ सिंह को दोनों देशों के विशेष रणनीतिक साझेदारी में भारत इसराइल रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए इसराइल की प्रतिबद्धता से अवगत कराया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज 16वीं ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बैठक से इतर नई दिल्ली में ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार परिषद के रक्षा मामलों के उपसचिव गादिर निजामीपुर से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। श्री डोभाल ने इथियोपिया की राष्ट्रीय खुफिया सुरक्षा सेवा के विश्लेषण कार्यकारी निदेशक मिलियन लेमा तेदेसा से भी मुलाकात की। श्री डोभाल ने ब्राजील के बहुपक्षीय और राजनीतिक मामलों के सचिव कार्लोस कोजेंडे से भी मुलाकात की। दोनों पक्षों ने ब्रिक्स ढांचे के तहत भारत और ब्राजील के बीच सहयोग का स्वागत किया। गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने कहा है कि राष्ट्रीय विकास में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की बहुत बड़ी भूमिका है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के आर्थिक विकास में CISF के जवानों का बड़ा योगदान होता है। नई दिल्ली में आज CISF के नए मुख्यालय भवन की आधारशिला रखते हुए उन्होंने ये बात कही। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के संवादात्मक सत्र में भाग लिया। श्री शेखावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र का विकास लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन का साधन है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार रोजगार, विकास और समृद्धि के नए अवसर पैदा कर रही है। केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने उन निजी छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक नई नीति बनाई है जो हाल ही में ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा रद्द होने से प्रभावित हुए थे। न्यायमूर्ति SVN भट्टी और विपुल एम पंचोली की पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि क्षेत्रीय संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में परीक्षा रद्द होने से प्रभावित छात्रों की चिंताओं को दूर करने के लिए नई अखिल भारतीय नीति तैयार की गई है। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ NEFED के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। पोर्टल का शुभारंभ नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगम संचालन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। झारखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में बिजली गिरने से 8 लोगों की मृत्यु हो गई और एक दर्जन से अधिक लोग घायल हुए। मृतकों में CPI के एक नेता, एक

0: वार्ड सदस्य, एक किसान और अन्य निवासी शामिल हैं। घायलों को इलाज के लिए विभिन्न जिलों के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। अपनी ही पार्टी के भीतर बढ़ते दबाव के बीच उन्होंने डाउनिंग स्ट्रीट में अपना कार्यकाल समाप्त किया। इस्तीफे का बयान देने से पहले स्टार्मर अपनी पत्नी के साथ 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर निकले, जहां लोगों ने उनका उत्साह के साथ स्वागत किया और तालियां बजाई। श्री स्टार्मर ने कहा कि सितंबर में संसद के सत्र के शुरू होने से पहले जब तक नया नेता नहीं चुन लिया जाता तब तक वे पद पर बने रहेंगे।
1: मैंने जो भी फैसले लिए हैं उनमें हमेशा अपने देश को प्राथमिकता दी है, जिससे मैं प्यार करता हूं। इसीलिए मैं लेबर पार्टी के नेता का पद छोड़ रहा हूं। मैंने आज सुबह ब्रिटेन नरेश से बात करके उन्हें अपने फैसले के बारे में बता दिया है। अगर मुकाबले की स्थिति बनती है तो निश्चित रूप से सितंबर में संसद सत्र शुरू होने से पहले पार्टी का नेता चुन लिया जाए। प्रक्रिया पूरी होने तक मैं प्रधानमंत्री के पद पर बना रहूंगा।
0: कतर के औद्योगिक क्षेत्र रस लाफान में आज हुए विस्फोट में 13 लोगों की मौत हो गई। इनमें कुछ भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। कतर के ऊर्जा मंत्री साद बिन श्रीदा अलकाबी ने बताया कि कल शाम बरजान स्थानीय गैस आपूर्ति संयंत्र में विस्फोट के कारण लगी आग में 66 लोग घायल हो गए। जर्मनी के सुहल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में आज भारत के प्रीतम केंद्रे ने 10 मीटर एयर राइफल पुरुष स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में महिलाओं और पुरुषों ने कांस्य पदक जीते। प्रतियोगिता में भारतीय निशानेबाजों ने आज अलग अलग स्पर्धाओं में 4 पदक हासिल किए। भारत 5 स्वर्ण, 1 रजत और 6 कांस्य पदक के साथ तालिका में शीर्ष पर है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप जे के मुकाबले में आज अर्जेंटीना ऑस्ट्रिया आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं ग्रुप आई में फ्रांस का सामना इराक से होगा। प्रतियोगिता के अन्य मुकाबलों में मिस्र और स्पेन ने शानदार जीत दर्ज की। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 291 अंक बढ़कर 77,094 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 90 अंक बढ़त के साथ 24,103 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 35 पैसे कमजोर होकर ₹94.68 पर बंद हुआ।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के कोचिंग सेंटर में आग की घटना में 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने के साथ ही भरोसेमंद विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा है। उद्धव ठाकरे गुट वाले शिवसेना के 6 लोकसभा सदस्य शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट में शामिल। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर की लेबर पार्टी में असंतोष के बाद इस्तीफे की घोषणा। ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में प्रीतम केंद्रे के स्वर्ण पदक सहित भारतीय निशानेबाजों ने 4 और पदक जीते। तालिका में भारत शीर्ष पर। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

लता मंगेशकर की आवाज़ में आपने सुना कार्यक्रम का ये पहला गीत। अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में। आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक फिल्म से। इसमें आज आपको सुनवा रहे हैं राजा और रंग फिल्म से चुनिंदा गीत।

मोहम्मद रफ़ी के गाए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम एक फिल्म से यहीं संपन्न होता है। अभी आपने सुना कार्यक्रम एक फिल्म से, इसमें आज आपने सुनी राजा और रंग फिल्म की कुछ चुनिंदा गीत। आनंद बख्शी ने उन गीतों को लिखा था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीतबद्ध किया था। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है, रात्रि के 9:30 होने वाले हैं। हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

नमस्कार श्रोताओं, पब्लिक स्पीक में आपका स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ प्रियंका अरोड़ा। रोजगार केवल आजीविका का साधन नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता, सम्मान और राष्ट्र निर्माण की आधारशिला भी है। जब युवाओं को अवसर मिलते हैं तो न केवल उनका भविष्य संवरता है बल्कि देश की प्रगति को भी नई गति मिलती है। इसी सोच के साथ सरकार ने रोजगार सृजन को बढ़ावा देने और युवाओं को औपचारिक रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा से जोड़ने के उद्देश्य से पिछले वर्ष प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की शुरुआत की। पिछले सप्ताह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित की। ये योजना विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। क्या है ये योजना,

0: और 2-3-3-1-4-4-4-4 पर फ़ोन करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है 9289-0940-44। इस पर आप प्रश्न भेज सकते हैं और ट्विटर हैंडल है @AIRNewsAlerts पर #AskAIR के ज़रिए आपके जो भी सवाल हैं और शंकाएं हैं पूछ सकते हैं। तो आगाज़ करते हैं कार्यक्रम का। सबसे पहले पूर्णेंदु जी, आपसे जानना चाहूँगी कि PM विकसित भारत रोज़गार योजना क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी?
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोज़गार योजना एक ऐसी योजना है जो कि यहाँ हमारे फॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, वर्कफोर्स को फॉर्मलाइज करने के लिए, सोशल सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए और फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट को इनकरेज करने के लिए एक सरकार ने एक इंसेंटिव स्कीम जारी की है। ये इंसेंटिव स्कीम इनफैक्ट 1 जुलाई 2025 से शुरू होकर अभी अगले 2 साल के लिए रहेगी और इस इंसेंटिव स्कीम में एम्प्लॉयर एम्प्लॉई दोनों को इंसेंटिव दे रही है भारत सरकार, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट जो भी जनरेट हो रहा है उसको एक बढ़ावा मिले और जो एम्प्लॉयज़ किसी भी एम्प्लॉयर के साथ जुड़ रहे हैं वो वहाँ पे कुछ 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए सस्टेन्ड एम्प्लॉयमेंट बनी रहे।
0: जी प्रणित जी, आपसे जानना चाहूँगी कि EPFO बहुत मेजर रोल निभा रहा है, क्या है, अपने श्रोताओं को इस बारे में बताएं।
2: सो ये स्कीम जो है भारत सरकार ने इसकी जिम्मेदारी EPFO को सौंपा है। तो EPFO इंडिया एंड वर्ल्ड के वन ऑफ द लार्जेस्ट सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। तो हमारे यहाँ जो फॉर्मल एम्प्लॉयज़ है, लगभग 8 करोड़ फॉर्मल एम्प्लॉयज़ हमारे यहाँ कवर्ड है। तो ये स्कीम में जो भी बेनिफिट्स हैं वो EPFO के थ्रू हम देने की प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें कोई द बेस्ट पार्ट इज इसमें कोई एडिशनल कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट नहीं है आइदर फॉर एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयर्स। डायरेक्टली EPFO एनरोलमेंट से ही सारे बेनिफिट्स हम लोग ऑटोमेटिकली सिस्टम कैलकुलेट करके इनको दी जाएगी।
0: ये तो एक तरह से मध्यस्थता का काम कर रहा है EPFO नियोक्ता और जो कर्मचारी के बीच में। हमारे पहले श्रोता जुड़ गए हैं रायबरेली उत्तर प्रदेश से, रमा शंकर वाजपेयी जी।
3: नमस्कार,
0: सवाल पूछे अपना।
3: हाँ, विकसित भारत के अंतर प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत कितने लोगों को रोजगार मिला और किस तरह का रोजगार मिला?
2: हाँ रमाशंकर जी, ये स्कीम 1 अगस्त 2025 से शुरू हुआ है। तो अभी तक लगभग 70 लाख युवा फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय जो पहली बार फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में आए हैं, लगभग 70 लाख से ज्यादा लोग हमसे जुड़े हैं। इसमें लगभग 13.29 लाख तक का बेनिफिट अभी हमने उनको, इन्होंने 6 महीने कंप्लीट कर चुके हैं। तो इनका पहला किस्त का जो बेनिफिट है हमने उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से उनके डायरेक्टली बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दिए।
0: जी पूर्णेंदु जी, आपने इंसेंटिव्स की बात की थी, तो इंसेंटिव्स जो, अगर मैं सबसे पहले कर्मचारी जो पहली बार जो नौकरी पाने वाले हैं तो उनको क्या मिलता है, किस तरह से मिलता है ये बताएं।
1: कर्मचारियों के लिए जो यहाँ पे बेनिफिट मिलती है इस स्कीम में वो है जो पहले 6 महीने तक अगर कोई भी कर्मचारी किसी भी संस्थान को ज्वाइन करने के बाद वहाँ रह जाता है तो उनका जो एवरेज वेज होता है उसका आधा सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 15,000 रुपये, तो ये पूरा बेनिफिट हो गया। पहले 6 महीने में उनको 7,500 रुपये तक मिलते हैं और अगले 6 महीने तक अगर वो एक हमारे यहाँ पे वो लिटरेसी कोर्स उनको करना पड़ता है, 6 महीने के बाद अगर उन्होंने वो कंप्लीट कर लिया और लगातार वहीं एम्प्लॉयड रह गए तो उनको 12 महीने के बाद 15,000 रुपये तक की राशि दी जाती है।
0: तो 6 महीने के बाद और फिर 6 महीने
1: के दो बार दिया जाता
0: है। जी आगे भी चर्चा करते हैं, पहले अपने श्रोता का सवाल पूछ लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला से हैं राकेश जी।
4: जी नमस्कार।
0: नमस्कार
4: जी, तो मेरा एक प्रश्न ये है कि जो प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना है तो इसमें हमें क्या क्या प्रावधान रखना पड़ता है और इसके लिए हमें फॉर्म किस तरह से भरना पड़ता है, ये मेरा प्रश्न है।
1: राकेश जी, आपको कोई भी फॉर्म नहीं भरना पड़ता, आपको केवल EPFO के साथ जुड़ना पड़ता है। EPFO के साथ जुड़ने के लिए जो EPFO में कवरेज के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है वो आपकी कंपनी जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो, जो भी संस्थान हो जहाँ आप काम कर रहे हैं वो अगर EPF में कवर्ड हैं, और जो बिल्कुल नए लोग अगर आ रहे हैं उस कंपनी में जो 1 अगस्त 2025 के पहले कहीं भी हमारे EPFO से जुड़े हुए नहीं थे तो वैसे लोगों के लिए एक इंसेंटिव है और इसलिए इसमें कोई अलग से आपको कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर EPF में आप किसी भी एम्प्लॉय

0: जीएसटी का कंप्लायंस हो रहा है तो वैसे लोगों को ऑटोमेटिकली इसका बेनिफिट मिल जाता है।
1: जी, अगर हम नियोक्ता की बात करें तो उनको इस योजना से क्या लाभ मिलेगा और जो इसमें उनको भाग लेने के लिए कैसे प्रोत्साहित किया जा रहा है, खासकर जैसे अगर कोई कंपनी है, अगर वो हाल फिलहाल में ज्वाइन किया, उसने ईपीएफओ में रजिस्टर किया है या स्टार्टअप है नया, तो उन सब के लिए क्या प्रावधान है?
0: कंपनी के लिए दो तीन चीज़ें आवश्यक हैं। पहला, अगर वो ईपीएफओ में कवर्ड नहीं है तो पहला तो उनका कवरेज ज़रूरत होगी यहाँ ईपीएफओ में। साथ ही उनके जितने भी एम्प्लॉई हैं, जो नए एम्प्लॉई आके ज्वाइन कर रहे हैं उनके बेसिस पे, और जो पुराने एम्प्लॉई जो भी हैं जो कहीं और से आके उनके यहाँ जुड़ रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं फर्स्ट टाइमर एंड रीज्वाइनिंग, तो दोनों के नंबर को जोड़ा जाता है। और जो इंसेंटिव है, अगर 10,000 रुपये तक की सैलरी है एम्प्लॉई की तो उसमें 1,000 रुपये, अगर 20,000 रुपये तक की सैलरी है 10 से 20,000 तो 2,000 रुपये, और अगर 20,000 से लेकर और 1,00,000 रुपये तक की अगर सैलरी है तो 3,000 रुपये का इंसेंटिव एम्प्लॉयर को मिलता है। और ये एम्प्लॉयर को ये प्रत्येक महीने जैसे मिलता जाएगा, अभी पहले 6 महीने किसी का सस्टेंड एम्प्लॉयमेंट हुआ, फिर अगले महीने भी किसी न किसी का 6 महीने होगा, तो वैसे उनको बेनिफिट मिलता रहेगा।
1: ये भी डीबीटी के थ्रू ही,
0: ये सारे बेनिफिट एम्प्लॉयर को डीबीटी के थ्रू मिलेगा। जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो केवल एक ही होती है, एक ईपीएफ में कवर्ड हो, दूसरा उनका जो पैन डिटेल्स है वो हम लेते हैं उनके, क्योंकि हम पैन से जो लिंक्ड उनका बैंक अकाउंट होते हैं उसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होती है, डीबीटी एम्प्लॉयज के लिए होती है।
1: जी, हरिद्वार से जुड़े हैं रवि जी।
2: हाँ जी, नमस्कार मैम जी।
1: नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में।
2: हाँ जी, थैंक यू, और महानुभव विशेषज्ञ को भी नमस्कार।
0: नमस्कार
2: जी। सर, मैं जानना चाहता हूँ, सर ये प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना है सर, इसके लिए जो ये एक युवा है वो मतलब क्या क्वालिफिकेशन होकर मतलब इस योजना का हिस्सा बन सकता है, मतलब इस योजना से लाभ उठा सकते हैं, इसमें एक युवा की क्या मतलब क्वालिफिकेशन,
1: क्या पात्रता क्या होनी चाहिए?
3: रवि जी, इसमें जैसे कि पूर्णेंदु जी भी पहले बताए कि इसमें कोई एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं है, आपको बस ईपीएफओ के साथ जुड़ना पड़ेगा। तो अगर पहली बार आपकी संस्था में आप ज्वाइन कर रहे हैं, पहली नौकरी में ज्वाइन कर रहे हैं, कोई युवा अगर कोई ज्वाइन कर रहे हैं, तो इनको फेशियल ऑथेंटिकेशन के माध्यम से उमंग ऐप जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उस ऐप में उनको एक नंबर दिया जाएगा, उसको हम लोग यूएएन कहते हैं। और उसके बाद 6 महीने अगर उसी संस्था के साथ आप जुड़े हैं और आपका जो जो ग्रॉस वेजेस है आपके, आपका जो सैलरी है वो 1,00,000 से कम होना चाहिए, उनके लिए एक स्कीम है, तो 6 महीने के बाद आपको पहला किस्त 7,500 तक दिया जाएगा, और उसके बाद एडिशनल 6 मंथ्स के बाद आपको दूसरा किस्त दिया जाएगा।
1: जब एम्प्लॉयर्स की बात आगे कंटिन्यू रखते हैं, जैसे मैंने पूछा कोई नया अगर स्टार्टअप आया है और 50 से कम अगर उसके एम्प्लॉयज़ हैं या 50 से ज़्यादा हैं, तो उन सब के लिए भी कुछ कंडीशंस हैं अलग अलग कि मिनिमम आपके पास अगर आपको इतने रखने होंगे, ईपीएफओ में रजिस्टर होना होगा, तभी आप इसका लाभ ले सकते हैं।
0: जी, एक स्कीम की सबसे प्राइमरी कंडीशंस में से एक ये है कि आपने एडिशनल एम्प्लॉयमेंट उस संस्थान ने कितना जनरेट किया है। तो उसने अगर किसी के पास 50 से कम एम्प्लॉई हैं, अगर उन्होंने मिनिमम 2 भी एम्प्लॉई को जनरेट कर दिया, एडिशनल एम्प्लॉयमेंट अगर नया आ गया, और अगर 50 से ज़्यादा उस संस्थान के सदस्य हैं, तो वैसे केसेस में 5 उनको कम से कम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना होगा, तभी वो इसके लिए पात्रता के भागी होंगे। लेकिन साथ में एक और चीज़ बता दूँ आपको कि जहाँ पे एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर का जो टोटल हमारा कॉन्सेप्ट है वो है हमारे ईसीआर पे, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिटर्न होता है। तो न केवल ये कितना उसका थ्रेशोल्ड पॉइंट होगा, 2 आदमी होंगे या 5 आदमी होंगे, बल्कि इन लोगों के लिए कंप्लायंस भी रिक्वायर्ड होगा 6 महीने के लिए। तो लगातार अगर कंप्लायंस आएगी 6 महीने, तभी ईपीएफओ को पता चलेगा कि ये एम्प्लॉय इनके साथ जुड़े हुए थे, उनका वेज कितना था और कितने रुपए के इंसेंटिव के हकदार हैं। जो थ्रेशोल्ड का एक और दूसरा भी कॉम्पोनेंट है हमारा, कि जो नेट एम्प्लॉयमेंट है कितना जनरेट हुआ, उसका हम लोगों ने एक रखा हुआ है, जो एक पर्टिकुलर पीरियड हमने माना हुआ है, राइट। एक पीरियड है कि अगर अगस्त के पहले, अगस्त 2025 के पहले अगर कोई भी इस संस्थान हमारे साथ जुड़ी हुई थी, तो उसको हम तभी मानते हैं, उसके पिछले 12 महीने का एवरेज देखते हैं कि कितने लोग थे, और वहां से फिर उसका वो एवरेज हो गया बेसलाइन जिसे हम कहते हैं, तो बेसलाइन से कितना बढ़ रहा है। अगर अगस्त 2025 के बाद कोई भी संस्थान है तो उसका बेसलाइन होगा

0: हमारा वो 20 रहेगा मिनिमम, वहां पे एवरेज हो गया, यहाँ पे 20 हो गया, तो उस बेसलाइन के बाद फिर हम उसको आगे काउंट करते हैं।
1: छोटी छोटी चीजें देखी जाएंगी और तभी इंसेंटिव के आप पात्र बनेंगे। बिहार से जुड़े हैं हिमांशु जी। हिमांशु जी आप आवाज सुन पा रहे हैं? आपसे अनुरोध है कि अपने जो आपका रेडियो है सेट है उसकी आवाज कम कर दे।
2: मैडम कर दिया मैंने।
1: जी जी
2: कर दिया, कर दिया।
1: सवाल पूछिए।
2: मैडम मेरा ये सवाल था कि क्या मैं अभी भी एम्प्लॉयमेंट में हूँ NIC मुजफ्फरपुर में, ठीक है
1: जी,
2: लेकिन थर्ड पार्टी जो मुझे पेमेंट कर रही है तो ये जो एम्प्लॉयमेंट के ये मेरा जो है EPF नहीं कट रहा है मैम, तो क्या हम लोग लेकिन पहले से जो कंपनी हमारी थी उनके द्वारा मेरा जो EPF कटा हुआ है तो क्या हम लोग इसमें इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है?
1: जी पुनेंद्र जी,
0: हाँ इसके लिए सबसे पहली चीज़ है कि आपको बिल्कुल नए एम्प्लॉई होना पड़ेगा। आप चूंकि पहले से EPF से जुड़े हुए हैं तो जो एम्प्लॉयज़ को जो बेनिफिट मिलती है उसमें आप हकदार नहीं होते हैं, लेकिन जो एम्प्लॉयर है अगर आप कहीं भी और दूसरी जगह पे ज्वाइन करते हैं तो उसको एज रीज्वाइनी हम लोग उन आपके जो भी यहाँ पे ज्वाइन करने के हिसाब से एम्प्लॉयर को इंसेंटिव मिलेगा।
1: महाराष्ट्र के ठाणे से जुड़े हैं गुरुनाथ जी। हेलो,
3: हाँ जी मैम नमस्कार।
1: नमस्कार,
3: मैं गुरुनाथ बोल रहा हूँ ठाणे महाराष्ट्र।
1: जी जी,
3: हाँ मैम मेरा क्वेश्चन है जैसे EPFO में जो नई कंपनियां होती है जैसे ज्वाइंट होते हैं लेकिन एम्प्लॉयज का पैसा तो कटता है, तो कभी कभी ये देखा गया है कि सही तरीके से पैसा वापस जमा नहीं हो पाया है, फ्रॉड कभी कभी फ्रॉड भी देखा जाता है, गड़बड़ी देखी जाती है उसमें, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। और सही मतलब जो पैसा सैलरी से कट जाता है एम्प्लॉयज का जिस कंपनी से, तो वो जमा हुआ है कि नहीं ये जो ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये कैसे चेक करें? थैंक यू
1: जी। प्रणीत जी,
4: गुरुनाथ जी ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। जो एम्प्लॉयज से जो एम्प्लॉयर पैसे काटता है PF जमा करने के लिए, अगर वो एम्प्लॉयर PF जमा नहीं करता है तो वो एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा एंड उस एम्प्लॉयर को एक क्रिमिनल ऑफेंस के अंदर उनको जेल भी भेजा जा सकता है। तो अभी इसमें ये सवाल है कि इसमें आप कैसे चेक कर सकते हैं, तो आपका जो पासबुक है आप अपने पासबुक में आप चेक कर सकते हैं हर महीने की जो आपका अमाउंट कट रहा है वो सही से जमा हो रहा है नहीं है, एंड उसमें पासबुक में आपको ये भी दिखेगा कि आपका इंटरेस्ट कितना जमा हुआ है और टोटल कितना अमाउंट है, तो आपके लॉगिन या फिर आप उमंग ऐप से भी आपका पासबुक आप देख सकते हैं इसमें।
1: जी, बिहार के सासाराम से जुड़े हैं अमित उपाध्याय जी।
5: जी नमस्कार, मेरा ये सवाल था, सभी विशेषज्ञों को मेरा नमस्कार, कि जैसे कि हम लोग जो अभी 2025 से जो अभी लागू हुआ है 1 अगस्त, उससे पहले जितने भी जैसे कि अलग अलग कंपनी में जो लोग जॉब करते हैं या बीच में कहीं छूट जाता है, तो कैसे वो मालूम चलेगा कि उनका PF जो करता है या PF का जो इतना संभाग उनमें रहता है क्रेडिट, तो कैसे मालूम चलेगा कि वो कट रहा है कहाँ कैसे?
0: अमित जी, अमित जी नमस्कार, आपको एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर दिया गया होगा, आपने जहाँ कहीं भी काम किया होगा तो अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर के थ्रू आप एम्प्लॉई पोर्टल पे जाके EPFO के आप लॉगिन कर लें। अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है तो जो भी आपका आधार लिंक्ड फ़ोन नंबर है उसके थ्रू OTP से आप रीसेट कर सकते हैं, और जितने जगह पर भी आपने काम किया होगा जो UAN से लिंक्ड होगा वहाँ पे आपको सारे डिटेल्स दिख जाएंगे आपके अपने पोर्टल पे ही, आपके पासबुक में भी वो दिखने चाहिए, और जहाँ जहाँ से भी आपने काम किया है अगर आपने ट्रांसफ़र नहीं करवाया है तो आप उसको एक जगह पे ट्रांसफ़र करवा लें ताकि आपके लिए बाद में सुविधा होगी।
1: जी हाँ, जैसे अब कई लोगों की शंकाएं हैं, कई जो होते हैं जो कर्मचारी हैं उनको EPF खाते UAN नंबर या अन्य सुविधाएं उनके बारे में जानकारी नहीं होती, तो उस लिहाज से आप क्या बताना चाहेंगे कि किन किन बातों का ध्यान रखना है जब आप कोई ज्वाइन कर रहे हैं, आपको क्या कदम उठाने हैं?
0: अभी
4: सो जब भी कोई अभी जो हमने अगस्त 2025 से एक प्रावधान किया है, पहले ये होता था कि जहाँ पे जिस संस्था में कोई ज्वाइन करते हैं कोई एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉयर खुद वो उनका UAN जनरेट करते थे, तो अभी हमने वो हक सिटीजन को ही दिया है, एम्प्लॉय को ही दिया है, जो खुद अपने उमंग ऐप से जो आधार ऑथेंटिकेशन करके वो खुद अपना UAN जनरेट करेंगे और फिर वो एम्प्लॉयर को देंगे, तो उससे जो

0: उसको बेसिक तो उनके हाथ में है कि उनका ईपीएफओ का अकाउंट बना नहीं है, बना है या नहीं है, अभी एम्प्लॉयर के हाथ में नहीं है। तो उसके बाद उनको ये देखना है कि उनका हर महीने पासबुक उनको चेक करना है कि हमेशा वो हर महीने उनका एवरी मंथ डिपॉजिट हो रहा है नहीं हो रहा है।
1: जी, ओडिशा से जुड़े हैं देशदीप दास जी। दास जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो दास जी, आपको हमारी आवाज मिल रही है?
2: जी नमस्ते।
1: नमस्ते
2: शर्मा जी और अरोरा जी, नमस्ते।
1: जी
3: नमस्ते
2: जी, पर मेरा सवाल है, क्या नियोक्ता को अलग से रजिस्ट्रेशन करना होगा और योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कौन से दस्तावेज आवश्यक है?
3: नियोक्ता को अलग से मैं नहीं कहूँगा कि रजिस्ट्रेशन करना है, उनके पोर्टल पे जाकर और आपको केवल नियोक्ता को अपना पैन देना होता है और जो एक बैंक अकाउंट उनका देना होता है जो पैन लिंक्ड होता है, उसी को हम इनफैक्ट इस स्कीम के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन मान सकते हैं। सेपरेट रजिस्ट्रेशन बस उसी तरह का होता है। उसके बाद नियोक्ता का जो भी बेनिफिट होता है, बिकॉज पैन के साथ हम इसको लिंक करते हैं, तो अगर मान लीजिए एक ही पैन के साथ बहुत सारी संस्थाएं जुड़ी हुई हैं, तो हम उन सबों को पैन एग्रीगेट करके जो बेनिफिट देते हैं वो पैन लिंक्ड बैंक अकाउंट में देते हैं। तो बेसिकली आपको पैन टैन का डिटेल्स होगा, नियोक्ता का जीएसटी नंबर आप दे सकते हैं वहाँ पे, और साथ में बैंक अकाउंट नंबर जो कि पैन के साथ लिंक्ड हो वो एम्प्लॉयर पोर्टल पे ही देना होता है। उसके लिए आपको और कहीं अलग रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है।
1: और इन्होंने दस्तावेज के बारे में पूछा था,
3: और कोई दस्तावेज नहीं चाहिए,
1: जरूरत नहीं है, बार बार बता रहे हैं आपको इस कार्यक्रम के जरिए। ये जो योजना है, अगर आप फॉर्मल नौकरी के हिसाब से, रोजगार सृजन के हिसाब से बात करें तो बहुत बड़ी, 99,000 करोड़ रुपए से इसका आउटले है। मेजर अगर बात करें जो असंगठित क्षेत्र से जो आते हैं लोग, उनको संगठित क्षेत्र में लेकर जाना, तो उनके लिए योजना किस तरह से आप लाभकारी होते देखते हैं?
3: इसमें दो तीन तरह से हम इसको देख सकते हैं। सबसे पहला, जो एम्प्लॉयज़ पहली बात की 6 महीने तक को रहेंगे एक जगह, तभी उनको बेनिफिट मिलेगा, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है कि वहाँ रुकें। एम्प्लॉयर के लिए एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है कि कोशिश करें कि उनके एम्प्लॉय वहीं पर रह जाएं। एम्प्लॉय को एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा। आपको पता होगा कि जैसे नए एम्प्लॉय अगर कोई भी ज्वाइन करते हैं तो लैक ऑफ एक्सपीरियंस एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो यहाँ एक ऐसी स्कीम है जहाँ पे एम्प्लॉयर को भी फ़ायदा हो रहा है, एम्प्लॉय को भी फ़ायदा हो रहा है। जनरली अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जनरली एक कॉन्सेप्ट था इंडिया में कि अगर एम्प्लॉयर हैं तो एम्प्लॉय के अगेंस्ट हैं, एम्प्लॉय हैं तो एम्प्लॉयर के अगेंस्ट हैं। यहाँ इन दोनों को साथ में लेकर चलने की बात हो रही है।
1: और ये होता था कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, भाई आप हमें नौकरी पे रखोगे तभी एक्सपीरियंस मिलेगा,
3: और जब तक नौकरी में आएंगे नहीं तब तक एक्सपीरियंस होगा नहीं। तो एक बहुत अच्छी स्कीम है जहां उनको एक्सपीरियंस गेन करने के लिए भी सरकार प्रोत्साहित कर रही है और एम्प्लॉयर को भी प्रोत्साहित कर रही है कि आप ऐसे लोगों को रखेंगे और सस्टेन करें वहाँ 6 महीने 1 साल के लिए, तो आपको भी इंसेंटिव मिलेगा।
1: जी, दिल्ली से जुड़े हैं धर्मवीर जी।
4: नमस्कार मैडम, मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। सर नमस्कार।
3: नमस्कार
4: सर, मैं ये पूछना चाहूंगा कि हमारे देश की जनसंख्या 140 करोड़ है, तो कुछ जो एम्प्लॉयर होते हैं जो उनकी एज लिमिट निकल जाती है, तो क्या सरकार को चाहिए नहीं कि उनकी एज लिमिट को थोड़ा बढ़ा के रखना चाहिए, जिसको जरूरत है वो ही इसमें भी आ सके, और इसमें जो एम्प्लॉयर है वो कितनी इसकी सैलरी इसको डिसाइड कर सकता है?
0: तो इसमें दो पार्ट आपने पूछा है, एक तो एज का पूछा है। तो स्कीम तो जनरली युवा एम्प्लॉयज़ को प्रोत्साहन मिलता है, बट ऐसा कोई एज क्राइटेरिया नहीं है। तो अगर कोई 40 साल में भी पहली बार संगठित क्षेत्र में नौकरी पा रहा है तो वो इस बेनिफिट के लिए एलिजिबिलिटी है। एंड दूसरा
1: सैलरी का पूछा
0: है। सैलरी, हाँ, तो इसमें मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये था कि जो हाई अर्निंग हाई इनकम ग्रुप है तो उनको ये बेनिफिट ना दिया जाए। तो 1 लाख से जो नीचे है उनका, जिसका ग्रॉस सैलरी है, वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल है।
1: अक्सर हम देखते हैं कि जैसे लोगों को सामाजिक सुरक्षा के बारे में जानकारी नहीं होती, तो इस योजना के जरिए सामाजिक सुरक्षा कवरेज को किस तरह मजबूत किया जा रहा है?
0: तो इसमें जो सामाजिक सुरक्षा ईपीएफओ, हम लोग 3 स्कीम चलाते हैं, तो जो भी ये पीएमवीबीआरवे के तहत हमसे जुड़ते हैं तो उनको ये 3 स्कीम के बेनिफिट मिलते हैं। तो इनमें से प्रोविडेंट फंड है जो कि आपके लाइफ टाइम अर्निंग्स को वेरी गुड इंटरेस्ट रेट के साथ हम लोग रिटर्न करते हैं। और

0: इसमें बहुत सारे पार्शल विड्रॉल्स के प्रावधान हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट पेंशन एक बहुत बड़ा चीज़ है इसमें, ना केवल उनका सुपर एनुएशन पेंशन बल्कि उनके डेथ केस, इन केस ऑफ डेथ एंड डिसेबिलिटी उनको फैमिली को भी पेंशन मिलता है, एंड इंश्योरेंस का भी एक कॉम्पोनेंट है लाइफ इंश्योरेंस का।
1: जी पुनेंदु जी, जैसे अक्सर शायद किसी ना किसी के मन में ये प्रश्न होगा कि जो ये योजना है रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बनाई गई है, लेकिन ऐसे में यदि कोई जो नियोक्ता योजना का लाभ प्राप्त करने के बाद कर्मचारी को नौकरी से हटा देता है या उसे लंबे समय तक कार्य में नहीं बना के रखता है, तो क्या ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कोई प्रावधान या निगरानी व्यवस्था है?
2: इसमें एक सिस्टम का ही इनबिल्ट मैकेनिज्म है। जैसे ही अगर कहीं भी एम्प्लॉयमेंट कम होती है जो बेस लाइन से, या थ्रेशोल्ड अगर उसका डाउन होता है, तो एम्प्लॉई तो चलो 6 महीने के बाद अगर वो नहीं रहते हैं वहाँ एम्प्लॉयमेंट में तो उनको नहीं मिलेगा बेनिफिट, लेकिन साथ ही एम्प्लॉयर को भी ये बेनिफिट कम हो जाती है। तो एम्प्लॉयर के लिए काइंड ऑफ डिसइंसेंटिव है कि अगर लोगों को निकाल रहे हैं, हटा रहे हैं, अगर वहाँ पर रिटेन नहीं कर रहे हैं, तो रादर एम्प्लॉयर को अभी ज़्यादा इंसेंटिव इसमें है कि लोगों को रखें, रिटेन करें और उनको ट्रेन करें। तो केवल रिटेन करना ही नहीं होगा, जितने दिन लोग रहेंगे उनके लिए एक्सपीरियंस बढ़ेगा, एम्प्लॉई के लिए भी फायदा, एम्प्लॉयर के लिए भी फायदा।
1: जी, विन विन सिचुएशन है दोनों।
2: विन विन है जी।
1: बिहार से जुड़े हैं मोहन पासवान जी।
3: नमस्कार सर।
2: नमस्कार।
3: मैं बस दरभंगा बिहार से बोल रहा हूँ सर। सर, मैं जानना चाहता हूँ कि छोटी छोटी कंपनियां लोगों के रोजगार के लिए क्या क्या योजना बनाई है सर, नए स्तर से। दूसरा है सर
2: जी, पूछे
1: जी मोहन जी।
3: सर, भारतीय प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत का जो सपना है 2017 तक, इसके लिए कौन से सूत्र तैयार किए गए हैं सर, एवं इसमें युवाओं के रोजगार के लिए क्या क्या योजना बनाए गए हैं सर?
1: जनरलाइज सवाल पूछाना नहीं,
2: एक जनरलाइज सवाल है। बहुत सारी योजनाएं तैयार की गई है भारत सरकार के द्वारा, उनमें से एक योजना ये प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना है जो 2047 के विजन को ध्यान में रखकर किया गया है। इसमें एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई दोनों को बेनिफिट देते हुए, इंसेंटिव देते हुए ये कोशिश की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार को जो सृजित कर रहे हैं उनको इंसेंटिवाइज किया जाए, वर्कर जो ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहे हैं उनको इंसेंटिवाइज किया जाए। तो एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को ओवरऑल इंसेंटिव करने के लिए, इंसेंटिवाइज करने के लिए ये एक बहुत अच्छी योजना है।
1: जी, अक्सर मैं एक सवाल जो रहता है जहन में एमएसएमई क्षेत्र को लेकर, जो छोटे छोटे जो रोजगार सृजित करते हैं, तो देश में जो एमएसएमई क्षेत्र को रोजगार का जो प्रमुख हम स्रोत मानते भी हैं, तो इस योजना को एमएसएमई क्षेत्र को क्या लाभ मिलने की संभावना है इस योजना से?
0: तो इसमें एमएसएमई के ऊपर जो जो इसके ऊपर प्रोविजंस है, तो नॉर्मली ईपीएफओ जो लॉ है वो केवल एस्टैब्लिशमेंट्स विद एटलीस्ट 20 एम्प्लॉयज जो है उनके लिए मैंडेटरी है। बट आज के डेट में हमारे पास जो डेटा है उसमें बहुत सारे ऐसे एमएसएमईज हमसे जुड़े हुए हैं जिसका स्ट्रेंथ 20 से भी कम है, तो उनके लिए भी बहुत बड़ा लाभ है, क्योंकि उनके लिए उनके छोटा साइज को ध्यान में रखते हुए, उनके कंस्ट्रेंट्स को ध्यान में रखते हुए उनको केवल 2 एम्प्लॉयज, एडिशनल एम्प्लॉयज जनरेट करने का उनको कंडीशन लगा गया है। तो 2 साल के पीरियड में उनको एटलीस्ट 2 नए एडिशनल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना है और उनको सस्टेन करना है। तो सारे एमएसएमएस इसमें बहुत बेनिफिट में लेके आ सकता है।
1: तो विनिर्माण क्षेत्र को भी इस जो योजना से बहुत लाभ मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा, तो वो किस प्रकार मिलेगा?
0: तो विनिर्माण क्षेत्र में एम्प्लॉयर्स जो है उनके लिए एडिशनल बेनिफिट है इसमें। सो जो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन का कॉम्प्लीमेंट्री तरीके से ये स्कीम चलता है, तो बाकी संस्थाओं को जो 2 साल तक जो बेनिफिट मिलता है हर एक महीने हर एक नेट एडिशनल एम्प्लॉयमेंट के अगेंस्ट, जो मैन्युफैक्चरिंग में है उनको 4 साल तक इसके स्कीम के बेनिफिट्स मिलते हैं।
1: यदि कोई जो युवा है पूर्णेंदु जी, पहली बार नौकरी शुरू कर रहा है, तो उसे ईपीएफओ से जुड़ी कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना होगा?
2: जो भी नए लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सबसे पहली बात तो उनका एक फेस ऑथेंटिकेशन के थ्रू उमंग ऐप पे जब भी वो यूएएन जनरेट होता है तो वहाँ पे उनकी हम आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। तो वो बहुत ज़रूरी है, जो पार्ट ए का जो बेनिफिट मिल रहा है इस स्कीम में, कि फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू उनका होना पड़ेगा। सेकंड, उनका एक डीबीटी इनेबल्ड बैंक अकाउंट होना चाहिए जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के लिए। सो आधार के साथ लिंक होता है, लेकिन आपको बैंक में साथ ही साथ अपना डीबीटी के लिए भी इनेबल करवाना पड़ता है। तो ये दोनों चीज़ों को अगर ध्यान में रखें

0: करेंगे, फिर जैसे ही ईपीएफओ में अगर आप जुड़ते हैं ऑटोमेटिकली आप 6 महीने तक अगर आ रहे हैं यहाँ हमारे साथ सस्टेन कर गए एक एम्प्लॉयर के साथ, आपका सारा रिटर्न यहाँ आ रहा है, आपका कंप्लायंस हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपके बेनिफिट कैलकुलेट होके आपके अकाउंट में चले जाते हैं।
1: छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं इंद्र भान जी। सवाल पूछे जी।
2: भारत रोजगार में कौन कौन से सेक्टर
1: है, कौन कौन से
0: इसमें सारे सेक्टर्स इंक्लूडेड हैं जो भी ईपीएफओ के साथ जुड़े हुए हैं। ये स्कीम ईपीएफओ के थ्रू भारत सरकार चला रही है, वो भी इसलिए यहाँ पे हमारा आइडेंटिफिकेशन यूएएन के थ्रू करते हैं, कंपनीज कवर्ड हैं, तो बेनिफिट बिकॉज आइडेंटिफाइड लोगों को जाती है, तो जितने भी ईपीएफओ के साथ जुड़े हुए संस्थान हैं उनके थ्रू ये सारा कुछ, ये सारी बेनिफिट जाती है।
1: जी, अगर किसी के मन में प्रश्न है कि या कोई कर्मचारी है नियोक्ता इस योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता है, तो कोई ऐसा पोर्टल या हेल्पलाइन नंबर है जिस पर सीधा संपर्क किया जा सकता है?
3: हाँ, तो ये स्कीम के लिए एक डेडिकेटेड वेबसाइट है हमारा pmvbrv.labor.gov.in। इसमें सारे स्कीम रिलेटेड सारे आपको विशेष उसमें मिल जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको अगर कॉल करके पूछना है तो टोल फ्री नंबर है 1-44-80-1-44-80। इसमें आप मंडे टू सैटरडे 10-6 आप कॉल करेंगे तो आपको किसी भी तरह की डाउट है तो आप क्लैरिफाई कर सकते हैं।
1: जी हाँ, 1-44-80 हेल्पलाइन नंबर है, टोल फ्री नंबर है, आप इस पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी शंकाओं का जो भी है निवारण पा सकते हैं। पूर्णेंदु जी, आपसे एक जाते जाते यही आखिरी प्रश्न पूछना चाहूंगी कि ईपीएफओ के आंकड़ों के आधार पर देखें तो पिछले कुछ वर्षों में औपचारिक रोजगार में क्या परिवर्तन देखने को मिले?
0: मैम, हमारे साथ काफ़ी लोग जुड़े हैं और ईपीएफओ के आंकड़े ये बताते हैं कि भारत में एक बहुत मेजर चेंज आ रहा है
1: जी।
0: वो जो इनफॉर्मल इकोनॉमी हुआ करती थी वो काफ़ी फॉर्मलाइजेशन की ओर बढ़ रही है और हमें उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में बिकॉज ऑफ दिस स्कीम हम ऐसे उम्मीद करते हैं कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी और हम सबों को एक फॉर्मल इकोनॉमी, एक विकसित भारत देखने को मिलेगा।
1: जी हाँ, हमें विश्वास है कि आज की चर्चा से युवाओं को रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के बारे में उपयोगी जानकारी मिली होगी। धन्यवाद आप दोनों का, पूर्णेंदु जी और प्रणय जी, आप स्टूडियो में आए और हमारे साथ चर्चा की। श्रोताओं, आपका भी धन्यवाद करते हैं जो हमारे साथ जुड़े। अगले सप्ताह फिर से मुलाकात होगी सोमवार को एक नए मुद्दे के साथ। तब तक प्रियंका अरोड़ा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
0: नमस्कार।

मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत, इसमें आज हमारे कलाकार हैं उस्ताद अमजद अली खान।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। इसमें आज आपने सुना उस्ताद अमजद अली खां का सितार पर बजाया राग मारू बिहाग। आइए सुनते हैं मारू बिहाग राग में ही ये गीत, जिसे हमने लिया है सहरा फिल्म से। आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की, हसरत जयपुरी के बोल हैं, रामलाल का संगीत है। सुनते हैं राग मारू बिहाग में ये गीत।

राग मारू बिहाग में आपने ये गीत सुना सहरा फिल्म से। आवाज़ें थी लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है,

आइए सुनते हैं फरमाइशी फिल्म संगीत का पत्रों पर आधारित कार्यक्रम मन चाहे गीत। सभी सुनने वालों को रीटा का प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम मन चाहे गीत में आप सबका स्वागत है। कार्यक्रम में पहला गीत सुनवाने जा रहे हैं आप सबकी पसंद पर राजा बाजार भीहा से सुरेश केसरी, पूनम केसरी, प्रतीक बक्सर से उमानंद केसरी, धनानंद केसरी और विनोद केसरी, मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गोगलानी, सुनीता जैन, सुनीता शर्मा, ईशप्रीत शर्मा और बिपाशा शर्मा, मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट ज़िला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोज़ी परवीन, बिट्टू, साजदा रानी और हिना कौसर, चौधरीबाज से राजू अग्रवाल, केशव दक्ष, विवेक प्रयाग, प्रियांशी और सुशीला, पुणे से पंकज वाड़ोदे, आर्या, प्रियंका, बीटी वाड़ोदे और चंद्र प्रभा वाड़ोदे। आप सबकी पसंद पर सुनवाने जा रहे हैं कार्यक्रम का पहला गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में महबूब की मेहंदी फिल्म से। आनंद बख्शी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है।

गीत फिल्म से आपने सुना ये गाना जिसे हमने लिया था, माफ़ कीजिए, जिसे गाया था लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर ने, हंसल जयपुरी के बोल थे कल्याण जी आनंद जी का संगीत था। आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्म संगीत का पत्रों पर आधारित कार्यक्रम मन चाहे गीत। कार्यक्रम में अगला गीत सुनवाने जा रहे हैं अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडेकर की आवाज़ों में प्रेम गीत फिल्म से। इंदिवर के बोल हैं, जगजीत सिंह का संगीत है। दोनों गीतों के लिए मिली जुली फरमाइश आपको बता दें, मलोट पंजाब से राजकुमार इंदौरा, विमला इंदौरा, गैरी इंदौरा, विकास, प्रियंका इंदौरा, रमन, ऋतु इंदौरा, भविष्य खन्ना, मिसेल खन्ना, किंशु खन्ना और दिया इंदौरा। लुधियाना पंजाब से विनोद पुरी, वीपी रंजू, अशोक पुरी, सुशीला पुरी, नीलम पुरी, बीके पुरी, कैलाश पुरी, रमा पुरी और आरएस पुरी। बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय। गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय, अवधेश राय, प्रीति राय और नवनीत राय। बठिंडा रोड डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग और मोहित नारंग। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतेग बिरक और मीका बिरक। सिरसा से इंद्रजीत, कमलजीत, मीनाक्षी, सागर, सरगुन, हनीलोट और दर्शन लोट। मलोट पंजाब से रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया और आरजू जाजोरिया। दतरेंगी छत्तीसगढ़ से हीरा मणि वर्मा, पारस मणि, पुष्पेंद्र वर्मा और नोखेलाल वर्मा।

प्रेम रोग फिल्म से आपको सुनवाने जा रहे हैं लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की आवाज़ों में गीत। संतोष आनंद के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। पसंदकर्ताओं के नाम गीत के बाद

प्रेम रोग फिल्म से आपने सुना ये गीत, जिसे गाया था लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर ने। संतोष आनंद की बोल थी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। कार्यक्रम के अंत में सुनवाने जा रहे हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के युगल स्वरों में चंबल की कसम फिल्म से गीत। साहिर लुधियानवी के बोल हैं, खयाम का संगीत है। दोनों गीतों के लिए मिलीजुली फरमाइश आपको बता दें, केलंगा से सुंदरपाल कौशिक, अभिनेशु देवू परी पीहू पाखी कौशिक, गोला बाजार बक्सर से शदानंद आर्या, अभिनंद आर्या, परमानंद आर्या, पंकज प्रमोद, रोहित और मोहित, जतुका किशनपुरा से आलम दिलकर, शबाना नाज, रिजवान राही, चांदी नाज, इमरान राजा, आलम शेख, फिरोज़ आलम और नाज परवीन, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और महराज जहाँ, करणपुर राजस्थान से शिव कुमार सेठी, सुनीता सेठी, कमल सेठी, ज्योति शब्द सेठी, बानी और राजू, नरवेल मैथुन से पुंजांजी नहावकर, विशाल नहावकर, पुणे महाराष्ट्र से शैलेंद्रपुर पुरी, सोनम धनुषगिरी, सनावर से किशोर सांवले, रेखा सांवले, हिमांशु, अनुराग, सुलोचना चारुवी, प्रणव सांवले, सालियाखेड़ी मालवा से सोनू विश्वकर्मा, मोनू विश्वकर्मा, वाशिम महाराष्ट्र से ऋचा वसमतकर, सोनाली पाठक, संगीता पांडे, अश्विनी कुलकर्णी, कल्पना सुनीता पांडे, मालती कंझरकर, संगीता उषा रिंघाटे, छाया बोरकर, तृप्ति शिंगारे, विशाखा आमले, माधुरी जोशी, सोनू जीतू, मुंबई से अहमद भाई फूलवाले, दुखना रानी, सदफ आरजू, जूही इकबाल, आमना नसरीन, इमरान अहमद, नुरेशा अहमद और जूही इकबाल। सुनते हैं कार्यक्रम के अंत में चंबल की कसम फिल्म से ये गीत।

0: मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के गाए इस गीत के साथ ही मन चाहे गीत कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्म संगीत का पत्रों पर आधारित कार्यक्रम मन चाहे गीत। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स, न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। ठीक 11:05 पर होंगे अंग्रेज़ी में समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज दोपहर आग दुर्घटना में 16 से 25 वर्ष की आयु के अधिकांश छात्रों सहित 15 लोगों की मौत हो गई और 6 छात्र घायल हो गए। उन्हें लखनऊ के KGMC में भर्ती कराया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज घोषणा की कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसद उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। श्री शिंदे ने इन सभी सांसदों का पार्टी में स्वागत किया। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने कहा कि आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक है।
2: आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे 6 खासदार शिवसेना में शामिल हुए हैं, इससे शिवसेना की ताकत बढ़ रही है।

0: शिवसेना सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो चुकी है और ये डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बड़े पैमाने पे सहयोग कर रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है।
1: पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के संवादात्मक सत्र में भाग लिया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शेखावत ने कहा कि पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र का विकास लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन का साधन है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार रोजगार, विकास और समृद्धि के नए अवसर पैदा कर रही है। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट के रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच की मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। इन मार्गों पर कवच की स्थापना से स्वचालित रेल सुरक्षा और किसी भी तरह की टक्कर से बचाव की क्षमता प्रदान करके रेलगाड़ी संचालन में उच्च स्तर की सुरक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने उन निजी छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक नई नीति बनाई है जो हाल ही में ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा रद्द होने से प्रभावित हुए थे। न्यायमूर्ति SVN भट्टी और विपुल M पंचोली की पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि क्षेत्रीय संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में परीक्षा रद्द होने से प्रभावित छात्रों की चिंताओं को दूर करने के लिए एक नई अखिल भारतीय नीति तैयार की गई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। अपनी ही पार्टी के भीतर बढ़ते दबाव के बीच उन्होंने डाउनिंग स्ट्रीट में अपना कार्यकाल समाप्त किया। श्री स्टार्मर ने कहा कि सितंबर में संसद के सत्र के शुरू होने से पहले जब तक नया नेता नहीं चुन लिया जाता तब तक वे अपने पद पर बने रहेंगे।
2: Every decision I've taken,
3: मैंने जो भी फैसले लिए हैं उनमें हमेशा अपने देश को प्राथमिकता दी है जिससे मैं प्यार करता हूं। इसीलिए मैं लेबर पार्टी के नेता का पद छोड़ रहा हूं। मैंने आज सुबह ब्रिटेन नरेश से बात करके उन्हें अपने फैसले के बारे में बता दिया है। अगर मुकाबले की स्थिति बनती है तो निश्चित रूप से सितंबर में संसद सत्र शुरू होने से पहले पार्टी का नेता चुन लिया जाए। प्रक्रिया पूरी होने तक मैं प्रधानमंत्री के पद पर बना रहूंगा।
1: जर्मनी के सोहल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में आज भारत के प्रीतम केंद्रे ने 10 मीटर एयर राइफल पुरुष स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में महिलाओं और पुरुषों ने कांस्य पदक जीते। प्रतियोगिता में भारतीय निशानेबाजों ने आज अलग अलग स्पर्धाओं में 4 पदक भी जीते। भारत 5 स्वर्ण, 1 रजत और 6 कांस्य पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। Fifteen people, most of them students, lost their lives in a tragic fire incident in the Aliganj area of Lucknow in Uttar Pradesh this afternoon. The tragedy occurred when a massive fire broke out at an animation coaching center located inside a commercial complex. Several injured persons have been admitted to nearby hospitals. Chief Minister Yogi Adityanath has said a high-level committee comprising the Director General of Police and the Additional Chief Secretary Home will investigate the incident and those found responsible would face strict action. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have expressed grief over the loss of lives in the fire. In a social media post, Mr. Modi announced an ex gratia of 2 lakh rupees from the Prime Minister's National Relief Fund for the next of kin of each deceased. The injured will receive 50,000 rupees each. Prime Minister Narendra Modi has stated that India is a fast-growing and credible economy